मीडियम वीप 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्स एवं प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 18वीं तिथि, तदनुसार 8 मई सन 2026। सुबह की 5 बजे

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। यह मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग तीन गुना अधिक है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो रही है। अधिक खरीद, अच्छी फसल और किसानों की पर्याप्त सहायता से खाद्य सुरक्षा, किसानों के हित तथा सुरक्षित भविष्य के लिए देश की प्रतिबद्धता मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की खाद्य सुरक्षा लगातार बढ़ रही है। इस बीच सरकार ने कहा है कि 6 मई तक मंडियों से 78,96,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई। पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा 75,63,000 मीट्रिक टन था। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि कम आवक के बावजूद इस साल गेहूं की खरीद पिछले साल से बेहतर है। मंत्रालय ने यह स्पष्टीकरण उन खबरों के जवाब में दिया है जिनमें दावा किया गया था कि मंडियों में गेहूं की अधिकता जैसी स्थिति है। मंत्रालय ने कहा कि पंजाब में अब तक लगभग 122 लाख मीट्रिक टन गेहूं मंडियों में आया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में वाणिज्य विभाग और उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक में निर्यात और निवेश बढ़ाने, नए निर्यातकों के लिए आवश्यक अवसर तैयार करने और वैश्विक बाजारों में नई संभावनाएं तलाशने पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन की तैयारियों के बीच विधानसभा को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया है। राज्यपाल आरएन रवि ने संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मौजूदा विधानसभा को भंग करने का आदेश जारी किया। इस बीच गृहमंत्री अमित शाह आज कोलकाता जाएंगे। वे नवनिर्वाचित भाजपा विधायकों के साथ बैठक में शामिल होंगे, जिसके बाद पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। समारोह की तैयारियों के लिए गुवाहाटी में एक उच्चस्तरीय बैठक हुई। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। उधर तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी तमिलक वेत्री कड़गम पार्टी का सरकार गठन के लिए बहुमत सिद्ध करने के मुद्दे पर गतिरोध बना हुआ है। 234 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 118 विधायकों की आवश्यकता है। विधानसभा चुनाव में अभिनेता विजय की टीवीके पार्टी ने 108 सीटें जीती हैं। इस बीच केरल में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी।

0: वियतनाम के राष्ट्रपति तोलाम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का एक बड़ा अवसर है। मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लाम ने कहा कि पहले भी दोनों देशों ने आपसी सहयोग में कई चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया। वियतनाम के राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पूर्व वियतनामी राष्ट्रपति हो ची मिन और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू जैसे नेताओं की दूरदृष्टि पर आधारित हैं। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोक दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हॉर्मुज जल डमरू मध्य में जहाजों पर निगरानी रखने की अपनी योजना छोड़ने पर बाध्य होना पड़ा है। दो अमरीकी अधिकारियों ने इस खबर की पुष्टि की है। सऊदी अरब के इस कदम से खाड़ी देशों को लेकर अमरीकी रणनीति को झटका लगा है। आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज सुबह राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया गया है। लगभग 3.5 किलोमीटर की यह दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व भवन होते हुए आकाशवाणी भवन में ही संपन्न होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन सहित प्रसार भारती में कार्यरत सभी कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य इस मैराथन में भाग ले सकेंगे। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वीप 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज और प्रसार भारती के ऑफिशियल एप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। प्रातः 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम का आरंभ करते हैं मां भारती की वंदना से समूह स्वर में।

आइए ध्यान करें देवादिदेव महादेव का इस भजन के माध्यम से। स्वर है पंडित जसराज का।

कबीर अमृतवाणी के साथ ही आज की वंदना संपन्न हुई। ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ देर बाद यानी 6:35 पर सुनिए खेती किसानी कार्यक्रम। विषय होगा बछड़ा बछड़ियों के रोग एवं उपचार। सुबह 6:40 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस गान। गायक कलाकार होंगी अनुराधा पौडवाल। संगीत संयोजन होगा सतीश भाटिया का। चिंतन का प्रसारण होगा सुबह 6:50 पर। सुबह 7:20 पर हिंदी महक के अंतर्गत सुनिए भेंट वार्ता। अपेंडिक्स कारण लक्षण और बचाव, विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर राजीव सिन्हा। 7:30 पर आनंद लीजिए फिल्म संगीत का। सुबह 8:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे पंडित शिव कुमार शर्मा से संतूर वादन। राग होगा सोहनी। लोकरंग कार्यक्रम का प्रसारण होगा सुबह 9:00। कलाकार होंगे रमेश दांगी। फिल्मी कव्वालियां सुनिए सुबह 9:30 पर। 10:05 पर आप सुनेंगे गांधी चर्चा। प्रवक्ता और प्रस्तुतकर्ता होंगे महेश शर्मा। सुबह 10:20 पर सुनिए गैर फिल्मी भजन। सुबह 10:30 पर आप सुनेंगे श्रोताओं के पत्रों एवं ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। शाम 5:02 पर भोपाल से रिले करेंगे युवाओं का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। इसमें युवा श्रोता सुनेंगे वार्ता जल संरक्षण। वार्ताकार होंगे सुमुख रावत और साथी होगी रोजगार सूचना। आकाशवाणी छतरपुर से सुनिए फिल्म संगीत शाम 5:30 पर। संध्या 6:00 भोपाल से रिले करेंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। शाम 6:30 पर आकाशवाणी छतरपुर केंद्र से सुनिए बुंदेली लोक गीतों का कार्यक्रम लोकधारा। कलाकार होंगे राम सिंह खंगार। संध्या 7:20 पर सुनिए ग्राम सभा कार्यक्रम। इसमें ग्रामीण भाई सुनेंगे मानस प्रवचन। प्रसंग होगा प्रताप भानु की कथा। प्रवचन करता होंगे रविन्द्र कुमार मिश्रा। काव्य पाठ सुनिए प्रेम नारायण शर्मा से और आज की सीख का विषय होगा छक्के छूटना। रात 8:00 भोपाल से हम रिले करेंगे कार्यक्रम सुर्खियों में। फिल्म संगीत सुनिए रात 8:15 पर। रात 9:15 पर दिल्ली से हम रिले करेंगे कार्यक्रम स्पॉटलाइट। रात 9:30 पर सुनिए कार्यक्रम रसावतरण के अंतर्गत कवि गोष्ठी। प्रतिभागी कवि होंगे शरद मिश्र, डॉक्टर रामकुमार पांडे झटपट, विजय प्रकाश सेनी विजय और नम्रता शुक्ला। रात 10:00 सुनिए नाटक स्मारक। लेखक होंगे सुशील कुमार त्रिपाठी। प्रस्तुति होगी डॉक्टर अरविंद सोनी की। रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अली अकबर खां से सरोद वादन, राग होगा पूरिया कल्याण। और अब सुनिए आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित एवं मध्य प्रदेश के सभी प्राइमरी केंद्रों द्वारा अनुप्रसारित कार्यक्रमों के बारे में। दिन में 11 बजे सुनिए फोन इन कार्यक्रम, फोन करें गीत सुने। दोपहर 12 बजे आप सुनेंगे आपकी फरमाइश कार्यक्रम। 12:30 पर सुनिए कार्यक्रम संग्रहालय से। दिन में 1 बजे महिलाएं सुनेंगी अपना महिला कार्यक्रम महिला सभा, इसमें महिलाएं सुनेंगी वार्ता रक्त एवं रक्त वर्ग, एक जानकारी, वार्ताकार होंगी कीर्ति सक्सेना, साथ ही होंगी उपयोगी जानकारियां, इसमें आप सुनेंगे गर्मी में तेज धूप से बचाव और सावधानियां। दिन में 1:30 पर सुनिए लोक संगीत कार्यक्रम, ये कार्यक्रम गुरु पर आधारित बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम होगा। प्रस्तुति होगी आकाशवाणी छतरपुर की और प्रस्तुतकर्ता होंगे रविन्द्र कुमार प्रजापति। 1:45 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम, कलाकार होंगे इकबाल सिद्दीकी, प्रस्तुति आकाशवाणी छतरपुर केंद्र की। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है, प्रस्तुत है खेती किसानी कार्यक्रम।
1: पंचो, आज हम अपन का जानकारी दे रहे हैं कि अपने बे पशुपालक भैया जिनके छोटे छोटे बछड़ा और बछिया हैं, तो उनके जो सामान्य रोग और उनके उपचार हैं इसके बारे में अपन ने भी ये देखो हुए कि खास तौर से अपने छोटे छोटे जो बछड़ा बछिया हैं उनका पेट में कीड़ा पड़ जाते हैं। और ये जो कीड़ा होते हैं भैया, जो लंबे या गोल दो ही प्रकार के हो सकते, जो कैसे हो जाते, कभू कहूँ गंदो पानी पे बाबिस है या खराब चारो जैसे अपन ने उन्हें डाल दो, बछवा बछीन की आदत हो के जब अपने छोड़ दो तो कोनो भी चारो वारो या कोनो गंदो स्थान जहाँ पड़ो भाव उते जाके कछु पी भी चाटन लगते हैं, इसे उन्हें जो है पेट में कीड़ा पड़ जाते हैं। और ये जो कीड़ा होते हैं भैया, वे अपने बछड़ा बछीन के गोबर में निकलन लगते हैं और उसे उन्हें अपन देख के गोबर में पहचान भी सकत हो। लक्षण जो होते हैं भैया के जो बछुआ बछिया अपने होते हैं वे सुस्त सुस्त से बने रहते हैं और उनके पेट में तनाव सोई रात है भैया गोबर करते हैं, तो ऊ बेरा उन्हें काफी जोर सोई लगाने पड़त है। तो अगर कहूँ ऐसे लक्षण अपन हम देखें तो अपन ई की रोकथाम के लाने एक काम करें कि फिनोबिस 9 ग्राम एक दवाई आउट है भैया, कितनी भैया फिनोबिस 9 ग्राम जा दवाई जो अपने 30 किलो वजन के बछुआ बछिया है 21वें दिन में 3 बार लगातार जो है उनका 3 महीना तक अपन देते रहने हैं। इमें का करने अपन के तूतिया 5 रत्ती 2 छटाक पानी में मिला के खाली पेट पिवा देने हैं। बाद में 1 तोला तारपीन को तेल और 2 छटाक अरसी को तेल अपन मिला के और खाली पेट में अपने बछुआ बच्चीन का पिवा दो तो पेट के कीड़ा मर जाए भैया। एक और बीमारी होते भैया जा होते सफेद दस्त की बीमारी, जा तो अपन ने देखी होगी कि भैया छूत की बीमारी है, तो इमें का होते है कि सफेद बदबूदार दस्त अपने जो है बछुआ बछिया का लगन लगते हैं और जिसे अपनो जो है जो पशु है बछुआ बछिया है वे जो है कमजोर होके धीरे धीरे करके जब बिलात दिन तक जो रोग हो बनोरात तो वे मर भी सका। साधारणतः भैया जो देखो गो है कि पैदा होवे के 2-3 दिन बाद ई बीमारी को प्रकोप ज्यादा होते है। ई रोग से अधिकतर जो अपनो जो दूषित वातावरण है या कभी कहूँ ठंड लग जाए तो उसे भी जो हो जाते है। और अगर कहूँ अपन ने अपने पड़ेरुन खा बछेरुन खा जो है अपनी कीलन को दूध खीस को दूध कहा भैया जो जो समय पे ना पिवाओ ताजो दूध तो उसे भी भैया जो है जब बीमारी हो जाते है। इसे अपन अपने बछड़ा बछड़ी जो है उन्हें जैसे ही पैदा हुए उनके कछु घंटा बाद अपनी खीस को दूध जानवर से उनका जरूर पे बुआवे। नवजात बच्चन का अच्छी तरह से साफ सुथरे स्थान पे रोशनी वाले हवादार जो स्थान है उते पे राखवे और ई के लाने सल्फा मेजाथीन 5 ग्राम की जो गोली आउट है उखा 3 बराबर खुराकन में अपन खा बांट के अपने जानवर का दे देने हैं। और जब ये सवेरे दोपहर और शाम के देने हैं तो इसे भैया जल्दी लाभ अपन खा मिल जाते है। एक बीमारी और हम अपने बताए अपन पंचन खा निमोनिया की, अपन ने देखो हुए कि जो अपने बछुआ बछिया हैं उनका सांस लेबे में परेशानी जान लगत है, जब काय हो लगत भैया कायसे उनके जो फेफड़ा

0: ना उधर सूजन आ जाते और उन्हें सांस लेवे में कष्ट होते। ई रोग की रोकथाम अपन का जल्दी करने पर है, कैसे कि अगर इमें अपन ने लापरवाही करी तो अपने बछुआ बछिया जो है मर भी सकते हैं। ई के लाने कभू कभू जो रोग जो जो होते है, अचानक मौसम जब बदल जाए या अचानक अपने पशु कहूं ठंडी में भीग जाए या उखा पसीना आ रहा हो वो अपन ठंडो पानी पिवा देवे तो ई कारण से भी जो रोग हो जाते। ई के लाने अपन भैया का करने हैं कि जब भी जो देख लें अपन के जो है हमारे पशु का निमोनिया हो गया है तो ऊके लाने एक काम करें कि ऊखा एक तो ठंड से बचाएं, टाट फट्टा ओढ़ा के पशु के आहार जो है जो अपने पशु हैं उनके शरीर खा गर्म रखें और रोग की आशंका हो वे पे रोगी पशु खा खुले हवादार स्थान पे और अन्य पशुओं से अलग बांधे। कैसे भैया निमोनिया एक ऐसी बीमारी है कि जो जो है दूसरे पशु खा भी हो जाते। पीवे के लाने उको गुनगुनो पानी देवे और खावे के लाने चोकर और हरी दूध देवे। ई के लाने भैया एक दवाई आउट है सल्फा मेजथीन की गोलियां खिलावे पे जो जो है कछु हद तक सही हो सकत है और अगर निमोनिया है तो अपन तत्काल अपने नजदीक के जो पशु अस्पताल में पशु डॉक्टर भैया हैं उन्हें दिखा के इको तत्काल दवाई करवावे।
1: किसान भाइयों के लिए भी खेती किसानी कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा था। ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान। गायक कलाकार हैं अनुराधा पौडवाल। संगीत संयोजन है सतीश भाटिया का।

गरुड़ की जिज्ञासा शांत करने के उद्देश्य से काक भुशुंडी ने विस्तार से सतयुग, त्रेता और द्वापर में सदगति प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले अनुष्ठानों की व्याख्या की। फिर अयोध्या के शूद्रकुल में कलयुग का अपना वो अनुभव सुनाया जब भीषण अकाल पड़ा था और जिससे त्रस्त होकर वो उज्जैन चले गए थे।

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। गायक कलाकार थी अनुराधा पौडवाल। संगीत संयोजन था सतीश भाटिया का। ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। प्रस्तुत है आज का चिंतन।
1: भगवान के प्रति भक्ति की कोई उम्र नहीं होती, ये जीवन की सभी अवस्थाओं में हो सकती है। ऐसा कतई नहीं है कि बचपन और जवानी खेल कूद एवं आनंद के लिए और बुढ़ापा भक्ति के लिए है। जब ये अमूल्य जीवन समाप्त होता है तो मनुष्य का आकलन उसके संपूर्ण जीवन के कर्मों के आधार पर होता है। इसीलिए कर्म को जीवन की अवस्थाओं के अनुरूप नहीं बांटना चाहिए। सारी अराजकता का दायित्व युवावस्था पर और समस्त उपादर्शों का बोझ बुढ़ापे पर नहीं डालना चाहिए। आदर्श स्थिति तो ये है कि जब तुम इस संसार से विदा हो तो तुम्हारा प्रत्येक कर्म तुम्हारा परिचय सिद्ध होना चाहिए, अर्थात तुम लोगों के मन में अपने अच्छे कार्यों के कारण मरणोपरांत भी जीवित रह सको। मनुष्य को ऐसे कर्म करना चाहिए कि वो अपने रूप वैभव और आर्थिक संपन्नता या विपन्नता के आधार पर न जाना जाकर अपने सत्कर्मों से जाना जाए। हमें अपने स्वभाव की अच्छाई, प्रेम तथा ईश्वर के प्रति, मानवता के प्रति प्रेम में डूबा हुआ होना चाहिए। इसका अर्थ ये कदापि नहीं है कि संसार और परिवार में रहते हुए हमें अपने सांसारिक और पारिवारिक कर्तव्यों के प्रति मुंह मोड़ लेना चाहिए। हमें परिवार में रहना है, समस्त कर्तव्य और जिम्मेदारियां निभाना है, परंतु इसमें पूरी तरह लिप्त नहीं होना है। महान ग्रंथ गीता हमें सततम योगिनः का आदेश देती है, अर्थात सदा अपने पर नियंत्रण रखते हुए और संयत रहते हुए भगवान से जुड़े रहो। सदा सतर्क और सचेत रहो, श्रद्धावान रहो, क्योंकि श्रद्धावान लभते ज्ञानम्। श्रद्धावान पुरुष को ही ज्ञान प्राप्त होता है। जीवन में जब उत्तार्थ का समय आता है, अर्थात जीवन की जब सांध्य बिला आती है, तो प्रायः मन में निराशा का भाव लेकर आती है। ये स्वाभाविक भी है। जिस तरह जन्म या प्रारंभ आनंद और उत्सव का कारक होता है, ठीक उसी तरह मृत्यु या अंत दुख और निराशा को जन्म देता है। लेकिन ये दुख और निराशा का भाव इसी कारण से पैदा होता है क्योंकि हमारी सोच और चिंतन में स्पष्टता नहीं होती है। मनुष्य इस नश्वर देह को ही जीवन का सत्व और खजाना मान लेता है। मृत्यु एक पूर्ण एवं सर्वकालिक सत्य है। इस बात को मोह माया में फंसकर अनदेखा करने लगता है। उसे लगता है कि यही सबसे महत्वपूर्ण चीज उसके पास है, और निश्चय ही अपने पास जो सबसे महत्वपूर्ण चीज हो उसके खो जाने या समाप्त हो जाने से दुख की अनुभूति तो अवश्य ही होगी। अतः दुख की इस अनुभूति का कारण बुढ़ापा या अंत का निकट आना नहीं है। दुख की अनुभूति का कारण है अस्पष्ट सोच और गलत चिंतन। अतः मनुष्य को इस सोच से मुक्ति पाने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। अपने मन को भगवान के प्रति स्थिर कर लो, फिर वो इधर उधर नहीं भटकेगा। शरीर रूपी मंदिर के गर्भगृह में भक्ति और देवत्व की ज्योति सतत रूप से प्रज्वलित रहनी चाहिए। उस ज्योति को वासना और कामनाओं के चारों ओर से उठने वाले वायु वेगों से सदा सुरक्षित रखो। उत्तेजक विचारों से दूर रहो। मन रूपी घोड़े को संयम के कोड़े लगाकर उसे सुमार्ग पर चलाओ। चंचल मन को काबू में रहने की शिक्षा देना चाहिए। मनुष्य को जीवन के अंतिम प्रहर तक अपने समस्त सांसारिक दायित्वों और कर्मों का निर्वाह करते हुए भी धर्म और ईश्वर की भक्ति में लीन रहना चाहिए। ईश्वर के प्रति प्रेम ही जीवन का रक्त या खून है।

0: जहाँ प्रेम है वहाँ शांति होगी, जहाँ शांति है वहाँ भगवान होंगे, और जहाँ पर भगवान है वहाँ पर आनंद भी होगा। यही जीवन का आनंद है। इसी आनंद को प्राप्त करना मनुष्य देह का लक्ष्य और इस लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास करना ही जीवन है।
1: ये था आज का चिंतन। हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:55 होने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार। तो आइए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र की ओर।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। ये मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग तीन गुना अधिक है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो रही है। अधिक खरीद, अच्छी फसल और किसानों की पर्याप्त सहायता से खाद्य सुरक्षा, किसानों का हित तथा सुरक्षित भविष्य के लिए देश की प्रतिबद्धता मजबूत हो रही है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय आज कानपुर स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान में उद्योग परामर्श बैठक आयोजित कर रहा है। इसमें 30 से अधिक उद्योग प्रमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और नीति विशेषज्ञ राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के बारे में विचार विमर्श करेंगे। इंडिया एआई और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्वास्थ्य सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तेजी से अपनाने के लिए नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि ये साझेदारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार और व्यापक अनुप्रयोग के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में वाणिज्य विभाग और उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक में निर्यात और निवेश बढ़ाने, नए निर्यातकों के लिए अवसर तैयार करने और वैश्विक बाजारों में नई संभावनाएं तलाशने पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन की तैयारियों के बीच विधानसभा को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया है। राज्यपाल आरएन रवि ने संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मौजूदा विधानसभा को भंग करने का आदेश जारी किया। इस बीच गृहमंत्री अमित शाह आज कोलकाता जाएंगे। वे नवनिर्वाचित भाजपा विधायकों के साथ बैठक में शामिल होंगे, जिसके बाद पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। उधर असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। समारोह की तैयारियों के लिए गुवाहाटी में एक उच्चस्तरीय बैठक हुई। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी तमिलगा वित्री कड़गम पार्टी का सरकार गठन के लिए बहुमत सिद्ध करने के मुद्दे पर गतिरोध बना हुआ है। 234 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 118 विधायकों की आवश्यकता है। विधानसभा चुनाव में अभिनेता विजय की टीवीके पार्टी ने 108 सीटें जीती हैं। केरलम में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल आबूधाबी में भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच हुई त्रिपक्षीय बैठक में भाग लिया। बैठक में संयुक्त अरब अमीरात के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग राज्य मंत्री रीम अल हाशमी और फ्रांस के विदेश कार्य महासचिव मार्टिन ब्रायंस शामिल हुए। विदेश मंत्रालय ने बताया कि तीनों देशों ने स्पष्ट समय सीमा में भागीदारी मजबूत करने की कार्ययोजना पर सहमति व्यक्त की। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर है। मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लैम ने कहा कि पहले भी दोनों देशों ने आपसी सहयोग में कई चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी बोले, देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हुआ। राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक है सोमनाथ, कहा मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने। सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा का पहला जत्था कल रवाना। आज प्रदेश के ग्वालियर समेत 21 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट। और आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को कल 9 रन से हराया। आज शाम दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। ये मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग 3 गुना अधिक है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो रही है। भारी खरीद, अच्छी फसल और किसानों के पर्याप्त सहायता से खाद्य सुरक्षा, किसानों का हित और सुरक्षित भविष्य के प्रति देश की प्रतिबद्धता मजबूत हो रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल राजधानी भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा के पहले जत्थे के 1100 श्रद्धालुओं को ट्रेन से रवाना किया। ये जत्था आज सोमनाथ पहुंचेगा। जत्थे को रवाना करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सोमनाथ हमारी प्राचीन विरासत, आस्था और राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक है। सोमनाथ साक्षी है कि सृजन शक्ति हमेशा विनाशकारी शक्ति से प्रभावी होती है।
1: गुजरात भगवान श्री कृष्ण के काल से, जब द्वारकाधीश ने अपने जीवन काल में अधर्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी, तो पूरा देश अलग दौर में पहुंचा। और हम सब जानते हैं 1000 साल पहले भारत को काली छाया ने ग्रंट के रूप में ढसा, तो बाबा सोमनाथ का मंदिर था। सोमनाथ ये स्वाभिमान के साथ भी जुड़ा हुआ है। सोमनाथ हमारे देश के विकास का पर्याय भी है।
0: संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित ये गौरवशाली यात्रा सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अंतर्गत निकाली जा रही है। वियतनाम के राष्ट्रपति तुलाम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर है। मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लाम ने कहा कि पहले भी दोनों देशों ने आपसी सहयोग में कई चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। वियतनाम के राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पूर्व वियतनामी राष्ट्रपति हो ची मिन और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं की दूरदृष्टि पर आधारित हैं। प्रदेश में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीयन प्रक्रिया जारी है। उच्च शिक्षा विभाग

0: के ई प्रवेश पोर्टल के माध्यम से पंजीयन कराने की अंतिम तारीख 15 मई है। पंजीयन 1 और 2 मई से शुरू हुआ था और कल तक विभिन्न स्नातक, स्नातकोत्तर और एनसीटी पाठ्यक्रमों में कुल 60,000 से ज्यादा पंजीयन हो चुके हैं। प्रथम चरण की आवंटन सूची 20 मई को ई प्रवेश पोर्टल पर जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल सफाई मित्रों को पीपीई किट प्रदान की। पीपीई किट में रेनकोट, फुल बॉडी ड्रेस, हेलमेट, ग्लव्स, मास्क और रिफ्लेक्शन जैकेट शामिल है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लक्ष्मीबाई और काजल सटोरिया को आवंटन आदेश पत्र और मकान की चाबी प्रदान की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत दिनेश मौर्य को 50,000 रूपये की ऋण राशि का चेक प्रदान किया। डॉ. यादव ने पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत पूजा गिरी गोस्वामी को सहायता समूह के लिए 2,00,000 रूपये से अधिक की ऋण राशि का भी चेक प्रदान किया। राज्य सरकार ने डॉ. निवेदिता शर्मा को मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। इस संबंध में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा कल अधिसूचना जारी की गई। अधिसूचना के अनुसार डॉ. निवेदिता शर्मा का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक पूरे होने तक रहेगा। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर एआईआर न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज कोलकाता पहुंच रहे हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। बैठक के दौरान पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। भोपाल स्थित भारत भवन में आज से माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय का 3 दिवसीय मीडिया महाकुंभ शुरू हो रहा है। यह कार्यक्रम हिंदी पत्रकारिता के 200 साल पूरे होने के जश्न में आयोजित किया जा रहा है। 3 दिन तक चलने वाले इस आयोजन में देशभर के 60 से ज्यादा जाने माने पत्रकार, संपादक और विचारक शिरकत करेंगे। आकाशवाणी के 90 साल पूरे होने के जश्न में आज सुबह 8:30 पर भोपाल में एक खास वॉकेथॉन का आयोजन किया जा रहा है। श्यामला हिल्स स्थित आकाशवाणी भोपाल केंद्र के दफ्तर से इस वॉकेथॉन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। यह आयोजन रेडियो की इस ऐतिहासिक यात्रा को सलाम करने का एक अनोखा तरीका है। प्रदेश में कुछ हिस्सों में कल आंधी और बारिश होने से तापमान में गिरावट आई और भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली। मौसम केंद्र भोपाल के अनुसार कल रीवा में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया, जबकि ग्वालियर, नौगांव, सीधी और सतना में भी तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के ग्वालियर समेत 21 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं भोपाल, इंदौर, उज्जैन समेत प्रदेश के 34 जिलों में गर्मी का असर बना रहेगा। यहां अधिकतम तापमान 40 डिग्री या इसके आसपास बना रह सकता है। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को कल 9 रन से हरा दिया। लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी काना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में बारिश होने से बाधित इस मुकाबले में 213 रनों के लक्ष्य के जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने निर्धारित 19 ओवर में 6 विकेट पर 203 रन ही बना सकी। आईपीएल में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी में कल विश्व एथलेटिक्स दिवस के अवसर पर माधवराव सिंधिया जिला खेल स्टेडियम में विभिन्न खेलों का आयोजन किया गया। खंडवा कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि दुर्घटना संभावित ब्लैक स्पॉट्स पर तत्काल सुरक्षा सुधार कार्य किए जाएं। सतना में जिला पशु कल्याण समिति की बैठक में कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार ने गौशालाओं की विभिन्न व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आगर मालवा में जनगणना प्रक्रिया के अंतर्गत मकानों की गणना और स्वगणना कार्य को 100% पूरा कर उत्कृष्ट कार्य करने वाले 5 प्रगणकों को एसडीएम द्वारा सम्मानित किया गया। झाबुआ में आज सांसद अनिता चौहान की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं मूल्यांकन समिति की बैठक आज आयोजित की जाएगी। मंडला जिले के आकांक्षी विकासखंड नारायणगंज में नीति आयोग द्वारा संचालित आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की कल संभागायुक्त धनंजय सिंह द्वारा समीक्षा की गई। शाजापुर जिले और शुजालपुर तहसील में कल नेशनल लोक अदालत आयोजित की जाएगी। धार में वन विभाग द्वारा कर्मचारियों की कार्य क्षमता वृद्धि के लिए प्रदेश की पहली एआई ट्रेनिंग का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में।

0: मीडियम वीप 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्स और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए हिंदी में के अंतर्गत भेंट वार्ता अपेंडिक्स कारण लक्षण और बचाव। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर राजीव सिन्हा।
1: श्रोताओं, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर राजीव सिन्हा। आप सर्जन हैं और हमारे श्रोताओं को एक बहुत अच्छी जानकारी देने जा रहे हैं। डॉक्टर सिन्हा, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ये बताएं, आजकल एक बीमारी का बहुत चलन है, अपेंडिक्स। ये क्या होता है, हमारे श्रोताओं को बताएं।
2: अपेंडिक्स एक नॉर्मल ग्रंथि होती है जो कि जहाँ छोटी आंत और बड़ी आंत मिलती है वहाँ पे पाई जाती है, और नॉर्मली इसकी लंबाई जो है वो 1 इंच से लेके और 5 इंच तक हो सकती है। अपेंडिक्स का काम मनुष्यों में उतना नहीं होता है जितना कि और जानवरों में होता है। मनुष्यों में अपेंडिक्स का काम थोड़ा बहुत इन्फेक्शन को दूर करने में आता है, इसके अथवा इसका और कोई मेजर काम नहीं होता है।
1: डॉक्टर सिन्हा, ये बताइए कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को अपेंडिक्स हो जाता है तो उस बीमारी को कैसे पहचाना जाए?
2: देखिए, इस अपेंडिक्स का शरीर में जैसा मैंने अभी बताया कोई खास काम नहीं होता है, लेकिन अगर इसमें किसी तरह का इन्फ्लेमेशन हो जाए या सूजन आ जाए तो वो काफ़ी खतरनाक हो सकती है। इस सूजन को हम लोग अपेंडिसाइटिस कहते हैं, और ये अपेंडिसाइटिस जो होती है ये किसी भी उम्र में हो सकती है। छोटे बच्चे जैसे 4 साल 5 साल का बच्चा हो, और या फिर बूढ़ा हो, 60-70 साल का बूढ़ा हो, किसी भी उम्र में पाई जा सकती है। सूजन जो होती है वो उसकी कोई खास वजह नहीं होती है, इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती है, कुछ खाना वहाँ जाके उसके मुंह पे अटक जाए उसकी वजह से भी हो सकती है, या उसकी खून में खून का बहाव अपेंडिक्स को कम मिलने लगे तो उसकी वजह से भी अपेंडिसाइटिस हो सकती है। तो एक बार अगर अपेंडिसाइटिस हो जाती है तो ये नॉर्मली काफ़ी खतरनाक भी हो सकती है, इसलिए इसके बारे में विस्तृत में जानना काफ़ी ज़रूरी है।
1: मान लीजिए किसी व्यक्ति को अपेंडिक्स हो जाता है तो उसके लिए आगे जीवन में क्या क्या खतरे हो सकते हैं?
2: सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि अपेंडिसाइटिस जब होती है तो आप कैसे पहचानेंगे उसको। सबसे पहले दर्द इसमें जो होता है बहुत तेज दर्द होता है, हल्का भी हो सकता है, लेकिन जब भी होता है, जब शुरुआत होती है तो नाभि के चारों तरफ दर्द होता है या पेट के बाई तरफ होता है, हालांकि अपेंडिक्स दाहिनी तरफ पाई जाती है, लेकिन दर्द कई बार बाई तरफ शुरू होता है या नाभि के चारों तरफ शुरू होता है, और 24 घंटे के अंदर जो दर्द है फिर ये दाहिनी तरफ होने लगता है निचले हिस्से में, और दर्द के साथ इसमें हमेशा आपको उल्टियां मिलेंगी, और दर्द जैसा मैंने बताया ये तो हल्का होगा बट अमूमन बहुत तेज दर्द मिलता है, बुखार भी हो सकता है हल्का हल्का, और कई बार इसमें दस्त भी लग सकते हैं, और दर्द पीछे पीठ की तरफ भी जा सकता है। अगर ये समय से इसका उपचार न किया जाए तो 2-3 बातें हो सकती हैं। पहली बात तो ये होती है कि अगर दर्द हल्का है तो कई बार शरीर की अपनी जो फाइटिंग एबिलिटी होती है उसकी वजह से ये दर्द को दबा देती है, और मरीज का दर्द 2 या 3 दिन में अपने आप ही खत्म हो जाता है। कई बार अगर आप समय पर इसको उपचार करा लें तो उससे भी दर्द खत्म हो जाता है। तीसरा सूरत वो होती है कि मान लीजिए उपचार समय से न हुआ हो और उसमें सूजन काफ़ी ज़्यादा हो, तो उन स्थितियों में इसकी बहुत खतरनाक रूप ले सकती है अपेंडिसाइटिस। उन खतरों में सबसे पहले तो ये है कि इसकी सड़न हो सकती है, जिसे हम लोग गैंग्रीन कहते हैं अपेंडिक्स की। दूसरा ये होता है कि अपेंडिक्स कई बार फट जाती है, उसकी वजह से क्या होता है कि पूरे पेट में मवाद फैलना शुरू हो जाता है, पेट फूलने लगता है, उल्टियां और ज़्यादा बढ़ जाती हैं, टट्टी पेशाब बंद हो जाती है, और धीरे धीरे मरीज की हालत मरणासन की तरफ होने लगती है अगर समय से उपचार न किया जाए। इसीलिए कहते हैं होती तो बहुत छोटी सी है अपेंडिक्स, लेकिन अगर उसका सूजन का उपचार अगर सही समय पर न किया जाए तो कई बार वो जानलेवा भी हो सकती है।
1: आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। ये बताइए कि अपेंडिक्स के उपचार क्या हैं? पहले तो दवाइयों से क्या ऐसे नियंत्रण में लिया जा सकता है? यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति का अपेंडिक्स इतना बढ़ गया है कि दवाई से वो नियंत्रण में नहीं आ रहा है तो क्या सर्जरी के द्वारा उसे बाहर किया जा सकता है?

0: देखिए, एक बात मैं सबसे पहले बता दूं कि अपेंडिसाइटिस अगर किसी मरीज को हुई है, एक बार भी अगर सूजन हुई है, तो उसका परमानेंट इलाज सिर्फ उसको निकालने द्वारा होता है, जिसे हम लोग अपेंडेक्टमी कहते हैं, मतलब अपेंडिक्स का सर्जरी द्वारा निकालना। ये बात और है कि लोग उसको टालते रहते हैं, कई डॉक्टर भी सुझाव देते हैं कि आप उसका इलाज करा लीजिए, बैठ जाएगी बैठ जाएगी। लेकिन अगर अपेंडिक्स में एक बार दर्द हुआ है आपके, तो चाहे एक दिन बाद हो, चाहे एक महीने बाद हो, चाहे एक साल बाद हो, चाहे 10 साल बाद हो, दर्द फिर से होना है। और अगली बार हो सकता है उसका रूप इतना विकार वाल हो कि आप, जैसा मैंने ही बताया था, वो अपेंडिक्स फट जाए और आप बच ना पाए, कहीं सफर कर रहे हो उस समय दर्द हो जाए, समय से इलाज ना मिले। तो इसलिए ये हम लोग सजेस्ट करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके, अगर आपको मालूम है कि एक बार आपको अपेंडिक्स से दर्द हुआ है, तो जितनी जल्दी हो सके उसको आप निकलवा लें। रही इलाज की बात, तो सबसे पहले तो आप दवाइयां कोशिश कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हल्का दर्द हुआ है, तो थोड़े दिन को दबाने के लिए आप उसमें दवाइयां कोशिश कर सकते हैं। उसमें एंटीबायोटिक्स लेते हैं और दर्द निवारक दवाएं लेते हैं, और 4-5 दिन में आपका दर्द खत्म हो सकता है। लेकिन इसमें एक परेशानी ये है कि मरीज के दिमाग में ये बैठ जाता है कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया, और अगर कोई डॉक्टर उसको सर्जरी बताता भी है, तो समझता है कि डॉक्टर जो है गलत राय दे रहा है। लेकिन ये दिमाग से बिल्कुल निकाल देना चाहिए कि जैसा मैंने कहा था कि अगर अपेंडिसाइटिस का दर्द एक बार हुआ है तो फिर से होगा, और अगली बार हो सकता है इसका रूप और ज्यादा खतरनाक हो। तो अल्टीमेट जो इसका इलाज होता है, या अंत इलाज जो होता है, उसका हमेशा अपेंडिक्स का सर्जरी द्वारा निकालना ही होता है, जो कि बहुत छोटा सा ऑपरेशन होता है, खास तकलीफ नहीं होती है, 3-4 दिन में मरीज छुट्टी भी हो जाती है, और हमेशा के लिए एक ऐसी परेशानी से छूट मिल जाती है जो कि आगे चल के खतरनाक भी हो सकती है।
1: डॉक्टर सिन्हा, एक और चीज बताइए कि ऑपरेशन करने के बाद आपने कहा कि 3-4 दिन बाद मरीज स्वस्थ हो जाता है, ये बीमारी ये दोबारा लौटने के कितने चांस रहते हैं व्यक्ति के अंदर?
0: जैसा मैंने बताया कि अगर एक बार अपेंडिसाइटिस हुई है, तो दूसरी बार तो आपको दर्द होना ही होना है, समय का कोई वो नहीं होता है, चाहे एक दिन बाद हो चाहे 10 साल बाद हो, और 90-95% मरीजों में फिर से होना ही है दर्द ये। और जैसा मैंने बताया कि इसका ऑपरेशन बहुत छोटा सा होता है, कई तरीकों से आजकल होने लगा है, नई दूरबीन पद्धति से भी हो जाता है, छोटे चीरे से भी हो जाता है, पूरे पेट फाड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। और अगर मान लीजिए अपेंडिक्स फट गई है, तो उस छोटे चीरे से बचने के चक्कर में आप जो है पूरा पेट फड़वाएंगे, उसमें फिर ये है कि 7-8 दिन रहेंगे, जिंदगी का अलग खतरा है। तो इसलिए आज के जमाने में कहते हैं, जबकि अपेंडिक्स के लिए तो छोटे छोटे ऑपरेशंस इजाद हो गए हैं, तो अगर मालूम पड़ता है कभी भी कि आपको अपेंडिक्स का दर्द हुआ है, तो आप उसको हमेशा निकलवा ही लीजिए।
1: बहुत अच्छी जानकारी दी डॉक्टर सिन्हा आपने। निश्चित ही आपकी बातें, आपकी सुझाव हमारे श्रोताओं तक पहुंचे हैं, और वो इन पर, अगर किसी को ऐसी समस्या है, तो निश्चित ही वो इनका निदान ढूंढने में आसानी होगी। आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हिंदी महक के अंतर्गत भेंट वार्ता, अपेंडिक्स कारण लक्षण और बचाव। विशेषज्ञ थे डॉक्टर राजीव सिन्हा। ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। पेश कार्यक्रम फिल्म संगीत।

0: से न पूछो कि तुम मेरे कौन हो,
1: ये तो बताओ कि तुम।
2: श्रोता, अभी आप सुन रहे थे फिल्म चोरी चोरी का ये गीत। आवाजें थीं लता मंगेशकर और मन्ना डे की, गीतकार थे शैलेंद्र और संगीत था शंकर जयकिशन का। श्रोताओं, अगला गीत हमने लिया है फिल्म गूंज उठी शहनाई से। आवाजें हैं लता मंगेशकर, गीता रॉय और साथियों की, संगीत बसंत देसाई का है और गीतकार हैं भरत व्यास। तो आइए सुने अगला गीत।

अब आप सुन रहे थे भरत व्यास की रचना वसंत देसाई के संगीत निर्देशन में। आवाजें थी लता मंगेशकर, गीता रॉय और साथियों की। फिल्म का नाम था गूंज उठी शहनाई। अगला गीत हम आपको सुनवाएंगे लेकिन इस अंतराल के बाद।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म ज्वेल थीप का गीत, आवाज थी किशोर कुमार की, संगीत था एचडी बर्मन साहब का और गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी। अगला गीत हमने लिया है फिल्म मनमौजी से, आवाज एक बार पुनः किशोर कुमार की, संगीत मदन मोहन का और गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

श्रोताओं, ये मधुर आवाज है मोहम्मद रफी की फिल्म सूरज और चंदा में। इसके संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारीलाल और गीत लिखा है आनंद बख्शी ने।

और आइए कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं फिल्म आशिक का ये गीत। आवाज मुकेश की है, गीतकार हैं शैलेंद्र और संगीत शंकर जयकिशन का।

इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। प्रातः के 8 बजने को हैं समाचार प्रभात बस कुछ ही पलों में। तो आइए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र की ओर।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में संतूर वादन। कलाकार थे पंडित शिव कुमार शर्मा, राग था सोहनी। ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है, प्रस्तुत है लोकरंग कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में कलाकार हैं रमेश प्रसाद डांगी। कार्यक्रम का आरंभ करते हैं देवी गीत से।

0: आप सुन रहे थे देवगीत, कलाकार थे रमेश प्रसाद डांगी।
1: दस लाख की लॉटरी मुझे,
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: ओहो भाई साहब, फिर खराब हो गया आपकी चक्की का पत्थर।
5: क्या करें बहन जी, ये हर बार की मुसीबत है।
4: डुप्लीकेट पत्थर तो मुसीबत ही है, चक्की का पक्का साथी जोयल पत्थर लाओ और मुसीबत से छुटकारा पाओ। कीमत बढ़ने पर भी आपको मिल रहा है पुरानी कीमत में जोयल पत्थर।
5: जोयल के असली पत्थर के लिए आए ओमरे जी की पुरानी दुकान, ओमरे कॉम्प्लेक्स, दुकान नंबर 4, लिंक रोड, सागर।
0: लोकरंग कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं ये कृष्ण भजन, कलाकार एक बार फिर रमेश प्रसाद पर दांगी।

0: अब कैंसर इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं,
1: क्योंकि अब ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में पेट सीटी स्कैन, लीनियर एक्सेलरेटर जैसे एडवांस मशीन्स उपलब्ध हैं। कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, मंदिर की माता।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: और श्रोताओं, आप सुनते हैं चेतावनी। कलाकार हैं रमेश प्रसाद दांगी।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे चेतावनी, कलाकार थे रमेश प्रसाद दांगी।
1: अब कैंसर इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं,
2: क्योंकि अब ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में पेट सीटी स्कैन, लीनियर एक्सेलरेटर जैसे एडवांस मशीन्स उपलब्ध हैं। कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, मंदिर की माता।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: और अब सुनते हैं गणेश भजन, कलाकार एक बार फिर रमेश प्रसाद धांगी।

आप सुन रहे थे गणेश भजन, कलाकार थे रमेश प्रसाद तांगी। और आइए कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं ये बुंदेली गारी, कलाकार एक बार फिर रमेश प्रसाद तांगी।

इसी बुंदेली गारी के साथ ही लोकरंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज इस कार्यक्रम में कलाकार थे रमेश प्रसाद दांगी। ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। पेश है फिल्मी कव्वालियों का कार्यक्रम।

0: हुस्न हमारी नजर का साया है, हमारे सामने बैठो बैठो ना, हमारे सामने बैठो के फैसला हो जाए
1: हो जाए हो जाए। उस्ताद
2: क्या कहा? हमारा हुस्न तुम्हारी नजर का साया है, हुजूर ने हमें इतना हसीं बनाया है।

श्रोताओं, ये कव्वाली हमें ली थी फिल्म शादी कर लो। इस फिल्म से आवाजें थी मोहम्मद रफी, परवीन सुल्ताना और साथियों की। अगली कव्वाली हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन इस अंतराल के बाद।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे फिल्म फूल और इंसान की शानदार कव्वाली। आवाजें थी महेंद्र कपूर और साथियों की।

0: श्रोताओं, ये कव्वाली हमने ली थी फिल्म जालिम से। आवाजें थी किशोर कुमार, मन्ना डे और साथियों की। इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी छतरपुर से फिल्मी कव्वालियों का शानदार कार्यक्रम। अगली कव्वाली हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन इस अंतराल के बाद।
1: बदलो बदलो, आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे फिल्म बेशर्म की ये कव्वाली। आवाजें थी अनुराधा, उषा थिमोथी और कंचन की। अगली कव्वाली हमने ली है फिल्म चरणदास से। आवाजें हैं

इसी कव्वाली के साथ ही फिल्मी कव्वालियों का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। आइए चलते हैं आकाशवाणी के भोपाल केंद्र की ओर और सुनते हैं जिले की चिट्ठी।

0: लिखी प्रस्तुत है जिले की चिट्ठी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है सीधी जिले की चिट्ठी। आलेख सचिंद्र मिश्र, वाचन स्वर दीपा सिंह। सीधी जिले में इन दिनों एक साथ कई बदलाव और गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। मौसम के बदलते तेवर, प्रशासनिक सक्रियता, सामाजिक अभियानों की रफ्तार, महिला सशक्तिकरण की पहल, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े कार्यक्रम सभी मिलकर जिले की एक व्यापक तस्वीर प्रस्तुत कर रहे हैं। मई माह की शुरुआत इस बार सामान्य वर्षों की तुलना में अलग रही। जहां आमतौर पर इस समय तेज गर्मी का असर देखने को मिलता है, वहीं इस बार आंधी और बारिश ने मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल दिया है। तेज हवाओं और ओलावृष्टि के साथ हुई बारिश ने किसानों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। उधर उपार्जन केंद्रों और समितियों में रखे अनाज पर भी इस मौसम का असर देखने को मिला है। प्रशासन ने स्थिति को गंभीरता से लेते हुए सभी संबंधित अधिकारियों और समितियों को निर्देश जारी किए कि अनाज को सुरक्षित रखने के लिए समुचित प्रबंध किए हैं। जिले में गेहूं उपार्जन का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। किसानों के लिए सुविधाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। हजारों किसान स्लॉट बुकिंग के माध्यम से अपनी उपज बेच रहे हैं। पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सैटेलाइट सत्यापन जैसी तकनीक

जारी है। स्वच्छता अभियान को और मजबूती देने के लिए जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी भी देखने को मिली। विधायक रीति पाठक ने रात्रिकालीन सफाई अभियान में स्वयं श्रमदान कर एक प्रेरक उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने सफाई कर्मियों के साथ संवाद कर उनके कार्यों की सराहना की और लोगों से अपील की है कि वे अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखने में सहयोग करें। प्रशासनिक स्तर पर जनगणना अभियान को लेकर भी विशेष सक्रियता दिखाई दे रही है। कलेक्टर ने स्वयं मैदान में उतरकर जनगणना कार्य में भाग लिया। उन्होंने एक परिवार के घर पहुंचकर न केवल प्रक्रिया का अवलोकन किया बल्कि लोगों को सही जानकारी देने का महत्व भी समझाया। जनगणना केवल आंकड़ों का संग्रह नहीं बल्कि भविष्य की योजनाओं का आधार होती है। इसी कारण प्रशासन इस कार्य को पूरी पारदर्शिता और सटीकता के साथ संपन्न कराने के लिए प्रयासरत है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी जिले में उल्लेखनीय पहल की जा रही है। चुरहट में आयोजित अवनी कार्यक्रम ने महिलाओं को एक सशक्त मंच प्रदान किया। इस कार्यक्रम में सांसद डॉ. राजेश मिश्रा ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। इस आयोजन में स्वास्थ्य पोषण और आत्मनिर्भरता से जुड़े विभिन्न पहलुओं को भी शामिल किया गया। महिलाओं और किशोरियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। उन्हें पोषण और स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। शिक्षा और रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम में क्रिएटिव गतिविधियां भी आयोजित की गई। यहां छात्राओं ने चित्रकला के माध्यम से अपने सपनों और भविष्य की कल्पनाओं को प्रस्तुत किया। ये पहल न केवल उनकी प्रतिभा को मंच देती है बल्कि आत्मविश्वास भी बढ़ाती है। समग्र रूप से देखा जाए तो सीधी जिले में विकास, जागरूकता और जन भागीदारी का संतुलित स्वरूप दिखाई दे रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, महिला सशक्तिकरण और कृषि, इन सभी क्षेत्रों में हो रहे प्रयास ये संकेत देते हैं कि सीधी जिला निरंतर प्रगति की दिशा में अग्रसर है। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे सीधी जिले की चिट्ठी। आलेख सचिंद्र मिश्र का था और वाचन स्वर था दीपा सिंह का। आप सुन रहे हैं
1: मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर। ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए गांधी चर्चा। प्रवक्ता और प्रस्तुत करता है महेश शर्मा।

श्रोताओं, आज से हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आत्मकथा का वाचन आरंभ कर रहे हैं। आज का प्रथम प्रसंग है जन्म। गांधी कुटुंब पहले तो पंसारी का धंधा करने वाला था, लेकिन मेरे दादा से लेकर पिछली 3 पीढ़ियों से वह दीवानगिरी करता रहा है। ऐसा मालूम होता है कि उत्तम चंद गांधी अथवा ओता गांधी टेक वाले थे। राजनीतिक खटपट के कारण उन्हें पोरबंदर छोड़ना पड़ा था और उन्होंने जूनागढ़ राज्य में आश्रय लिया था। उन्होंने नवाब साहब को बाएं हाथ से सलाम किया। किसी ने इस प्रकट अभिनय का कारण पूछा तो जवाब मिला, दाहिना हाथ तो पोरबंदर को अर्पित हो चुका है। ओता गांधी के एक के बाद दूसरा यूं 2 विवाह हुए थे। पहले विवाह से उनके 4 लड़के थे और दूसरे से 2। अपने बचपन को याद करता हूं तो मुझे ख्याल नहीं आता कि ये भाई सौतेले थे। इनमें 5वें करमचंद अथवा काबा गांधी और आखिरी तुलसीदास गांधी थे। दोनों भाइयों ने बारी बारी से पोरबंदर में दीवान का काम किया। काबा गांधी मेरे पिताजी थे।

पोरबंदर की दीवानगिरी छोड़ने के बाद वे राजस्थानी कोर्ट के सदस्य थी। मृत्यु के समय वे राजकोट दरबार के पेंशनर थे। काबा गांधी के भी एक के बाद एक यूं चार विवाह हुए थे। पहले दो से दो कन्याएं थीं, अंतिम पत्नी पुतलीबाई से एक कन्या और तीन पुत्र थे, उनमें अंतिम मैं हूं। पिता कुटुंब प्रेमी, सत्यप्रिय, शूर, उदार किंतु क्रोधी थे। थोड़े विषयासक्त भी रहे होंगे। उनका आखिरी विवाह 40वें साल के बाद हुआ था। हमारे परिवार में और बाहर भी उनके विषय में यह धारणा थी कि वे रिश्वतखोरी से दूर भागते हैं और इसलिए शुद्ध न्याय करते हैं। राज्य के प्रति वे बहुत वफादार थे। एक बार प्रांत के किसी साहब ने राजकोट के ठाकुर साहब का अपमान किया था। पिताजी ने उसका विरोध किया। साहब नाराज हुए, काबा गांधी से माफी मांगने के लिए कहा। उन्होंने माफी मांगने से इनकार किया। फलस्वरूप कुछ घंटों के लिए उन्हें हवालात में भी रहना पड़ा। इस पर भी जब वे डिगे नहीं तो अंत में साहब ने उन्हें छोड़ देने का हुक्म दिया। पिताजी ने धन बटोरने का लोभ कभी नहीं किया। इस कारण हम भाइयों के लिए वे बहुत थोड़ी संपत्ति छोड़ गए थे। पिताजी की शिक्षा केवल अनुभव की थी। आजकल जैसे हम गुजराती की पांचवी किताब का ज्ञान कहते हैं, उतनी शिक्षा उन्हें मिली होगी। इतिहास भूगोल का ज्ञान तो बिल्कुल ही न था, फिर भी उनका व्यावहारिक ज्ञान इतने ऊंचे दर्जे का था कि बारीक से बारीक सवालों को सुलझाने में अथवा हजार आदमियों से काम लेने में भी उन्हें कोई कठिनाई नहीं होती थी। धार्मिक शिक्षा नहीं के बराबर थी, पर मंदिरों में जाने से और कथा वगैरह सुनने से जो धर्म ज्ञान असंख्य हिंदुओं को सहज भाव से मिलाता रहता है वह उनमें था। आखिर के साल में एक विद्वान ब्राह्मण की सलाह से, जो परिवार के मित्र थे, उन्होंने गीता पाठ शुरू किया था और रोज पूजा के समय वे बहुत थोड़े श्लोक ऊंचे स्वर से पाठ किया करते थे। मेरे मन पर यह छाप रही कि माता सांध्वी स्त्री थीं। वे बहुत श्रद्धालु थीं। बिना पूजा पाठ के कभी भोजन न करती, हमेशा हवेली जाती, वैष्णो मंदिर। जब से मैंने होश संभाला तब से मुझे याद नहीं पड़ता कि उन्होंने कभी चतुर्मास का व्रत तोड़ा हो। वे कठिन से कठिन व्रत शुरू करती और उन्हें निर्विघ्न पूरा करती। लिए हुए व्रतों को बीमार होने पर भी कभी न छोड़ती। ऐसे एक समय की मुझे याद है कि जब उन्होंने चंद्रायण का व्रत लिया था, व्रत के दिनों में वे बीमार पड़ी पर व्रत नहीं छोड़ा। चतुर्मास में एक बार खाना तो उनके लिए सामान्य बात थी। इतने से संतोष ना करके एक चौमासी वैष्णो मंदिर। जब से मैंने होश संभाला तब से मुझे याद नहीं पड़ता कि उन्होंने कभी चतुर्मास का व्रत तोड़ा हो। वे कठिन से कठिन व्रत शुरू करती और उन्हें निर्विघ्न पूरा करती। लिए हुए व्रतों को बीमार होने पर भी कभी न छोड़ती। ऐसे एक समय की मुझे याद है कि जब उन्होंने चंद्रायण का व्रत लिया था, व्रत के दिनों में वे बीमार पड़ी पर व्रत नहीं छोड़ा। चतुर्मास में एक बार खाना तो उनके लिए सामान्य बात थी। इतने से संतोष ना करके एक चौमास

ऐसे में उन्होंने तीसरे दिन भोजन करने का व्रत लिया था। लगातार दो तीन उपवास तो उनके लिए मामूली सी बात थी। एक चतुर्मास में उन्होंने यह व्रत लिया था कि सूर्य नारायण के दर्शन करके ही भोजन करेंगी। उस चौमासे में हम बालक बादलों के सामने देखा करते कि कब सूरज के दर्शन हो और कब मां भोजन करे। यह तो सब जानते हैं कि चौमासे में अक्सर सूर्य के दर्शन दुर्लभ हो जाते हैं। मुझे ऐसे दिन याद हैं कि जब हम सूरज को देखते और कहते, मां मां सूरज दिखा, और मां उतावली होकर आती, इतने में सूरज छिप जाता और मां यह कहती हुई लौट जाती कि कोई बात नहीं, आज भाग में भोजन नहीं है, और अपने काम में डूब जाती। माता व्यवहार कुशल थी, राज दरबार की सब बातें भी जानती थी। रहनिवास में उनकी बुद्धि की अच्छी कदर होती थी। मैं बालक था, कभी कभी माताजी मुझे भी अपने साथ दरबार गढ़ ले जाती थी। बा मां साहब के साथ होने वाली बातों में वे कुछ मुझे अभी तक याद हैं। इन माता के घर में संवत 1925 की भादोपदी बरस के दिन अर्थात 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर अथवा सुदामापुरी में मेरा जन्म हुआ। बचपन मेरा पोरबंदर में ही बीता। याद पड़ता है कि मुझे किसी पाठशाला में भर्ती किया गया था और मैंने वहां थोड़े से पहाड़े सीखे थे। अभी आपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा लिखित पुस्तक सत्य के प्रयोग, गांधी जी की आत्मकथा के प्रथम प्रसंग जन्म को सुना। बापू जी को भजन बहुत प्रिय थे। बापू जी ने कहा था, उपासना ऐसी प्रार्थना निरावाणी विलास नहीं होती, उसका मूल कंठ नहीं हृदय है। अतएव यदि हम हृदय की निर्मलता को पालें, उसके तारों को सुसंगठित रखें, तो उनमें से जो सुर निकलते हैं वे गगनगामी होते हैं।

और इसी के साथ ही आज की गांधी चर्चा संपन्न हुई। प्रवक्ता और प्रस्तुतकर्ता महेश शर्मा।

आप सुन रहे थे गांधी चर्चा। ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। प्रस्तुत है गैर फिल्मी भजनों का कार्यक्रम। कार्यक्रम का आरंभ करते हैं शिव भजन से। कलाकार हैं पंडित राजन साजन मिश्र। भजन आपको सुनवाएंगे लेकिन इस अंतराल के बाद।

0: में आए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉक्टर बी आर श्रीवास्तव के नेतृत्व में शुरू हुआ है एडवांस्ड एआई बेस्ड रेडियोथेरेपी सेंटर। सरकारी योजनाओं के तहत निःशुल्क इलाज भी उपलब्ध है।
3: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, ग्वालियर।

क्या सच्चाई है, क्या वास्तविकता है, आप सभी जानते हैं। कन्हैया ने माखन खाया है और मां ने देख लिया, दोनों जानते हैं माखन खाया है। मुख से निकल गया, मैं नहीं माखन खाया। कन्हैया ने कहा मुख से निकल गया तो क्या हुआ, अभी सिद्ध कर देते नहीं खाया। और ऐसे ऐसे तर्क दिए, मां को ऐसा समझाया कि अंत में मां ने कह दिया हां बेटा तूने माखन नहीं खाया।

कि अंत में मां ने कह दिया हां बेटा तूने माखन नहीं खाया। सबसे पहला तर्क दिया, कहने लगे मां ये तुमने सोचा कैसे मैंने माखन खाया, तुम्हें तो मालूम है कितने काम है मेरे पास, सुबह से शाम फुर्सत नहीं मिलती।

श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे गैर फिल्मी भजनों का कार्यक्रम। मीडियम वीप 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्स और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। प्रस्तुत है श्रोताओं के पत्रों एवं ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद है।

श्रोताओ, ये गीत हमने लिया था फिल्म प्रेम रोग से। आवाजें थी लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की, गीतकार थे संतोष आनंद और संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का। इस गीत को पसंद किया था मेल के माध्यम से जो हमारे पास फरमाइश आई हैं। सबसे पहले मेल को ही लेते हैं। मेल के माध्यम से हमें जो फरमाइश भेजी है, ये पहली फरमाइश है शिवाजी चौक कटनी से। अनिल ताम्रकार, अमर ताम्रकार, दिलीप वर्मा, संजय सोनी, अरुण कनौजिया, पवन यादव, रजन रजक, लालू सोना, संजीव वर्मा और उनके साथी, भटीपुरा महोबा से कृष्ण कुमार गुप्ता और कमला देवी, मोरटक्का माफी जिला खंडवा से मेल के माध्यम से हमें फरमाइश भेजी है जगन्नाथ पटेल, ज्योति पटेल, शुभम, देवी दीन, भावना, मनमानस और कनिका पटेल ने। मेरठ कैंट से मेल के माध्यम से फरमाइश भेजने वाले हैं दिग्दर्शन और कविता गौड़। ग्राम लसूड़िया, पाता तहसील, नरसिंहगढ़ जिला, राजगढ़ मध्य प्रदेश से पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं गोविंद वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोमल, परी, कृतिका, रमेश चंद्र डांगी।

एक और मेल के माध्यम से हमारे पास फरमाइश आई है पद्मा टॉकीज नेपा नगर से। पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं सुदर्शन शाह पल्लवी, प्रखर कुशल नीतीश, सुरभि अश्वनी, मंगला बहन और राजेंद्र शाह जी। अड़ार नांदघाट छत्तीसगढ़ से ये अभी मेल आया है। पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं माखन वर्मा, चांदनी, भूपेश और दीपेश वर्मा ने। तो आइए चलते हैं आपकी ही पसंद पर, सुनते हैं कार्यक्रम का एक और प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म धर्म कांटा का ये गीत। आवाजें थीं मोहम्मद रफी और आशा भोसले की, गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी और संगीत था नौशाद का। और श्रोताओं, पसंद आप सबकी, पहले मेल हम शामिल करते हैं, इसके बाद जिन्होंने पोस्ट कार्ड के माध्यम से अपनी पसंद हम तक भेजी है उन्हें भी हम अवश्य शामिल करेंगे। ये मेल आया है ग्राम लोहड़ी, जिला महोबा, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश से। पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र, अरविंद, रागिनी, रिया, रेणु, दिव्यांशी, आराधना और रोनिका यादव ने। और इसी के साथ ये मेल है अस्पताल रोड, केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर, मध्य प्रदेश से। पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं चंद्रेश गौहर, वंदना मानवी, तन्वी गौहर और उनके परिवार वाले। और अब वो पोस्ट कार्ड जो आपने अपने हाथ से लेकर के हमारे पास भेजे हैं, पसंद भेजी है, उन्हें हम शामिल करते हैं। ये पोस्ट कार्ड आया है ग्राम व पोस्ट ममना, तहसील सरीला, जिला हमीरपुर, उत्तर प्रदेश से। पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं रामशरण, विश्वकर्मा, साहिल, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा। बिलसराया से पसंद किया है राकेश चक्रवर्ती, पुष्पेंद्र, सोनम, गोल्डी, दीप्ति, अनुज, ओमजी चक्रवर्ती ने। ये पोस्ट कार्ड हमारे पास आया है झीलों की नगरी उदयपुर से। पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं गोपाल तंबोली, कांता तंबोली, तिलक तंबोली, किरण सक्षम, परी और उनके परिवार वाले। ये पत्र आया है मोहाली पंजाब से बब्बल मल्होत्रा और ओम प्रकाश मल्होत्रा का। सारणी जिला बैतूल से पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं अमित खातरकर, निहारिका, शिवपाल यादव, अनामिका, अवंतिका, शिवालिका, पारसमणि, पंजाब राव, संदीप और उनके संगी साथी। गौरीनगर इंदौर से पसंद किया है आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी, पारस तपस्या, करिश्मा कामले ने। ये पत्र आया है बेरडी से। पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं हुकुम करमरकर, सुनीता, हार्दिक, प्राची और तनु करमरकर ने। छत्तीसगढ़ भरेवा से पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश, नेहा और वान्या सिंगरौल ने। तो सुनते हैं आप सबकी पसंद पर।

श्रोताओं, ये गीत हमने लिया था फिल्म मेला से। आवाजें थी अनुराधा पौडवाल, उदित नारायण और अभिजीत की। गीतकार थे समीर और संगीत था राजेश रोशन का। और आइए, कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म धड़कन का ये गीत।

और आइए कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म धड़कन का ये गीत। आवाजें हैं उदित नारायण, अलका याग्निक और कुमार सानू की। संगीत नदीम श्रमण का है और गीतकार हैं समीर। और इन दोनों गीतों की मिलीजुली फरमाइश इस प्रकार से है। छोटी माता मंदिर के निकट कोटरा जिला जालौन से पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं अमित तिवारी, श्रीमती पूजा तिवारी, पंडित राम बिहारी शास्त्री, आशा तिवारी, राजा भैया आभाई एवं कार्तिक। ये पत्र हमारे पास आया है तीन महुआ खापर खेड़ा से। पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं तुलसीराम साहू, मुकेश कुमार साहू, हेमंत कुमार, आरती और ममता रानी। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी से ये पसंद करते हैं बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। दुबिहा निवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी, प्रांजल। शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश, श्रीमती प्रीति, नवनीत राय। नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनका, नूपुर, रिश्का और रॉबिन। कुशवाहा रेडियो श्रोता संघ मोहाल दीवानपुरा राठ जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं विनोद कुशवाहा, नीरज, मयंक, घनश्याम, सावित्री देवी, प्रेम रानी, दिव्या, नीलम और छोटा बाबू। ग्राम सौजना जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश से घनश्याम दास रजक, कालीचरण राम जी, संदीप रजक और उनके परिवार वाले। पटेरा तहसील पटेरा जिला दमोह मध्य प्रदेश से पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं प्रदीप ताम्रकार, श्रीमती राधा ताम्रकार, प्रतीक ताम्रकार, प्रिया ताम्रकार, पारस ताम्रकार। सत्साहेब रेडियो श्रोता संघ ननोरा महोबा उत्तर प्रदेश से बलराम दास, श्रीमती कस्तूरी, कुमारी आराधना, सोनिका और उपमा। अनूपपुर से जयमंत्री केवट, अंजलि केवट, रुद्राणी कृष्णा। नरसिंहगढ़ पूर्वा छतरपुर मध्य प्रदेश से पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं दयाशंकर कुशवाहा, भवानी देवी, नारायण दास कुशवाहा, इंदु देवी कुशवाहा, भागीरथ, ममता देवी, यश राज, आयुष कुमारी, भारती कुशवाहा और उनके परिवार वाले। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम के अंत में फिल्म धड़कन का ये प्यारा सा गीत।

इसी गीत के साथ ही श्रोताओं के पत्रों एवं ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। हम आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र की ओर।

0: मीडियम वेब डीटीएच का ऑडियो चैनल साथी न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 11 बजे हैं। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। लीजिए प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने।
1: श्रोताओं फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में आप सभी का हार्दिक स्वागत। स्वीकार कीजिए अपने रेडियो सखी कविता रावत का प्यार भरा नमस्कार। तो जल्दी से डायल कीजिए 2660902 और एसटीडी कोड आप जानते ही हैं 0755। कीजिए हमसे बात और सुनिए अपनी पसंद के गीत। हमें इंतजार है आपके कॉल्स का। हेलो
2: जी आलिनी दीदी सादर नमस्कार।
1: जी नमस्ते आपका शुभ नाम।
2: जी दीदी मैं आपका वही पुराना जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति श्री राधा सिटी मथुरा उत्तर प्रदेश की वार्तालाप कर रहा हूँ। दीदी आप कैसी हैं?
1: हम बढ़िया। कहाँ से बोल रहे हैं?
2: मथुरा उत्तर प्रदेश।
1: मथुरा उत्तर प्रदेश। हाँ शारदा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बहुत अच्छे हैं। आप सुनाइए मथुरा में तो गर्मी बहुत तेज पड़ रही होगी।
2: जी दीदी हृदय से धन्यवाद करते हुए आपको बताना चाहता हूँ कि मथुरा में बहुत ज्यादा गर्मी तो नहीं है। तापमान लगभग 32 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है और रात में 24 डिग्री सेंटीग्रेड
1: पर
2: है।
1: हाँ।

0: मौसम बहुत ही खूबसूरत सुहाना है और लू की चपेट में बिल्कुल नहीं है।
1: क्या बात है, मतलब मथुरा का हमने सुना था गर्मी बहुत तेज पड़ती है इन दिनों में।
0: जी दीदी, पिछले 3-4 दिन पहले बारिश हुई थी और रिमझिम रिमझिम फुहार पड़ी थी, ठंडी ठंडी हवाएं चली थी, जिसके कारण कि तापमान 42 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ गया है।
1: अरे वाह, चलिए बहुत अच्छी बात है, मतलब अगर कोई वहाँ विजिट करना चाहे तो अभी आराम से आ सकता है।
0: जी जी बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत सुहाना मौसम है, भ्रमण करने लायक है। और जो देवालय हैं यहाँ पे, शिवालय हैं, अनेकों लीला स्थली क्रीड़ा स्थली भगवान की, वो सब दर्शन करने में बहुत ही आनंद की अनुभूति होगी।
1: बहुत अच्छी बात है, ये जानकारी हमारे लिए बहुत ही लाभकारी होगी और हमारे बाकी श्रोताओं के लिए भी, तो बहुत बहुत धन्यवाद शारदा जी। अच्छा अभी बताइए, आज का प्रोग्राम है फोन करें गीत सुने, तो आज आपने कौन से गीत सुनने की फरमाइश है आपकी?
0: दीदी आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है शोर,
1: शोर
0: कपूर साहब की आवाज में।
1: हाँ।
0: जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम, सबसे वाला गीत आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, प्रेरणादायक।
1: अच्छा, जीवन चलने का नाम
0: जी,
1: देखते हैं हम ये गीत हमारे पास वैसे तो है 99.9% है ये गीत, फिर भी एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। जो नहीं दिख रहा ये भाई,
0: 101% से और।
1: हाँ हाँ होगा वो तो। और सुनाइए शारदा जी, फैमिली में कौन कौन है आपके?
0: दीदी मैं हूँ, मेरे 2 बेटे हैं 2 बहुएं हैं, एक
1: अरे वाह
0: है, एक नतनी है।
1: अच्छा अच्छा
0: और हम सब एक ही परिवार में एक ही छत के नीचे रहते हैं।
1: हाँ।
0: आनंद पूर्वक और आप लोगों से वार्तालाप करते रहते हैं।
1: अरे वाह, मतलब आपके घर के सभी लोग है ना गीत संगीत से जुड़े हैं और हमारे आकाशवाणी रेडियो से जुड़े हुए हैं।
0: जी जी निसंदेह।
1: ठीक है शारदा जी, आपकी पसंद का गीत मेरी नजरों के सामने है, तो कल आप अपनी पसंद का गीत इस प्रोग्राम में सुन सकेंगे। जैसा कि आप जानते ही हैं कि ये रिकॉर्डेड प्रोग्राम हो चुका है, तो आप आज जो रिकॉर्ड करेंगे वो कल सुनेंगे, तो कल 11 बजे अपना।
0: करीब 2 महीने से जुड़ा हुआ हूँ, जब से ये रिकॉर्डिंग प्रोग्राम चालू हुआ है तब से मैं जुड़ गया हूँ। पहले मैं प्रयास करता था लेकिन मेरा फोन कभी लगता नहीं था लाइव प्रोग्राम में, और रिकॉर्डेड हो गया है तो
1: अच्छा।
0: मैं 8-10 दिन के अंदर से लगाता हूँ और मेरा फोन आराम से लग जाता है।
1: चलिए धन्यवाद शारदा जी, और बस एक विनती करेंगे कि 1 हफ्ते बाद ही दोबारा कॉल कीजिएगा।
0: हाँ दीदी मैं 10 दिन में करता हूँ, 9 दिन में 10 दिन करता
1: हूँ। चलिए ठीक है,
0: मैं नहीं करता।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: 28 तारीख को लगा था, 28 के बाद आज लगा रहा
1: हूँ। ओके धन्यवाद शारदा जी,
0: बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो, इसी शुभकामनाओं का।

0: हेलो हेलो हेलो। हाँ जी नमस्कार।
1: हाँ, मैं ग्राम बालोदा लखा जिला उज्जैन से कन्हैयालाल प्रजापति बोल रहा हूँ।
0: अच्छा कन्हैयालाल जी।
1: हाँ जी।
0: अभी भी जो हमारे पहले श्रोता थे वो भी प्रजापति और आप भी प्रजापति।
1: सही है।
0: बड़ा संयोग है ये तो।
1: सही बात है मैडम।
0: हाँ जी। बस वो कन्हैयालाल जी मथुरा से बोल रहे थे और ये वो कन्हैयालाल जी नहीं थे, क्षमा कीजिए, वो शारदा प्रसाद।

0: जी थे प्रजापति, और मथुरा
1: जय
0: से, और ये मथुरा से कन्हैया लाल जी आ गए हैं उज्जैन से, क्या बात है।
1: बहुत बढ़िया बात है,
0: बहुत ही बढ़िया संयोग है।
1: मथुरा से उज्जैन आ गए,
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हाँ तो चलिए कन्हैया लाल जी, अब बताइए, पहले तो आप अपने हाल बताइए कि हाल कैसे हैं आपके।
1: बस हाल क्या है, गर्मी बहुत भयंकर गिर रही है इधर, तो अब आराम कर रहे हैं या खाना खा करके।
0: सही बात है, गर्मी तो है, दो तीन दिन से थोड़ी सी राहत मिली है ना, थोड़ी बूंदाबांदी की वजह से।
1: हाँ भोजन वजन करके आए और हृदय लाला आराम कर रहे हैं, इतनी भयंकर गर्मी गिर रही है।
0: बिल्कुल सही बात है। तो कन्हैया लाल जी, गीत कौन सा सुनना चाहेंगे आप?
1: वो फिल्म जीने की राह सुना दीजिए।
0: जीने की राह,
1: आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा।
0: जीने की राह तो मिल गया है,
1: मेरी महबूबा ये
0: वाला। लेकिन इसमें देखिए ना, जीने की राह तो मूवी मेरे सामने है, बिल्कुल ठीक है, मिल गया आपकी पसंद का गीत भी मिल गया है ना। चलिए तो कल हमारे प्रोग्राम में आप ये गीत सुन सकेंगे।
1: और आपके इधर किससे क्या गर्मी है अभी इंदौर?
0: हमारे यहाँ भी अच्छी खासी गर्मी पड़ रही है, लेकिन अभी थोड़ी बारिश हो गई थी, तो दो दिन से कुछ राहत कह सकते हैं।
1: अच्छा अच्छा रात में से सुन
0: लिया। जी जी चलिए, धन्यवाद कन्हैया लाल जी कॉल करने के लिए, और एक हफ्ते बाद दोबारा कॉल कीजिएगा, ऐसी गुजारिश है।
1: ओके ओके धन्यवाद
0: जी, नमस्ते।
1: नमस्ते जी, नमस्ते।

0: हेलो हेलो।
1: हेलो
0: हाँ जी, स्वागत है आपका फोन करे गीत सुने कार्यक्रम में।
1: जी, नमस्ते जी।
0: नमस्ते जी।
1: मैं प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से। जी
0: प्रेम सिंह सिसोदिया
1: मैडम
0: जी कहाँ से? नागदा से।
1: जी, हाँ, नागदा तहसील लगता है और ग्राम बछोड़ा है हमारा, उज्जैन जिले में लगता
0: जी जी
1: है।
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रेम सिंह जी। और कॉल
1: जी, थैंक
0: कितने
1: यू सो
0: दिनों बाद
1: मच।
0: कर रहे हैं आप?
1: जी, समझ में नहीं आया
0: मैंने कहा फोन कितने दिन बाद लगा है आपका रेडियो में।
1: जी। 10 दिन बाद लगा है आज कॉल मेरा।
0: अच्छा जी, चलिए फिर ठीक
1: जी
0: है।
1: हाँ
0: और बताइए कौन सी फिल्म का गीत सुनना चाहते हैं?
1: जी, फिल्म का नाम है मुझसे शादी करोगी और गाने के बोले लाल दुपट्टा उड़ गया रे हवा के झोंके से। जी
0: अच्छा, क्या करते
1: जी
0: हैं आप ये तो बताइए।
1: जी मैं खेती किसानी का काम करता हूँ और एक भजन गायक भी हूँ।
0: अरे वाह, क्या बात है, भजन गायक हैं
1: जी
0: तो उसे
1: जी
0: भजन
1: हाँ,
0: गाते
1: हमारे
0: हैं।
1: 8 लोगों का ग्रुप बना हुआ है
0: हाँ
1: जी, उसमें हम 4 लोग गाने वाले हैं, 2 हारमोनियम बजाते हैं और
0: हाँ
1: 2 लोग ढोलक और तबला बजाते हैं। और दीदी
0: हाँ
1: आपको बताऊँ, मतलब हफ्ते 8 दिन 10 दिन में हमारा प्रोग्राम मतलब होता ही हो जाता है हमारे आसपास के एरिया में।
0: अच्छा, बड़ी अच्छी
1: जी
0: बात है।
1: हाँ, और
0: चल।
1: उसके साथ में मैं आकाशवाणी से जुड़ा हुआ हूँ 2005 से। पहले फोन इन प्रोग्राम कम आते थे, फोन इन के अलावा पत्रों द्वारा भी मैंने कई बार फरमाइश भेजी थी आकाशवाणी
0: हाँ
1: भोपाल
0: हाँ
1: पर।
0: जी जी
1: और एक आकाशवाणी भोपाल से मतलब रविवार की सुबह प्रोग्राम आता था, आपके फोन मतलब पत्रों पर आधारित होता था जी। उसमें मतलब चिट्ठियां डालते थे, मतलब उसमें है ना पूरे हफ्ते की जानकारी के बारे में बताते थे सभी
0: अच्छा,
1: लोग।
0: मतलब काफी टाइम हो गया आपको रेडियो से जुड़े हुए।
1: जी हाँ, वो उसमें है ना एक दिन ऐसा भी और विशेष होता था कि
0: हाँ हाँ
1: श्रोताओं को मतलब आकाशवाणी के वहां से फोन आता था और श्रोता से जानकारी लेते थे वो आकाशवाणी के बारे में, कौन सा प्रोग्राम कैसा लगता है, किस प्रोग्राम में उतार चढ़ाव की जरूरत होती है, मतलब ऐसे मतलब है
0: हाँ
1: ना
0: जी।
1: आकाशवाणी स्टूडियो से कॉल लगाते थे और मुझे भी कई बार ऐसे कॉल आते थे वहां
0: अरे
1: से।
0: वाह, क्या बात है। तो चलिए,
1: जी,
0: मतलब
1: और
0: अब
1: एक बात
0: अपना
1: और है, जैसे युववाणी प्रोग्राम आता था ना युववाणी
0: अभी भी
1: आकाशवाणी
0: आता
1: भोपाल
0: है।
1: के।
0: हाँ हाँ
1: जी हाँ, उसमें एक फोन इन प्रोग्राम आता था हेलो जीनियस करके,
0: हाँ हाँ
1: उसमें 5 सवाल पूछे जाते थे और जो जीनियस होते थे उन्हें सर्टिफिकेट भी दिया जाता था,
0: हाँ
1: तो
0: हाँ
1: मैं भी एक बार वहां पे जीनियस बना था।
0: अरे वाह, क्या बात है। तो प्रेम सिंह
1: जी
0: जी, अपना ये लगाव आकाशवाणी से बनाए रखिएगा और कल के प्रोग्राम में अपना गीत सुनिएगा। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी थैंक यू सो मच, मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और आकाशवाणी के जितने भी मतलब मैं कार्यक्रम सुनता हूँ ना उनको बड़ा ध्यान से सुनता हूँ और सभी को मतलब ऐसा
0: हाँ
1: रखता
0: हाँ
1: हूँ लिखकर।
0: चलिए, धन्यवाद।
1: जी थैंक यू सो मच।

0: हेलो।
1: हेलो, नमस्ते
0: हाँ जी नमस्ते।
1: मैम, नमस्ते, बहुत बहुत नमस्ते पहुंचे
0: जी शुभ नाम आपका।
1: पंडित शिवनारायण तिवारी दादा
0: जी शिव
1: जी।
0: नारायण जी, बहुत दिनों बाद आपसे बात हो रही है, कैसे हैं आप?
1: जी बहुत दिन बाद फोन भी लगा रहे हैं।
0: अच्छा, क्या हाल है आपके?
1: बढ़िया है हाल चाल, गर्मी भी थोड़ी रफ्तार पकड़ रही है।
0: और घर में सब
1: और
0: कैसे हैं?
1: आप ठीक
0: हाँ
1: हैं?
0: हम बढ़िया हैं।
1: जी
0: तो बताइए कौन से गीत सुनेंगे?
1: आज सुनाना सड़क फिल्म का।
0: सड़क फिल्म का
1: जी
0: कौन सा वाला गीत?
1: ओ, जब जब प्यार पे पहरा हुआ।
0: अरे वाह, क्या बात है। बहुत प्यारा गीत है ये।

0: ये गा हम बिल्कुल सदाबहार गीत सुनते हैं मैम।
1: हाँ बिल्कुल सही बात है। और कुछ गीत तो ऐसे हैं जो कितना भी सुन लो लेकिन उनसे आप ऊबते नहीं हो,
0: जी मैम
1: है ना?
0: बिल्कुल।
1: ठीक है, ये गीत हम आपको बिल्कुल सुनवाएंगे। तो कल 11 बजे अपने प्रोग्राम में ये गीत अपनी पसंद का जरूर सुनिएगा
0: जी मैम
1: जी।
0: नमस्कार।
1: नमस्ते।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, स्वागत है
1: नमस्ते
0: आपका।
1: मैम।
0: नमस्ते। अच्छा,
1: मैम शिवानी, मैंने बात करी नीमच से। जी
0: शिवानी।
1: मैम,
0: पूरा नाम क्या है आपका?
1: मेहरा,
0: शिवानी मेहरा।
1: शिवानी मेहरा,
0: कहाँ से? नीमच
1: नीमच
0: से।
1: से। जी
0: कैसी हैं शिवानी जी?
1: मैम, आप अच्छी हो? मैं, आप कैसे हो?
0: हम भी अच्छे हैं। और अभी गर्मी के मौसम में क्या स्पेशल प्लान किया है आपने?
1: मैम अभी तो कहीं हम निकल नहीं पा रहे क्योंकि इतनी गर्मी है।
0: कहीं घूमने जाने का, हिल स्टेशन पे जाने का प्लान नहीं किया?
1: नहीं मैम, बहुत गर्मी पड़ रही है नीमच में, अभी कहीं
0: हाँ,
1: निकलने के भी नहीं है अभी तो, क्योंकि
0: ये बात तो सही है। फैमिली में कौन
1: नाम
0: कौन है
1: देखते हो।
0: शिवानी
1: हाँ,
0: जी आपके? कौन कौन है फैमिली में?
1: फैमिली में मैं, मम्मी,
0: हाँ।
1: पापा, मेरे से दो छोटी सिस्टर और एक भाई है।
0: अच्छा, और आप क्या करती हैं?
1: मैम मैं तो कुछ नहीं करती हूँ, मैं तो घर पर रहती हूँ, खाना वाना बना रही होती है, और फिर मैंने की फोन इन प्रोग्राम आ रहा है, मैंने ट्राई करती हूँ।
0: चलो ठीक है। तो शिवानी जी, कौन सी पसंद, मतलब कौन सी फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे आप कल?
1: मैम सागर मूवी का
0: अरे
1: चेहरा
0: वाह।
1: है चांद खिलाए।
0: बहुत प्यारा गीत है ये तो।
1: जी मैम,
0: तो हम आपको ये गीत जरूर सुनवाएंगे, रिकॉर्ड कर
1: जी
0: लेंगे
1: मैम,
0: आपका, और आप
1: जी
0: कल
1: मैम,
0: के प्रोग्राम में अपनी पसंद का गीत जरूर सुनिएगा शिवानी जी। कॉल
1: थैंक
0: करने
1: यू
0: के लिए
1: मैम।
0: धन्यवाद।

0: हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी नमस्ते।
1: हाँ नमस्ते, मैं देवास मध्य प्रदेश से राजू अग्रवाल बोल रहे हो दीदी।
0: हाँ राजीव जी, आपसे एक बार और बात हुई थी हमारी।
1: हाँ बिल्कुल।
0: कैसे हैं आप?
1: आप कौन बोल रहे हैं?
0: मैं कविता रावत बोल रही हूँ।
1: हाँ, धन्यवाद।
0: कैसे हैं राजीव जी?
1: बढ़िया है दीदी। आप जैसे फरमाइश कार्यक्रम करते हो, आपकी फरमाइश जो आता है तो
0: हाँ जी।
1: उसमें क्या है कि जैसे लेटर ज्यादा लिया करो आप।
0: चलिए।
1: जैसे ऐसा बोलते हो सोता साथी, वो तो सोते ही पसंद बस पसंद आप सबकी में सब आ जाता है। आप जो बोलते हो ना, तो थोड़ा सा लेटर उसमें बढ़ाओ, और हमारा देवास के लेटर तो शामिल ही नहीं हो रहे हैं।
0: वो इत्तेफाक है, इतना बड़ा बंडल होता है, उसमें से हम कुछ लेटर सिलेक्ट करते हैं तो जो हाथ में आते जाते हैं ऐसा रहता है। पर कोशिश करेंगे आपका पत्र भी हम शामिल करें।
1: मध्य प्रदेश एमपी के लेटर कम शामिल हो रहे, और एक ही एक लेटर रोज शामिल हो रहे हैं। जैसे आपने जो कल लिया वही आज वापस वो का वही शामिल हो गया। तो हमारा ये आपसे अनुरोध है कि जैसे सबके लेटर शामिल होने चाहिए। जी
0: बिल्कुल, हम कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक पत्र पढ़ें। और
1: जी
0: चलिए, अभी तो
1: और
0: आज के लिए बताइए कि
1: जैसे
0: कौन
1: कि
0: सा गीत सुनना चाहते हैं।
1: आज तो दीदी जैसे ये अजीज नाजा जो कव्वाल है मशहूर, 7 मई का उनकी मतलब डेथ का
0: देखिए,
1: दिन है। जी
0: आप एक बात भूल रहे हैं, यहाँ पर है ये फिल्मी गीत। फिल्मी गीत आपको सिलेक्ट करने हैं।

0: जो अपने फिल्मों के।
1: फिल्मी गीत पुतली बाई पिक्चर का सुनवा दीजिए, उनका गाया हुआ गीत है कोई सा,
0: अच्छा
1: उसमें
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा
1: पुतली बाई का
0: हाँ हाँ
1: वाला सुनवा दीजिए, नहीं तो फिर ये
0: पुतली
1: लेडीज
0: बाई का कौन सा
1: सिंगर
0: वाला?
1: उसका कोई सा भी, जैसे इन्हीं का गाया हुआ गीत है उसमें, झूम बराबर झूम शराबी ये भी है और दूसरा भी है गीत,
0: नहीं इसमें झूम बराबर
1: और
0: झूम तो
1: या
0: नहीं।
1: फिर लेडीज टेलर पिक्चर का दो चाहने वालों की मुलाकात है वल्ला,
0: देखते हैं ये है कि नहीं है।
1: पुतली बाई का देख लो पहले, अजीज नाजा साहब का गाया
0: नहीं नहीं नहीं है इसमें, पुतली बाई का तो नहीं
1: गीत
0: है। पुतली बाई का जो गीत आप बता रहे हैं
1: हाँ
0: वो नहीं है इसमें।
1: अजीज नाजा जी का नहीं है गीत,
0: नहीं
1: तो फिर ये यही सुना दो लेडीज टेलर पिक्चर का दो चाहने वालों की मुलाकात है वल्ला,
0: लेडीज टेलर,
1: रफी साहब और लता जी,
0: अच्छा,
1: मजरू साहब और लक्ष्मीकांत प्यारे
0: हाँ
1: लाल,
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये है हमारे पास लेडीज टेलर का गीत दो चाहने वालों की।
1: हाँ मुलाकात है वल्ला,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: लोकेश वर्मा भी इसे की फरमाइश, इसी की फरमाइश कर रहे हैं।
0: चलिए ठीक है, तो ये गीत आप बिल्कुल सुनिएगा कल के प्रोग्राम में, और कॉल करने
1: धन्यवाद,
0: के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो।
0: हेलो
1: हाँ जी, नमस्ते।
0: दीदी, नमस्ते।
1: क्या शुभ नाम है आपका?
0: रणपाल से गुर्जर ग्राम बाबूपुरा तहसील ख्वाज जिला जौनपुर से बोल रहा हूँ दीदी।
1: आपकी आवाज क्लियर नहीं आई, एक बार रिपीट कीजिए।
0: रणपाल से गुर्जर ग्राम बाबूपुरा तहसील ख्वाज जिला जालौन से बोल रहा हूँ।
1: जालौन से गुर्जर है ना?
0: हाँ
1: जालौन से गुर्जर जी बोल रहे हैं?
0: जी, सुरनपुर से गुर्जर ग्राम
1: सुरेंद्र
0: बाबूपुरा।
1: पाल जी गुर्जर। ठीक है
0: जी
1: ठीक है। तो सुरेंद्र पाल जी, क्या हाल है आपके?
0: अच्छा है, बढ़िया
1: गर्मी
0: चल
1: कैसी
0: रहा है
1: निकल
0: आपका।
1: रही है?
0: हाँ

0: सालोन में गर्मी कैसी पड़ रही है?
1: अभी तो बारिश हो जाती है तो गर्मी कम है फिलहाल में, हल्की
0: चलो।
1: फुल्की बूंद बांद हो जाती है
0: हाँ,
1: तो अब गर्मी से राहत है इस समय।
0: चलिए। और कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आप?
1: उपकार का सुना दीजिए, मेरे देश
0: अच्छा।
1: की धरती सोना उगले।
0: ठीक है, उपकार का मेरे देश की धरती, बिल्कुल, बहुत ही अच्छा गीत आपने पसंद किया है। और कुछ कहना चाहेंगे? आपने कॉल कितने दिनों में किया है? और
1: हो गए 2 माह 3 के लगभग,
0: अच्छा, चलिए, ठीक है, क्योंकि
1: एक
0: हमारे
1: बार।
0: यहाँ एक ये नियम है कि 1 हफ्ते के पहले किसी भी कॉलर का कॉल रिपीट नहीं लेते हैं।
1: नहीं,
0: ठीक
1: दो
0: है,
1: तीन माह हो गए करीब करीब।
0: चलिए, धन्यवाद कॉल करने के लिए सुरेंद्र जी। और आप अपना पसंद का गीत कल सुन सकते हैं, अपनी पसंद का गीत। ठीक
1: एक
0: है,
1: बात, जिज्ञासा है हमारी दीदी,
0: हैं?
1: एक जिज्ञासा है जो आप 11 बजे से फोन करते, वो उन लोगों रिकॉर्डिंग क्या
0: हाँ,
1: बजे से होती
0: वो
1: है?
0: अब रिकॉर्डिंग होती है 10:30 बजे से, एक दिन पहले। आज जो अपन
1: अच्छा
0: बात कर रहे हैं ना, ये कल
1: हाँ,
0: 11 बजे प्रोग्राम में आप सुन पाएंगे।
1: यही जिज्ञासा थी। चले
0: हाँ जी, चलिए, थैंक यू वेरी मच,
1: वाह,
0: नमस्ते।
1: नमस्ते दीदी, नमस्ते।

0: हेलो हेलो हेलो।
1: हेलो मैम, नमस्ते। क्या
0: हाँ विपिन जी नमस्ते।
1: बात है, मैं कॉल मतलब घंटी गई नहीं और आपने उठा लिया, इसलिए ध्यान
0: नहीं,
1: ही
0: घंटी
1: नहीं
0: तो
1: गया
0: यहाँ पर आई है, आपको ऐसा
1: जी।
0: वहां पर फील हुआ होगा, यहाँ पर तो घंटी
1: बिल्कुल,
0: बाकायदा आई।
1: लेकिन आप तुरंत पहचान गई मुझे।
0: अब हमारे पुराने श्रोता जितने हैं और इतनी बार बात कर चुके हैं तो आवाज से पहचान ही जाते हैं।
1: हाँ, पर
0: और
1: हमारे लिए तो है ना, आप एक लॉटरी की तरह रहती हैं, पता नहीं कौन निकलेगा।
0: तो आपने पहचान लिया कि हम कौन हैं?
1: जब आपने पहचान लिया तो हम भी पहचान ही लेते हैं।
0: कौन है हम?
1: आप हैं कविता रावत और मैं हूँ विपिन
0: बिल्कुल।
1: कटारे।
0: और विपिन जी

0: कैसे हैं?
1: जी मैं अच्छा हूँ, बढ़िया हूँ। और आज 15-16 दिन हो गए थे तो हमने कहा चलो कॉल करते हैं, आज फोन करेंगी, सोने की रिकॉर्डिंग हो रही है
0: बहुत
1: अभी।
0: अच्छी बात है। कहाँ से बोल रहे हैं आप? बस जगह भूल
1: जी
0: जाते हैं।
1: बिल्कुल, मैं ग्राम गौर झामर जिला सागर मध्य प्रदेश से बात
0: सागर
1: कर रहा
0: से?
1: हूँ।
0: बिल्कुल ठीक है विपिन जी। और गर्मी कैसी पड़ रही है सागर में? तो गर्मी
1: गर्मी
0: तेज।
1: तो बहुत बहुत हो रही है गर्मी, लेकिन हालांकि 2-3 दिन पहले बारिश हुई थी ना, तो उससे
0: हाँ
1: थोड़ी सी कमी तो आई है, लेकिन हाँ फिर भी गर्मी हो रही है अभी भी।
0: ये तो है।
1: हाँ,
0: अच्छा
1: आपके यहाँ भी गर्मी हो रही होगी?
0: हमारे यहाँ भी गर्मी है, लेकिन वही सेम सीन, 2 दिन पहले बारिश
1: हाँ
0: हो गई तो थोड़ी सी राहत हुई है।
1: हाँ पहले जो 10 दिन पहले गर्मी थी ना, उससे तो थोड़ी सी
0: हाँ
1: कम है अभी।
0: वही वही। और सब कुछ परिवार में सब शुभ मंगल?
1: हाँ जी बिल्कुल, सब बढ़िया अच्छा है। और आकाशवाणी भोपाल मध्य प्रदेश का फिर सारा सुनते हैं, और आप लोगों से बात भी करते रहते हैं समय समय पे, तो अच्छा लगता है।
0: अच्छा गीत बताइए अपनी पसंद का।
1: हाँ जी बिल्कुल, फिल्म का नाम है लव इन टोक्यो, और इसी का गाना सुना देना, मुझे तुम मिल गए हमदम, लता जी।

0: आकाशवाणी भोपाल मध्य प्रदेश का फिर सवाल सुनते हैं और आप लोगों से बातें भी करते रहते हैं समय समय पे, तो अच्छा लगता है।
1: अच्छा, गीत बताइए अपनी पसंद का।
0: हाँ जी बिल्कुल, फिल्म का नाम है लव इन टोक्यो और इसी का गाना सुना देना, मुझे तुम मिल गए हमदम, लता जी की आवाज में गीत है।
1: अच्छा ठीक है, बिल्कुल
0: और मैम दो तीन दोस्तों के नाम लेना चाहूंगा।
1: हाँ बताइए।
0: जी हमारे दोस्त हैं राहुल जी हैं मंडला से और जगत सिंह जी हैं पिपरिया से और वंदना उपाध्याय जी हैं जबलपुर बरेला से और लक्ष्मण रैकवार हैं रघुवीर पंडा गोलू अरबार और सभी के लिए और आपके लिए भी।
1: थैंक यू वेरी मच विपिन जी। चलिए
0: जी
1: अब एक
0: थैंक यू,
1: हफ्ते बाद आपसे दोबारा बात होगी।
0: जी शुक्रिया,
1: जी
0: नमस्ते।
1: नमस्ते।

0: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम फोन करें की सुने। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में 11:58 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सोमनाथ मंदिर भारत की अविनाशी शक्ति और सनातन आस्था का प्रतीक है। श्री शाह ने आज सोशल मीडिया में लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण और उससे जुड़ी अपनी दिव्य अनुभूति पर एक भावपूर्ण लेख लिखा है, जिसे सभी देशवासियों को पढ़ना चाहिए। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने विकास, साझेदारी, वैश्विक कार्यबल, आपातकालीन सहायता में भारत की भूमिका और नई पहल पर जोर देते हुए वैश्विक नीति में राजनीति में भारत की भूमिका रेखांकित की है। डॉ एस जयशंकर ने सूरीनाम के पारामारिबो में प्रगति के लिए साझेदारी विषय पर सत्र को संबोधित किया। प्रदेश में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीयन प्रक्रिया जारी है, जिसकी अंतिम तारीख 15 मई है। कल तक 60,000 से ज्यादा पंजीयन किए जा चुके हैं। आकाशवाणी ने अपनी स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज राजधानी भोपाल में वॉकेथॉन का आयोजन किया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज उत्तर प्रदेश के रहमानखेड़ा में शुरू हुए 2 दिवसीय फ्रूट होराइजन 2026 कार्यक्रम में हिस्सा लिया। श्री चौहान ने कहा कि उत्तर प्रदेश में क्लीन प्लांट सेंटर स्थापित किए जाएंगे। और आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला होगा। ये मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 12 बजने को हैं। लीजिए प्रस्तुत है आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म काम चोर का एक गीत। आवाजें हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। इंदिवर ने इस गाने को लिखा है और राजेश रोशन ने संगीत से सजाया है। और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है आदर्श नगर मलोट से। लिखने वाले हैं राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरव शर्मा और शाइना शर्मा। इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है। औरंगाबाद से लिखने वाले हैं राजेश सावले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश और राशि राजेश।

अगला गाना लिया है हमने फिल्म नीला आकाश से, आवाजें हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी की। इस गाने को पसंद किया है, लिखने वाले हैं गौतम नगर जिला नादेड़ से प्रभाकर जौदले और आरती चौंदले। और इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है सारणी जिला बैतूल से, लिखने वाले हैं अमित खातन खातरकर, निहारिका खातरकर, शिवपाली यादव, अनामिका, अवंतिका, शिवालिका, पारसमणि बाग और पंजाब राव निम्बालकर और संदीप पाटिल। इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है, लिखने वाले हैं कोरवाई जिला विदिशा से जावेद अली, साबिर अली और उनके परिवार के दूसरे सदस्य।

अगला गाना लिया है हमने फिल्म जिद्दी से, आवाजें हैं लता मंगेशकर और साथियों की। हसरत जयपुरी ने इस गाने को लिखा है, एस डी बर्मन का संगीत है। और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है, मालवा रेडियो श्रोता संघ प्रमलागंज आलोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से लिखने वाले हैं बलवंत कुमार वर्मा, राजू भाई वर्मा, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल ज्योति अतुल, प्रियांश और ऋषि वर्मा। और इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है, कोटबा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से लिखने वाले हैं ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। साथ ही ये पत्र है दोबीहा नेवादा गाजीपुर से लिखने वाले हैं प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय ने इस गाने के लिए फरमाइश भेजी है। सुनते ये गीत।

अगला गाने को लिया है हमने फिल्म लैला मजनू से, आवाजें हैं लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और साथियों की। इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है नेपाल पैलेस सागर से लिखने वाले हैं तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नूपुर, ऋषिका, रॉबिन और उनके परिवार के दूसरे सदस्य इसी गाने को पसंद किया है। बनिया बारा धमतरी छत्तीसगढ़ से लिखने वाले हैं रामचंद माखीजा काफिर, सविता माखीजा, स्वाति माखीजा और संपर्क माखीजा और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। इसी गाने के लिए हमारे पास में खत आया है घंटाघर चौक खंडवा से लिखने वाले हैं संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सम्मति पंचोलिया का परिवार। तो सुनते हैं ये गीत।

अब हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म प्रिंस का एक गीत, आवाज मोहम्मद रफी की है, हसरत जयपुरी ने इस गाने को लिखा है और शंकर जयकिशन का संगीत है।

अभी आपने जो दो गाने सुने उन दोनों की मिली जुली फरमाइश इस तरह है। नेपाल पहले सागर से लिखने वाले हैं तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका रॉबन और उनके परिवार के दूसरे सदस्य रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है, ये लिखा है इन्होंने ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेराज जहां, ताज मोहम्मद, और इन्होंने ये लिखा है आजाद नगर लश्कर हरिद्वार से। इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई थी छत्तीसगढ़ भाटा पारा दतरंगी से द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा, महादेव अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर, गुड़िया और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। इसी गाने के लिए जो आप अगला वाला सुनने वाले हैं उसकी फरमाइश है सपना संगीता रोड इंदौर से लिखने वाले हैं लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया। इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, त्रिपद साहू, सरोजनी कुंती साहू, छत्तीसगढ़ लच्छनपुर से इन्होंने ये पत्र भेजा है। और अगला गाना है माँ और ममता फिल्म का, आवाजें मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की हैं। आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत। सुनते हैं ये गीत, ये अंतिम प्रस्तुति आपकी फरमाइश की।

0: इस गीत के साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।
1: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
2: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया।
3: मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
1: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
2: तो फिर सही नंबर,
1: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
3: आपने तो बचा लिया दीदी।
1: काम से नहीं।
4: RBI कहता है
5: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 12:30 होने को हैं। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण और लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत धारावाहिक जादूगर को सलाम की नवी कड़ी।
1: कुणाल फिल्म्स प्रस्तुत करते हैं रेडियो धारावाहिक जादूगर को सलाम।

0: श्रोताओ, कलम के जादूगर स्वर्गीय मुंशी प्रेमचंद की सभी रचनाएं भारतीय साहित्य की अमूल्य धरोहर हैं। इन रचनाओं में से लगभग सभी को अलग अलग रूप में प्रस्तुत किया जाता रहा है। उन्हीं की लिखी अनेक कहानियों में से कुछ कथाओं से प्रेरणा लेकर उन्हें रूपांतरित रेडियो नाटकों के एक धारावाहिक के रूप में प्रस्तुत किए जाने का प्रयास है जादूगर को सलाम। इस धारावाहिक का उद्देश्य है साहित्य के उस अमर शिल्पी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करना। श्रोताओ, धारावाहिक की नौवीं कड़ी के रूप में आज प्रस्तुत है स्वर्गीय मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी बोध का नाट्य रूपांतरण।
1: हाँ तो बच्चों, दो दुनी
2: चार,
1: पांच सत्ते
2: पैतीस,
1: ग्यारह निम्मे
2: निन्यानवे।
3: कहां से जंगल में आ फंसा? यदि किसी अन्य विभाग में नौकर होता तो आज हाथ में चार पैसे होते, आराम से जीवन कटता। हमसे तो मजदूर ही भले। और मेरे बगल में जो पड़ोसी है उनको देखो, और एक मैं और एक वो, दोनों है। जी हाँ, मैं इन्हीं दोनों की बात कर रहा हूं। एक है ठाकुर अतिबल सिंह, थाने में हेड कांस्टेबल साहब, और दूसरे हमारे पड़ोसी मुंशी बैजनाथ, तहसील में पटवारी। दोनों ने क्या भाग्य पाया है। हालांकि दोनों का वेतन मुझसे ज्यादा नहीं है, परंतु दोनों का जीवन मुझसे बेहतर है। शाम हुई नहीं कि हमारे कांस्टेबल साहब खमीरा पीकर मस्त हो जाते हैं, आराम कुर्सी पर पसर जाते।

और दूसरे मुंशी जी, उनका तो कहने क्या, अजी कचहरी से आते ही बच्चों को पैसे और मिठाइयां बांटते, घर में पकवान बनते हैं, घर में सब सुख सुविधाओं का सामान है, एक बोतल रोज की साफ कर जाते और तो और नशा चढ़ने पर बेतान की तान कर पूरे मोहल्ले की नींद उड़ाते हैं, सो अलग।

0: हरि हम
1: देखो तो सही, ये दोनों तो इतना भी नहीं जानते कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर काटती है, सूर्य पृथ्वी का नहीं, साधारण से पहाड़ों तक का ज्ञान नहीं है।

0: मर्जी है।
1: मगर ईश्वर ने इन पर पूरी कृपा दृष्टि की हुई है। बाजार निकल जाएं तो बनिए उठ उठ कर सलाम करते हैं इन्हें। चार पैसे की चीज टके में लेकर आते हैं टके में। और एक मैं पंडित चंद्रधर प्राइमरी स्कूल में मास्टर। यहाँ तो महीना भर प्रतीक्षा करने के बाद 15 रुपए देखने को मिलते हैं। न खाने का सुख न पहनने का आराम। भाग्य ने कौन सा बड़ा तीर मार दिया जो कभी शेर आ शेर दूध भेज दिया, थोड़ी सी सब्जियां भेज दी। अरे कौन सा मुझ पर एहसान करते हैं। मैं इनके बच्चों को नहीं पढ़ाता क्या? बातें तो सुनो इनकी।
2: पंडित जी ये तीनों लड़के आवारा हुए जाते हैं, जरा इनका ख्याल रखिएगा। अब आप तो जानते हैं मुझे थाने से फुर्सत नहीं मिलती, और अगर थोड़ी बहुत मिल भी जाती है तो फिर ये काला अक्षर मेरे लिए भैंस बराबर।
1: अजीब बात तो ऐसी करते हैं जैसे इनका गुलाम हूं मैं। लेकिन करूं क्या? अजी नाराज भी तो नहीं कर सकता इन दोनों को। अरे ये हैं तो कभी कभी दूध दही के दर्शन हो जाते हैं, अचार चटनी चखने को मिल जाती है, बाजार से सामान भी सस्ता ही मिल जाता है। भाग्य के इस कड़वे घूंट को मुझे पीना ही पड़ेगा। अरे क्या कोशिश नहीं की मैंने इस स्थिति से उभरने के लिए। बड़े बड़े अफसरों से खुशामद दरामद की, प्रार्थनाएं भी की, लेकिन हार थक कर मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक ही रही, वही स्कूल टीचरी। लेकिन मैं अपने काम में कोई कमी नहीं आने देता भाई। ठीक समय पर स्कूल जाता हूं और देर से घर वापस आता हूं, और बच्चों को मन लगाकर पढ़ाता हूं। तभी तो सभी अफसर खुश हैं मुझसे। साल में कभी कभार इनाम भी मिल ही जाता है। वो बात अलग है कि अध्यापन विभाग की वेतन वृद्धि ऊसर की खेती है, बड़े भाग्य से हाथ लगती है। बस्ती के लोग भी मुझसे संतुष्ट हैं। ये मेरे परिश्रम के कारण ही तो हुआ है कि छात्रों की संख्या बढ़ गई है। छात्र भी मुझ पर जान देते हैं जान। हाँ अरे कोई बकरी के लिए पत्तियां तोड़ लाता है। बस मेरे लिए तो यही बहुत है।

0: आओ आओ ठाकुर साहब आओ, मैं आप ही को याद कर रहा था।
1: याद कैसे नहीं करोगे, चोली दामन का साथ जो ठहरा।
0: अरे भाई आप तो बारिश में भी

0: ए बैठिए।
1: हाँ भाई मुंशी जी, मेरे मन में अयोध्या जी के दर्शन का विचार आया है और वही सलाह करने आपके पास आया हूँ।
0: नेकी और पूछ पूछ, मैं खुद आपसे इसी बात का जिक्र करने वाला था। सुना है बड़ा भारी मेला लगा हुआ है।
1: जी हाँ, लेकिन दूर की यात्रा है, सह परिवार जाने में समस्या नहीं आएगी। अब पांच घर वाले तो हम ही हो जाएंगे।
0: वही तो मैं कहना चाहता हूँ, आपकी भाभी और दोनों बच्चों ने मेले में जाने की जिद पकड़ रखी है, हफ्ते भर की छुट्टी हो जाएगी।
1: आप हाँ करो तो उसकी व्यवस्था भी हो जाएगी। वो आपने पंडित जी है ना, उनको भी साथ ले लेते हैं, उनके आने जाने का खर्चा हम मिलकर बांट लेंगे।
0: बात तो बड़े पते की है, मेले ठेले में एक फालतू आदमी से बड़े काम निकलते हैं। इसी बहाने पंडित जी को भी अयोध्या जी के दर्शन हो जाएंगे।
1: एक हफ्ता बिल्लौर में न रहने से उनके कौन से काम रुक जाएंगे। लीजिए, आखिरकार अयोध्या जी की यात्रा की वो शुभ घड़ी आ ही पहुंची।
0: पंडित जी, गाड़ी तो ठीक समय पर ही है ना?
2: जी मैंने पता कर लिया है, 1.5 घंटे देर से है, इसीलिए तो भीड़ भाड़ बढ़ती जाती है। अजी बेहतर होगा कि खाना पीना अभी कर लिया जाए।
3: ये रहेगा।
4: कृपया ध्यान दीजिए, अयोध्या जाने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर अब से बस कुछ ही समय में आने वाली है।
1: चलो भाई, सब लोग अपना सामान ठीक से देख लो, कहीं कुछ छूटा तो नहीं। पंडित जी जरा हाथ तो बटाइए।
5: अरे बच्चों बच्चों तुम लोग आगे आ जाओ।
6: अजी सुन तो हो, देखो देखो चुन्नी का हाथ छूटा जाता है। अरे हटिए भाई साहब, जरा जगह दीजिए, बच्चे हैं। अरे दिखता नहीं क्या, बच्चे हैं। हटिए।
1: अरे ओ मेरा बिस्तर बन लिए, कहाँ जा रहा है? रास्ता देख, आगे बढ़ने दो, हटो पीछे, हट हट। अरे देखता नहीं महिला है।
5: अरे अरे रास्ता अरे रास्ता तो दो। अरे मेरी तो चटनी बना दी कंबख्तों ने। अरे अरे मुंशी जी अरे मुंशी जी कौन से डिब्बे में चढ़े जा रहे हैं?
1: पंडित जी चढ़ने दीजिए, आइए हम सब इसी डिब्बे में चढ़ जाते हैं। इस आफत में कौन किसकी राह देखता है, आज में तो सब एक ही जगह मिल जाएंगे।
6: अरे भगवान बच्चों के लेके वाले पर सब चढ़ा रहा हूं।
7: अरे भैया
6: अरे हटिए भाई साहब,
7: नहीं नहीं जगह
6: दीजिए।
1: अरे इस कंपार्टमेंट में तो 4 ही आदमी है, यहाँ बैठने की जगह अवश्य निकल आएगी। उठो।
8: उठे जी,
1: देखते नहीं है, हैं? हम खड़े हुए, बैठो जी। आप बैठो।
8: तुमने बैठने का ठेका लिया है क्या?
1: क्या हमने किराया नहीं दिया है?
8: जिसे किराया दिया हो उससे जाकर जगह मांगो।
1: जरा होश की बातें करो, इस कंपार्टमेंट में 10 यात्रियों को बैठने की आज्ञा है।
8: जरा जबान संभाल कर बात कीजिए।
1: तुम कौन हो जी?
8: हम वही है जी जिस पर आपने जासूसी का अपराध लगाया था, भूल गए? और जिसके दरवाजे से आप नकद 25 रुपए लेकर टले थे।
1: आहा, अब पहचाना, परंतु मैंने तो तुम्हारे साथ रियायत की थी, चालान कर देता तो तुम सजा पाते।
8: और मैंने भी तो तुम्हारे साथ रियायत की है कि गाड़ी में खड़े रहने दिया, ढकेल देता तो तुम नीचे गिर जाते और तुम्हारी हड्डी पसली टूट जाती।
9: क्यों दरोगा साहब, मुझे क्यों नहीं उठाते?
1: अगर थाने में होता तो इनकी जुबान खींच लेता।
9: और आप ही क्यों नहीं नीचे बैठ जाते हुजूर? इसमें कौन सी बेइज्जती हुई जाती है? ये थाना थोड़ा ही है कि आपके रौब में फर्क पड़ जाएगा।
1: अरे क्या तुम्हें भी मुझसे कोई बैर है?
9: जी हाँ, मैं तो आपके खून का प्यासा हूँ।
1: मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है भाई, तुम्हारी तो सूरत भी नहीं देखी।
9: जी आपने मेरी सूरत नहीं देखी होगी, पर आपके डंडे ने देखी है। इसी कल के मेले की बात है, आपने मुझे कई डंडे लगाए थे, याद है ना? मैं चुपचाप तमाशा देखता था, पर आपने आकर मेरा कचूमर निकाल दिया। मैं चुप रह गया, पर घाव दिल पर लगा हुआ है, आज इसकी दवा।

0: मिलेगी।
1: अरे जनाब, आप पांव पसार कर पड़े रहिए, जो भी होगा निपट लेंगे।
2: अजी ठाकुर साहब, जाने दो, वक्त का यही तकाजा है। वो देखो, तीसरा स्टेशन आ रहा है, वहां उतर कर डिब्बा बदल लेंगे। आइए ठाकुर साहब, डिब्बा बदल लेते हैं। संभाल के संभाल के। ये क्या, ठाकुर साहब तो मुंह के बल गिर गए। ठाकुर साहब, चोट वोट तो नहीं लगी ना?
3: अगर ये दोनों थाने में होते तो आज बताता ठाकुर अतिबल सिंह चीज क्या है। वो तो गार्ड ने सीटी दे दी और इस डिब्बे से इस डिब्बे में सामान उठाकर रखना पड़ा, नहीं तो गार्ड से कहकर इन्हें हवालात का दरवाजा दिखा देता। अभी ये मुझे क्या धक्का देंगे और क्या मेरा सामान फेंकवाएंगे?
2: अरे इतनी भीड़ में ना जाने मुंशी जी किस हाल में होंगे, दिखाई नहीं दे रहे, देखता हूँ।
4: अजी देखते हो, बैठने की जगह भी तो बने, तिल रखने की जगह तो है नहीं, आप भी पता नहीं किस डिब्बे में आ चढ़े।
0: अरे भगवान, मैं तो पहले ही मना करता था कि इतनी भीड़ में अयोध्या जी की यात्रा कोई हंसी खेल नहीं है। ए भाई साहब, जरा महिला और बच्चों का लिहाज तो करो, थोड़ा सा जरा टिक जाने दो भाई।
5: मुझे तो इस कोयले पानी का ही सहारा है,
6: इसकी पिनक में ही सफर कट जाए।
0: चुन्नू की मम्मी, अपनी जगह पकड़े रहना, मैं अभी आया।
4: अच्छा।
5: देखो क्या हाल है, अरे पेशाब घर में भी घुसे पड़े हैं, आदमी को बुलावा आए तो कहाँ जाएगा। ए भाई, ए लघु शंका का दबाव है, बाहर आओ, चलो निकलो, जल्दी करो भाई। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, अब ठीक है, यहाँ पी लेता हूँ, आधी बोतल यहीं उंडेल लेता हूँ। अब कम से कम 4-6 घंटे का पता ही नहीं चलेगा, सफर चैन से कट जाएगा।
2: अब बच्चों के पास चला जाए।
4: सुनो जी, आप बहुत देर से खड़े हैं, तनिक टिक जाइए, मैं खड़ी हो जाती हूँ।
5: तुम बैठी रहो, ठीक है।
6: पता नहीं ये पेट में कैसी गुड़गुड़ मची है, अचानक बहुत दबाव बन गया है, मैं अभी आता हूँ।
4: अजी क्या हुआ, आप ऐसे पेट क्यों पकड़े हैं?
5: भगवान,
6: पेट में भयंकर मरोड़ हो रही है, उल्टी भी हो गई, बहुत कष्ट हो रहा है।
4: हाय हाय, आप बैठ जाइए।
6: बैठ नहीं पाऊंगा, फिर दबाव है, होकर आता हूँ, क्या करें, संडास में ही लोग ठुसे बैठे हैं।
4: आइए ऐसा करते हैं, ये प्लेटफॉर्म आ रहा है ना, यहीं पर उतर जाते हैं। चलो बच्चों आओ, आप भी आइए, संभल कर जरा।
2: अरे ठाकुर साहब, मुंशी जी, भाभी और बच्चे, ये लोग तो यहीं उतर गए, सब सामान भी है, पता नहीं क्या माजरा है।
3: अरे ये तो लेट गए, लगता है इनकी तबीयत ठीक नहीं है, उतारना तो पड़ेगा ही। चलो भाई जल्दी करो।
2: हाँ उतरते हैं, चलो भाई।
4: हाय हाय, ये क्या हो गया, मैं तो हपड़ा तबड़ी में संदूक उतारना ही भूल गई। हाय राम, मेरे तो सारे कपड़े लत्ते पैसे जेवरात सब उसी में ही चले गए, अब क्या होगा जी, अब क्या होगा। हे भगवान।
2: अरे अरे अरे
3: अरे, अरे भाभी क्या हो गया है, क्यों रो रही हो?
4: देखिए ना भाई साहब, मेरा तो संदूक गाड़ी में ही चला गया, कपड़े और पैसे भी उसी में ही थे।
2: अरे भाभी वो तो सब ठीक है, लेकिन ये तो बताइए कि मुंशी जी को क्या हुआ?
0: क्या बताऊं, इतनी भीड़, इतनी गर्मी, न बैठने को जगह, न खाने की सुविधा, एक आध बार स्टेशन का पानी पी लिया है, उसी से पेट गड़बड़ हो गया, मारे उल्टी दस के हालत खराब है।
7: ये प्लेटफॉर्म पर क्यों लेटे हैं? आप लोगों को कहाँ जाना है? लगता है इन्हें हैजा हो गया है, और हैजे के मरीज को प्लेटफॉर्म पर ठहरने की अनुमति नहीं है, बेहतर होगा आप इन्हें यहाँ नजदीक जिला अस्पताल है वहाँ ले जाइए।
3: भाई पंडित जी चलिए सहारा दीजिए, इन्हें वहाँ सामने पेड़ के पास लेटाए थे, तब तक मैं

0: डॉक्टर साहब को लेकर आता हूँ।
1: ठीक है आ, भाई जरा हाथ लगा दो भाई। हाँ
0: डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब।
2: जी हाँ कहिए। यहाँ का मैं कंपाउंडर डॉक्टर और बस सब मैं ही हूँ, सभी मुझे चौकीलाल कहते हैं।
0: आप चलकर उन्हें देख लीजिए।
2: सवेरे के समय तो मुझे बाहर जाने की आज्ञा नहीं है।
0: तो क्या मुंशी जी को यहीं लाएं?
2: आपका जी चाहे तो ले आइए। ठहरो। अरे हैजे के रोगी को ऊपर लाने की आज्ञा नहीं है।
3: अरे ये आवाज तो जानी पहचानी लग रही है। अरे ये तो बिल्लोर के ही हैं। भला सा नाम है, तहसील में आया जाया करते हैं। क्यों महाशय मुझे पहचानते हैं?
2: जी हाँ खूब पहचानता हूँ।
3: अरे भाई पहचान कर भी इतना रूखापन, मेरी जान निकल रही है। जरा देखिए मुझे क्या हो गया है।
2: ये सब काम मैं कर दूंगा, और मेरा काम ही क्या है।
0: अस्पताल में कैसी फीस जनाब अमन?
2: वैसे ही जैसी इन मुंशी जी ने मुझसे वसूल की थी जनाब अमन।
0: आप क्या कह रहे हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा।
2: मेरा घर बिल्लौर में है, वहाँ एक थोड़ी सी जमीन है मेरी, साल में दो बार देखभाल करने के लिए जाता हूँ। और मुंशी जी अपना हक वसूल कर लेते हैं, ना दूं तो शाम तक खड़े रहना पड़ता है। जरा सोचिए हमारे साथ इन्होंने क्या किया है। अब मेरी फीस 10 रुपए निकालिए ताकि दवा दूं।
0: 10 रुपए?
2: जी हाँ, और यहाँ ठहरना चाहे तो 10 रुपए रोज।
4: दरोगा जी विवश हो गए, मुंशी जी की स्त्री से रुपए मांगे, मगर रुपए तो बक्से में थे और बक्सा ट्रेन में ही छूट गया था। दरोगा जी के पास भी अधिक रुपए नहीं थे, किसी तरह 10 रुपए निकालकर चोखेलाल को दे दिए और उन्होंने दवा दे दी। दिन भर कुछ फायदा ना हुआ, रात को कहीं जाकर हालत संभली। दूसरे दिन फिर दवा की आवश्यकता हुई। मुंशियाइन का एक गहना जो 20 रुपए से कम न था बाजार में बेचा गया, तब कहीं जाकर काम चला। शाम तक मुंशी जी भी चंगे हो गए। श्री अयोध्या जी में पहुंचकर स्थान की खोज हुई। पंडों के घर पर तो जगह ही नहीं थी, हर घर में आदमी भरे हुए थे। अंत में एक पेड़ के नीचे डेरा जमाना निश्चित हुआ, लेकिन सब जगह यात्री थे। खुले आसमान के नीचे बिस्तर बिछाए गए। इतने में बादल घिराए, बारिश होने लगी। बिजली की गड़गड़ाहट से कान के पर्दे फटे जाते थे, बच्चे रोने लगे, स्त्रियों के कलेजे कांप रहे थे। वहां ठहरना मुश्किल था, पर जाएं कहां। अकस्मात एक आदमी नदी की तरफ से लालटेन लिए आता हुआ दिखाई पड़ा। वो जब निकट पहुंचा तब पंडित जी ने उसे देखा, आकृति कुछ जानी पहचानी सी मालूम हुई, तो वो पास जाकर बोले,
5: क्यों भाई साहब यहाँ यात्रियों के ठहरने के लिए जगह नहीं मिलेगी?
6: अरे आप तो पंडित चक्रधर तो नहीं?
5: जी हाँ, आप मुझे कैसे पहचानते हैं?
6: चरण स्पर्श पंडित जी, मैं आपका शिष्य हूँ, मेरी चरण वंदना स्वीकार कीजिए। मेरा नाम कृपा शंकर है, मेरे पिताजी कुछ दिनों बिल्लौर में डाक मुंशी रहे थे, उन्हीं दिनों मैं आपकी सेवा में पढ़ाई करता था।
5: ओहो तो तुम्ही हो कृपा शंकर। अरे भाई तब तो तुम दुबले पतले से लड़के थे, कोई 8-9 साल हुए होंगे इस बात को।
6: जी हाँ, 9 साल था।
5: हाँ।
6: मैंने वहाँ से आकर इंटर पास किया।
5: अच्छा।
6: अब यहाँ म्युनिसिपैलिटी में नौकर हूँ।
5: हाँ।
6: कहिए आप

0: तो अच्छे हैं ना, सौभाग्य था कि आपके दर्शन हो गए।
1: भाई मुझे भी तुमसे मिलकर बड़ा आनंद हुआ। वैसे तुम्हारे पिता कहाँ हैं?
0: उनका तो देहांत हो गया, माताजी साथ हैं। आप यहाँ कब आए?
1: आज ही आया हूँ बेटा, पंडों के घर जगह नहीं मिली, विवश होकर यही रात काटने की सोच रहा हूँ।
0: क्या बाल बच्चे भी साथ में हैं?
1: नहीं नहीं, मैं अकेले ही आया हूँ, पर मेरे साथ दरोगा जी और पटवारी साहब हैं।

0: क्या बाल बच्चे भी साथ में हैं?
1: नहीं नहीं, मैं अकेले ही आया हूँ, पर मेरे साथ दरोगा जी और पटवारी साहब हैं, उनके बाल बच्चे भी साथ में हैं।
0: कुल कितने लोग होंगे?
1: हैं तो 10, किंतु थोड़ी सी जगह में गुजारा हो जाएगा।
0: थोड़ी सी क्यों, मेरा पूरा मकान खाली पड़ा है।
1: अरे वाह,
0: चलिए आराम से 1, 2, 3 जितने दिन चाहे रहिए।
1: अरे वाह,
0: मेरा परम सौभाग्य है कि आपकी कुछ सेवा करने का अवसर मिला।
1: अरे वाह वाह वाह, अब बेटा जीते रहो जीते रहो।
2: कृपा शंकर ने कुली बुलाए, सामान उठवाया और सबको अपने मकान पर ले गया। साफ सुथरा घर था, नौकरों ने चटपट चारपाइयां बिछा दी, घर में पूरियां पकने लगी। कृपा शंकर हाथ बांधे सेवक की भांति दौड़ता था, उसके विनय और नम्रता ने सबको खुश कर दिया था। और सब लोग तो खा पीकर सो गए, किंतु पंडित जी को नींद नहीं आई। उनकी विचार शक्ति इस यात्रा की घटनाओं का उल्लेख कर रही थी, रेलगाड़ी की रगड़ झगड़ और चिकित्सालय की नोच खरोंच के सम्मुख कृपा शंकर की सहायता और शालीनता प्रकाशमय दिखाई देती थी। पंडित जी ने आज शिक्षक का गौरव समझा, उन्हें आज इस पद की महानता ज्ञात हुई। ये लोग 3 दिन अयोध्या रहे, किसी बात का कष्ट ना हुआ। कृपा शंकर ने उनके साथ जाकर प्रत्येक धाम का दर्शन किया। 3रे दिन जब लोग चलने लगे, तब वो स्टेशन तक उन्हें पहुंचाने आया। जब गाड़ी ने सीटी दी तो सजल नेत्रों से उसने पंडित जी के चरण स्पर्श किए।
0: कभी कभी इस सेवक को याद करते रहिएगा।
1: मुझे अब जीवन पर्यंत इसी विभाग की सेवा में रहना है, मेरे लिए तो इससे अलग अब कुछ भी नहीं।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक कलम के जादूगर की 9वीं कड़ी बोध। इस धारावाहिक के प्रस्तुतकर्ता थे कुणाल फिल्म्स, निर्मात्री कौशल्या रॉय, रूपांतरकार दुष्यंत हिमराज, संकलन डॉक्टर पीसी राय, सहायक निर्माता विकेश कुमार और ध्वनि मुद्रण रामकिशन। भाग लेने वाले कलाकार थे सतीश कक्कड़, गौहर परवेज, शिमाइला, अशोक शर्मा, हीरेंद्र झा, कुणाल राय और मोइन शमसी। तो अब इसी के साथ दीजिए हमें आज्ञा, आज ही के दिन और इसी समय हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।

संग्रहालय से मैं अभी आपने सुना जादूगर को सलाम। इस धारावाहिक की 9वीं कड़ी का प्रसारण आप सुन रहे हैं, आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। अब एक कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। आकाशवाणी भोपाल के लोकप्रिय कार्यक्रम ग्राम सभा में रविवार दिनांक 10 मई 2026 को शाम 7:30 बजे से 8 बजे के मध्य सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। इस हेलो ग्राम सभा के लिए विषय है जायद उद्यानिकी फसलों पोषण प्रबंधन एवं सामयिक कार्य। इस कार्यक्रम में जो श्रोता अपनी समस्याओं और जिज्ञासाओं के समाधान चाहते हैं वे दिनांक 10 मई को शाम 7:30 बजे से 8 बजे के मध्य आकाशवाणी भोपाल के फोन नंबर 2660902 और 2660903 पर फोन करके समाधान प्राप्त कर सकते हैं। भोपाल का एसटीडी कोड 0755 है। सूचना समाप्त हुई। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय 12:58 होने जा रहे हैं। अब पेश है इस घंटे की खास खबरें।

0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सोमनाथ मंदिर भारत की अविनाशी शक्ति और सनातन आस्था का प्रतीक है। श्री शाह ने आज सोशल मीडिया में लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण और उससे जुड़ी अपनी दिव्य अनुभूति पर एक भावपूर्ण लेख लिखा है, जिसे सभी देशवासियों को पढ़ना चाहिए। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने संयुक्त अरब अमीरात के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग राज्य मंत्री और भारत के लिए विशेष दूत रीम अल हाशिमी के साथ अबू धाबी में बैठक की। दोनों नेताओं ने भारत संयुक्त अरब अमीरात व्यापक कार्यनीति साझेदारी और परस्पर हित के वैश्विक मुद्दों की समीक्षा की। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज उत्तर प्रदेश के रहमान खेड़ा में शुरू हुए दो दिवसीय फ्रूट होराइजन 2026 कार्यक्रम में हिस्सा लिया। श्री चौहान ने कहा कि उत्तर प्रदेश में क्लीन प्लांट सेंटर स्थापित किए जाएंगे, जहां किसानों को रोग मुक्त पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे। निजी क्षेत्र को भी इसमें सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज राजधानी भोपाल के भारत भवन में हिन्दी पत्रकारिता के द्विशताब्दी प्रसंग पर आयोजित तीन दिवसीय राष्ट्रीय विमर्श का शुभारंभ किया। प्रदेश में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीयन प्रक्रिया जारी है, जिसकी अंतिम तारीख 15 मई है। कल तक 60,000 से ज्यादा पंजीयन किए जा चुके हैं। और आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला होगा। यह मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दोपहर के 1 बजे हैं। अप्रस्तुत है महिला सभा। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र का योगदान है।

बहनों, रिश्ते कभी भी हमारी उम्र, सुंदरता या व्यक्तित्व पर निर्भर नहीं करते हैं। रिश्ते तो हमेशा सच्चाई एवं हमारे द्वारा दिए गए साथ, समय, सम्मान और अपनत्व पर निर्भर करते हैं। बहनों, इसी सुविचार के साथ आप सभी श्रोताओं का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है महिला सभा के इस अंक में। आज मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो मित्र प्रतिभा चतुर्वेदी। तो स्वीकार कीजिए मेरा सस्नेह नमस्कार। बहनों, आज के दिन को विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट आंदोलन के वार्षिक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। आज के दिन को उत्सव के रूप में मनाने की खास वजह ये है कि आज यानी 8 मई को अंतरराष्ट्रीय समिति के संस्थापक हेनरी डुनेट की जयंती है। इनका जन्म 8 मई 1828 को जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ था। सन 1901 में शांति के क्षेत्र में कार्य के लिए उन्हें पहला नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। बहनों, ये दिन युद्ध, आपदाओं और स्वास्थ्य संकटों के दौरान निस्वार्थ सेवा देने वाले वॉलंटियर्स को सम्मानित करने और मानवीय सहायता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। किसी भी आपातकालीन स्थिति में घायलों और पीड़ितों की मदद करने वाले सेवकों के प्रयासों की सराहना करना है। लोगों को जागरूक करने की दिशा में स्वास्थ्य संकटों और मानवता के प्रति रेड क्रॉस के सिद्धांतों को बढ़ावा देना है। बहनों, विश्व रेड क्रॉस दिवस 2026 मानवता, करुणा और सेवा के महत्व की एक सशक्त याद दिलाता है। मानवता को जीवित रखना की थीम के साथ ये दिन उन लाखों स्वयं सेवकों को समर्पित है जो निस्वार्थ भाव से जीवन बचाने और विश्व भर में संकटों को कम करने के लिए काम करते हैं। बहनों, ये एक गैर सरकारी मानवतावादी संगठन है जो युद्ध, आपदा, महामारी, भुखमरी और अन्य लोकतंत्र में धार्मिकों को सहायता प्रदान करता है। ये संस्था किसी भी जाति, धर्म, रंग या राष्ट्रीयता से जुड़े सभी उद्यमियों की मदद करती है। रेड क्रॉस के

आत्मूल सिद्धांत हैं, मानवता, निष्पक्षता, तटस्थता, स्वतंत्रता, स्वैच्छिक सेवा, एकता, सार्वभौमिकता। बहनों, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1920 में हुई थी। विश्व रेड क्रॉस डे की शुरुआत 1948 में हुई थी। आज हेनरी ड्यूनेट की प्रेरणा से 192 देशों में नेशनल रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट कमिटीज टूल्स है, जिसमें ये आंदोलन दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क बन गया है। तो बहनों, अभी आपसे हम चर्चा कर रहे थे विश्व रेड क्रॉस दिवस पर, और अब रुक करते हैं गीत संगीत की ओर। तो चलिए सुनते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर के स्वर में गाइड फिल्म से ये गीत। शैलेंद्र की रचना को संगीत से सजाया है SD बर्मन ने।

0: बहनों, कहा जाता है जान है तो जहान है। बहनों, सड़क पर चलते समय यातायात के नियमों का पालन करना जरूरी है। आप चाहे पैदल हों या साइकिल पर, दो पहिया या चार पहिया की सवारी कर रहे हों, हर हाल में सावधानी बरतना जरूरी है। ट्रैफिक लाइट्स के दिशा निर्देशों का पालन करें, साथ ही सड़क किनारे लगे साइन बोर्ड पर अंकित निर्देशों के पालन में कोताही न बरतें और वाहन की गति हमेशा धीमी रखें। साथ ही हेलमेट का उपयोग करें। बहनों, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए WHO द्वारा आयोजित संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह, ये एक द्विवार्षिक अभियान है जो 8 मई से 12 मई तक चलेगा, जिसका उद्देश्य सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाना और सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु और चोटों को कम करना है। बहनों, इसका मुख्य फोकस पैदल चलने और साइकिल चलाने के लिए सुरक्षित बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना है। इसका महत्व सड़क सुरक्षा को एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दे के रूप में उजागर करता है, क्योंकि सड़क दुर्घटनाएं वैश्विक स्तर पर मौत और विकलांगता का एक प्रमुख कारण बनती हैं। इसका उद्देश्य पैदल चलने वालों, साइकिल चालकों और सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता देने वाली सुरक्षित सड़कों की मांग करना है। बहनों, ये अभियान दुनिया भर के नीति निर्माताओं, गैर सरकारी संगठनों और समुदायों को एकजुट होकर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है। सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए जन जागरूकता कार्यक्रम, हेलमेट वितरण और ब्लैक स्पॉट को ठीक करने जैसे सुरक्षा उपाय अपनाए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य यातायात के नियमों का पालन सुनिश्चित करना, तेज गति, शराब पीकर गाड़ी चलाने और बिना हेलमेट सीट बेल्ट के ड्राइविंग को रोकना है। बहनों, सड़क पर चलते समय सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि हरेक की जिंदगी बहुत कीमती है। और ये तो हमने आपको जानकारी दी संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह पर। और बहनों, मौका दीजिए अपने खून को किसी की रगों में बहने का, मौका दीजिए अपने खून को किसी की रगों में बहने का, ये लाजवाब तरीका है कई जिस्मों में जिंदा रहने का। बहनों, हम समय समय पर विभिन्न विषयों पर वार्ताएं लेकर आते हैं और आज की वार्ता का विषय है रक्त एवं रक्त वर्ग एक जानकारी, और वार्ताकार है कीर्ति सक्सेना।
1: ब्लड हमारी बॉडी में पाए जाने वाले एक इम्पोर्टेंट कंपाउंड है। ब्लड प्रत्येक मनुष्य एवं जीव जंतुओं में पाया जाता है। ब्लड की एक निश्चित मात्रा का हमारे शरीर में होना अत्यंत आवश्यक है। यदि शरीर में ब्लड की कमी होती है तो एनीमिया रोग हो जाता है। इसके साथ ही हम जानेंगे ब्लड किससे मिलकर बना होता है। ब्लड एक तरल कनेक्टिव टिश्यू है जो सर्कुलेटरी सिस्टम अर्थात परिसंचरण तंत्र में भ्रमण करता रहता है। जैसा कि आप जानते ही हैं, ब्लड प्लाज्मा एंड ब्लड कोशिकाओं का बना होता है। प्लाज्मा में अनेक प्रकार के ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड प्रोटीन पाए जाती है। ब्लड का लगभग 7% भाग प्रोटीन का ही बना होता है, एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजेन एंड प्रोथोमोबिन मुख्य प्रोटीन है। प्लाज्मा में हॉर्मोन्स एंड एक्सक्रीटरी सब्सटेंस भी पाए जाते हैं। कभी कभी ब्लड में कुछ बाहरी पदार्थ जैसे प्रोटीन, बैक्टीरिया प्रवेश कर जाते हैं। इन पदार्थों के पहुंच से प्लाज्मा विशेष प्रकार के पदार्थों का फॉर्मेशन होने लगता है, जिन्हें एंटीबॉडी कहते हैं, तथा जो पदार्थ एंटीबॉडी के निर्माण को प्रेरित करते हैं एंटीजन कहलाते हैं। एंटीजन सामान्यतः प्रोटीन एवं पॉलीसेकेराइड के बने होते हैं, जबकि एंटीबॉडी प्रोटीन के बने होते हैं। कुछ एंटीजन RBC में पाए जाते हैं जो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए एंड एंटीजन वी। इसी प्रकार कुछ एंटीबॉडी हमेशा प्लाज्मा में पाए जाते हैं जो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी। ब्लड कोशिकाएं, रुधिर का लगभग 40% भाग रुधिर कणिकाओं या ब्लड कोशिकाओं का बना होता है। सभी जीवों की रुधिर कणिकाओं में थोड़ी बहुत विभिन्नता पाई जाती है, इसके बावजूद इनके मूलभूत लक्षण एक समान ही होते हैं। ये मुख्यतः तीन प्रकार की होती हैं, लाल रुधिर कणिकाएं जो कि गोल या अंडाकार कोशिकाएं हैं जो हल्के पीले रंग की होती हैं, लेकिन लाखों की संख्या में एकत्र होने पर ये लाल रंग की हो जाती हैं। मनुष्य की एक RBC का व्यास 7.5 म्यू तथा मोटाई 1.2 म्यू होती है। एक RBC लगभग 100 दिन तक ही जीवित रहती है, इसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। RBC शरीर के अंदर ऑक्सीजन का संवहन करती है। इसके साइटोप्लाज्म में लाल रंग का आयरन कंपाउंड पाया जाता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। 100 मिलीलीटर ब्लड में लगभग 15 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड लाल रंग का होता है। सफेद

रुधिर कणिकाएं जो कि अमीबा के समान अनियमित आकार की आरबीसी से बड़ी लेकिन संख्या के हिसाब से कम मात्रा में पाई जाने वाली कणिकाएं हैं। हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति के कारण यह रंगहीन होती हैं। मनुष्य के प्रति घन मिलीमीटर ब्लड में 5000 से 9000 तक की संख्या में सफेद रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं। सफेद रक्त कणिकाएं मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, ग्रेनुलोसाइट्स सफेद रक्त कणिकाएं एवं एग्रेनुलोसाइट्स सफेद रक्त कणिकाएं। थर्ड नंबर का है थ्रोम्बोसाइट्स जो कि 2 μ से 4 μ तक व्यास वाली अनियमित आकार की होती हैं। ये अत्यंत कोमल होती हैं और केवल 10 दिन तक ही जीवित रहती हैं। यह रुधिर का थक्का बनने में सहायता करती हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार की लगभग 7% होती है। अतः एक 70 किलोग्राम के मनुष्य में औसतन 5 लीटर ब्लड होगा। मानव रुधिर लाल गाढ़ा एवं स्वाद में नमकीन तथा पारदर्शी होता है। प्रायः रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी के कारण ऑक्सीजन के संवहन की दर में कमी आ जाती है। आरबीसी के अत्यधिक विनाश या धीमे निर्माण या विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड की कमी के कारण आरबीसी की मात्रा ब्लड में कम हो जाती है और एनीमिया रोग हो जाता है। अब हम जानेंगे रक्त की आवश्यकता कब पड़ती है। कभी कभी दुर्घटना होने पर या किसी व्यक्ति के शरीर में ब्लड की कमी को पूरा करने के लिए चिकित्सक स्वस्थ व्यक्ति के रक्त को रोगी व्यक्ति को देकर उसकी रक्षा करते हैं। एक ऐसे व्यक्ति को भी रक्त की अत्यंत आवश्यकता होती है जब वह व्यक्ति हीमोफीलिया रोग से ग्रसित होता है, क्योंकि इस व्यक्ति को चोट लगने पर रक्त का थक्का जमने में 1 से 4 घंटे का समय लगता है, जबकि स्वस्थ व्यक्ति की चोट में थक्का जमने में 2 से 8 मिनट का ही समय लगता है। इसीलिए हीमोफीलिया रोग से ग्रसित व्यक्ति की अधिक रक्त स्त्राव के कारण उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इस रोग के लिए अब तक कोई भी दवा नहीं है, इसका केवल इलाज ब्लड ट्रांसफ्यूजन ही है। स्वस्थ व्यक्ति के रक्त को रोगी व्यक्ति को देना रक्तदान या ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहलाता है। अब हम बात करेंगे स्वस्थ रक्तदान क्यों और कैसे, अर्थात रक्तदान के समय हमें किन किन सावधानियों को अपनाना चाहिए। प्रायः रक्त देने वाला व्यक्ति डोनर अर्थात दाता एवं प्राप्त करने वाला व्यक्ति प्रापक अर्थात रेसिपिएंट कहलाता है। रक्तदान की प्रक्रिया अत्यंत जटिल होती है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का ब्लड हर किसी को नहीं दिया जा सकता। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय 2 विपरीत रक्त समूहों वाले व्यक्तियों के रक्त को मिलाया जाता है, तब इन ब्लड्स की आरबीसी में आपस में चिपककर गुच्छा बना लेती है। गुच्छे कभी कभी पतली रुधिर वाहिकाओं को अवरुद्ध कर देते हैं, फलतः रुधिर वाहिकाएं फट जाती हैं। इस स्थिति में व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। इस प्रकार आरबीसी के चिपकने की प्रक्रिया को एग्लूटिनेशन कहते हैं। डॉक्टर कार्ल लैंडस्टीनर ने वियना में स्थित अपनी प्रयोगशाला में आरबीसी में 2 प्रकार के एंटीजन तथा प्लाज्मा में 2 प्रकार की एंटीबॉडी का पता लगाया। इन्हीं एंटीजन एंड एंटीबॉडी के आधार पर उन्होंने सन 1900 में ह्यूमन ब्लड को 3 वर्गों में डिवाइड किया। इसके 2 साल बाद 1902 में लैंडस्टीनर के ही स्टूडेंट ने एक और ब्लड ग्रुप की खोज की जिसे एंटीजन की उपस्थिति के आधार पर एवी नाम दिया गया। इस प्रकार लैंडस्टीनर एंड उनके छात्रों ने अपने मानव ब्लड ग्रुप्स को 4 भागों में डिवाइड किया। पहला ब्लड ग्रुप ए, इसमें एंटीजन ए एंड एंटीबॉडी बी पाई जाती है। ब्लड ग्रुप बी, इसमें एंटीजन बी तथा एंटीबॉडी ए पाया जाता है। ब्लड ग्रुप ए बी, इसमें एंटीजन ए एंड बी दोनों पाए जाते हैं लेकिन एंटीबॉडी का अभाव होता है। ब्लड ग्रुप ओ, इसमें कोई एंटीजन नहीं पाई जाती, एंटीबॉडी ए और बी दोनों ही पाई जाती हैं, इसमें एंटीजन का अभाव होता है। इसीलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय डोनर एंड रेसिपिएंट के ब्लड की जाँच की जाए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का ब्लड हर किसी को नहीं दिया जा सकता। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय यह ध्यान रखा जाता है कि डोनर की एंटीबॉडी रेसिपिएंट के विपरीत हो। ऐसी स्थिति में एग्लूटिनेशन नहीं होता क्योंकि ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति का ब्लड केवल ए एंड एबी ग्रुप के व्यक्ति को ही दिया जा सकता है। बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति का ब्लड केवल बी एंड एबी ग्रुप के व्यक्ति को दिया जा सकता है। एबी ब्लड ग्रुप का ब्लड केवल एबी ग्रुप वाले व्यक्ति को ही दिया जा सकता है। साथ में ब्लड ग्रुप ओ को सर्वदाता कहा जाता है क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का एंटीजन न होने के कारण यह स्वयं ओ तथा अन्य किसी भी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को चढ़ाया जा सकता है। एबी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति केवल एबी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकता है। वहीं दूसरी ओर समस्त विश्व में कई प्रकार की खतरनाक बीमारियों का संक्रमण फैला हुआ है, जिसमें से कुछ खतरनाक बीमारियां हैं कैंसर, टीबी, हेपेटाइटिस तथा प्रमुख रूप से वर्तमान में एड्स या एचआईवी का संक्रमण फैला हुआ है, जो कि संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संबंध रखने, एचआईवी संक्रमित रक्त उत्पाद चढ़ाने या एचआईवी संक्रमित मां से गर्भावस्था में बच्चे को हो सकता है। वहीं दूसरी ओर समस्त विश्व में कई प्रकार की खतरनाक बीमारियों का संक्रमण फैला हुआ है, जिसमें से कुछ खतरनाक बीमारियां जैसे कैंसर, टीबी, हेपेटाइटिस तथा प्रमुख रूप से वर्तमान में एड्स या एचआईवी का संक्रमण फैला हुआ है, जो कि संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संबंध रखने, एचआईवी संक्रमित रक्त उत्पाद चढ़ाने एवं एचआईवी ग्रस्त संक्रमित मां से उसके बच्चे को हो सकता है। यह एचआईवी रोग लाइलाज है। अतः ब्लड ट्रांसफ्यूजन

0: समय ब्लड की जांच की जानी अत्यंत आवश्यक है ताकि ये संक्रमित बीमारियां ब्लड डोनेट करते समय संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में ना फैल सके। इसके साथ ही साथ संक्रमित सिरिंज को भी उपयोग में नहीं लेना चाहिए। दिए गए उपायों को ध्यान में रखते हुए स्वस्थ तरीके से रक्तदान किया जाना चाहिए, अर्थात ब्लड ग्रुप्स एंड संक्रमित ब्लड की जांच करके ही रोगी व्यक्ति को ब्लड डोनेट किया जाना चाहिए, जिससे हम उनके जीवन की सुरक्षा में योगदान दे सकते हैं एवं उनके जीवन को बचा सकते हैं।
1: रक्त एवं रक्त वर्ग एक जानकारी। अभी आपने ये वार्ता सुनी वार्ताकार कीर्ति सक्सेना से। जो खून तेरी रगों में बहता है वही मेरी रगों में बहता है, दान करते रहें अपने खून का, ये दान किसी को जीवन दे सकता है। और बहनों आप प्यारे से गीत का आनंद लेते हैं फिल्म आराधना से। युगल स्वर है आशा भोसले और मोहम्मद रफी का और आनंद बख्शी की रचना को संगीत में पिरोया है SD बर्मन ने।

अभी आपने आशा भोसले मोहम्मद रफी के स्वर में आराधना फिल्म से ये प्यारा सा गीत सुना। और बहनों अब देते हैं आपको उपयोगी जानकारी। बहनों इन दिनों

सूर्य देव के तीखे तेवर और ताप का प्रभाव चरम पर है। दिन का तापमान लगभग 45 डिग्री पहुंच गया है। झुलसाने वाली धूप और गर्म हवाएं सभी के लिए परेशानी का सबब बनी हुई हैं। बहनों, ऐसी स्थिति में बचाव जरूरी है। गर्मी में तेज धूप और लू से बचने के लिए सुबह 10 से 11 बजे से सूर्यास्त तक बाहर जाने से बचें। गर्मी व धूप से बचने के लिए सूती या वायल के हल्के रंग के पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहने। बहनों, धूप में निकलने से पहले अच्छी कंपनी का सनस्क्रीन लोशन या क्रीम का उपयोग करें और घर से बाहर जाते समय सिर व कानों को सूती दुपट्टा, अंगोछा या रूमाल से अच्छी तरह ढकें। मैंने उस चौड़ी किनारे वाली टोपी और यूवी यानी अल्ट्रा वायलेट प्रोटेक्शन वाले चश्मे पहने। हाथों और पैरों को धूप से बचाव के लिए सूती दस्ताने और मोजे पहने। बहनों, पर्याप्त मात्रा में थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहें, नींबू पानी, नारियल पानी पीते रहें। बहनों, खान पान में ठंडी तासीर वाली चीजों का सेवन करते रहें, जैसे तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, दही, छाछ या मट्ठा, सतुआ का सेवन करते रहें। बहनों, गर्मी को देखते हुए दिन में 2 बार ठंडे पानी से स्नान करें और मौसमी फल सब्जियों का सेवन करें। तला भुना ज्यादा मिर्च मसाले की बजाय हल्का और सादा भोजन करें। बहनों, घर को ठंडा रखने के लिए दिन में खिड़कियां और दरवाजे बंद रखें। तेज धूप से बचाव के लिए हल्के रंग के मोटे पर्दे डालें। बहनों, बच्चों बुजुर्गों का खास ख्याल रखें, इन्हें धूप में हरगिज ना जाने दें और समय समय पर पानी, इलेक्ट्रोल व ग्लूकोज मिलाकर पिलाते रहें। बहनों, जब तक बहुत जरूरी काम ना हो घर से बाहर ना निकलें। बहनों, घर से बाहर जाते समय यदि जाना जरूरी ही है तो पानी की बोतल, भुंजे चने और गुड़ हमेशा अपने साथ रखें व समय समय पर इनका सेवन करते रहें। बहनों, ये छोटी छोटी सावधानियां हमारे परिवार को स्वस्थ व सुरक्षित रखने के लिए जरूरी हैं। और बहनों, गर्मी के मौसम में मूक पशु पक्षियों के लिए भी चारे और दाने सहित पानी की व्यवस्था भी जरूर करें। इनके लिए किया गया आपका सेवा सहयोग आपको बहुत सुकून देगा। बहनों, आए हैं इस धरती पे तो कुछ अच्छा कार्य करते चलें। प्रकृति की रक्षा के लिए एक पेड़ लगाएं और वृक्षारोपण का ध्यान रखें। किसी जरूरतमंद की निस्वार्थ मदद कर उसके चेहरे पर आप मुस्कान ला सकते हैं और हर परिस्थिति में अच्छी सोच रखें और सकारात्मक रहें। बहनों, अब चलने का समय हो गया है तो इतना जरूर कहूंगी कि काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। और बहनों, इसी के साथ अब अनुमति दीजिए प्रतिभा चतुर्वेदी को। नमस्कार।

0: महिला सभा का प्रसारण अभी आपने सुना। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति थे। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।
1: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और एप्लासी एनीमिया जैसे रोगों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के द्वारा इलाज उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड से निशुल्क इलाज की सुविधा भी है।
2: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स।
3: काग

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। 1:30 हुए हैं। ये समय है लोक संगीत के कार्यक्रम का, और इस लोक संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र का ये योगदान, जिसमें आज कलाकार हैं राजू पटेल और साथी। आइए इनसे सुनते हैं कार्यक्रम के आरंभ में ये गुरु महिमा।

0: और लोक संगीत कार्यक्रम की अगली रचना आप सुनने जा रहे हैं पुरुषोत्तम नायक और साथियों के स्वरों में।
1: ईश्वर समान महिमा महान हम

पुरुषोत्तम नायक और साथियों के स्वरों में अभी आपने ये गुरु महिमा सुनी, और इसी के साथ लोक संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। 1:45 हुए हैं, ये समय है सुगम संगीत के कार्यक्रम का, और इस कार्यक्रम में भी आप सुनने जा रहे हैं आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति। इसमें आप सुनेंगे चंद गजलें, कलाकार हैं इकबाल सिद्दीकी।

0: जलन संधारण एवं शुद्धिकरण हेतु ग्राम सरपंचों सचिवों एवं पंप ऑपरेटरों का एक दिवसीय प्रशिक्षण कल आयोजित किया गया। इस बुलेटिन में इतना ही, अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।
1: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए आज कोलकाता में बैठक। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी ग्लाइड हथियार तारा का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर को भारत की दृढ़ता, एकता और सभ्यतागत शक्ति का शाश्वत प्रतीक बताया। अमरीकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत तथा अन्य देशों से आयात पर लगाए गए 10% शुल्क को अवैध घोषित किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट है कि ईरान के पास परमाणु हथियार न हो। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला आज शाम दिल्ली में कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल आज अपने नेता का चुनाव करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह कोलकाता पहुंच गए हैं।
2: पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के लगभग 1.5 दशक के शासन का अंत हो चुका है। कल नवनिर्वाचित सरकार की शपथ ग्रहण के साथ ही बंगाल में राजनीतिक इतिहास में एक नई कड़ी का शुरुआत होगी। कल रविन्द्र जयंती के दिन ब्रिगेड परेड ग्राउंड में पश्चिम बंगाल की पहली बीजेपी सरकार शपथ लेगी। बीजेपी के विधायक दल का नेता चुनने का प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए पार्टी के नियुक्त पर्यवेक्षक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही कलकत्ता पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में वो नवनिर्वाचित विधायक के साथ बैठक करेंगे। इसी बैठक में बीजेपी विधायक दल की नए नेता का चयन किया जाएगा। इसके बाद राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य, आकाशवाणी के लिए।
1: शपथ ग्रहण समारोह कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ लेगी। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। तमिलनाडु में नई सरकार के गठन में देरी से राजनीतिक स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 के बहुमत तक पहुंचने के लिए बातचीत जारी है। डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी ने कल नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की। ऑल अन्ना डीएमके पार्टी के महासचिव ई पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना गया। राज्य की सबसे बड़ी पार्टी तमिलक वेत्री कड़गम को समर्थन देने के मुद्दे पर विदुथलाई चिरू थैगल काची, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक आज होगी। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक अपने नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता का निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा केरल में पार्टी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर लिया जाएगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने कल ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: यह भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है जो किसी भी सामान्य हथियार को घातक और सही दिशा में सटीक मार करने वाले हथियार में बदलने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर इस एडवांस रेंज वेपन सिस्टम तारा का सफल परीक्षण किया गया। हैदराबाद स्थित डीआरडीओ की रिसर्च सेंटर इमारत ने डीआरडीओ के अन्य प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर इसे डिजाइन और विकसित किया है। तारा प्रणाली में अत्याधुनिक लेकिन कम लागत वाली तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। भारत की यह उपलब्धि स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता और अत्याधुनिक सैन्य तकनीक विकसित करने की दिशा में बढ़ती ताकत को दर्शाती है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए डीआरडीओ, वायुसेना, डीसीपीपी और उद्योग जगत को बधाई दी है। श्री सिंह ने इसे भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने के

0: दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को गुजरात जाएंगे। देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई 1951 में पुनः निर्मित सोमनाथ मंदिर का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री ने आज एक राष्ट्रीय दैनिक में लिखे लेख में ये जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि कुछ महीनों के भीतर सोमनाथ मंदिर से जुड़े दो महत्वपूर्ण आयोजनों में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने सोमनाथ को भारत की सभ्यतागत शक्ति और मजबूती का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि सोमनाथ मंदिर की यात्रा विध्वंस से सृजन की तरफ बढ़ने का प्रतीक है और ये दिखाती है कि कैसे विश्वास और संस्कृति बार बार हुए आक्रमणों तथा मुश्किलों के बाद भी अस्तित्व में रह सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वाधीनता के बाद मंदिर के पुनर्निर्माण में देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका का स्मरण किया। श्री मोदी ने कहा कि मंदिर के इतिहास से जुड़े शौर्य और बलिदान को सम्मान करने के लिए अगले 1000 दिनों तक विशेष पूजा आयोजित होंगी। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
0: विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि प्रवासन को लेकर भारत का दृष्टिकोण प्रवासियों की सुरक्षा, देश छोड़ने से लेकर उनकी संभावित वापसी तक व्यापक शासन व्यवस्था और मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के मुख्य संचालन सिद्धांतों पर आधारित है। उन्होंने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय पलायन समीक्षा मंच को संबोधित करते हुए ये बात कही। श्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि भारत प्रवासियों की आवाजाही को सुचारू बनाने के प्रयास कर रहा है।
2: भारत ने 23 देशों के साथ प्रवासियों की आवाजाही के लिए व्यापक द्विपक्षीय समझौते और समझौता ज्ञापन किए हैं तथा निष्पक्ष और नैतिक आवाजाही के लिए कई और अन्य समझौतों पर विचार किया जा रहा है। भारत का लक्ष्य अवैध पलायन, तस्करी और सामाजिक सुरक्षा में मौजूद कमियों जैसी चुनौतियों से निपटते हुए समावेशी, मानवीय और भविष्य के लिए तैयार ढांचे का निर्माण करना है।
0: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि भारत विश्व के सबसे तेजी से बढ़ते विमानन बाजार के बाद अब विमान पट्टे पर देने और वित्तीय सहायता के मामले में एक प्रमुख वैश्विक स्थान बन रहा है। श्री नायडू ने ये बात गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में भारत विमान लीजिंग और वित्त पोषण के दूसरे चरण में मुख्य भाषण देते हुए कही। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने वैश्विक आर्थिक स्थिरता के स्तंभ के रूप में भारत की बढ़ती भूमिका का जिक्र करते हुए अंतर्राष्ट्रीय समृद्धि में देश के महत्वपूर्ण योगदान का उल्लेख किया। श्री जयशंकर ने सूरीनाम में विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि इस वर्ष वैश्विक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमान के अनुसार भारत कुल वैश्विक विकास में 17% का योगदान देता है।
3: इंडिया कंट्रीब्यूट्स।
2: भारत कुल वैश्विक विकास में 17% का योगदान देता है। हम अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के जोखिम को कम करने में मदद कर रहे हैं। हम अधिक अवसर पैदा करने में सहायक हैं। हम आज और अधिक विकल्प तैयार कर रहे हैं। हम आज विभिन्न देशों के लिए ऐसे और अधिक मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहे हैं और उन्हें अंतिम रूप दे रहे हैं ताकि वे इनका लाभ उठा सकें।
3: इंक्लूडिंग मोर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स फॉर कंट्रीज टू अवेल ऑफ इट।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति ट्रंप के 10% के नए टैरिफ को गैर कानूनी बताया है। न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अदालत की 3 सदस्यीय पीठ ने व्यवस्था दी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने व्यापार कानून के तहत अमेरिकी संसद से प्रदत्त शक्तियों का उल्लंघन किया। छोटे व्यवसायियों ने राष्ट्रपति ट्रंप के शुल्क संबंधी फैसले को अदालत में चुनौती दी थी। पिछले वर्ष लगाए गए वैश्विक टैरिफ को अदालत द्वारा स्थगित करने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने नए शुल्कों की घोषणा की थी। अमेरिकी प्रशासन ने इसके बाद व्यापार अधिनियम 1974 की धारा 122 का इस्तेमाल कर 24 जुलाई 2026 तक अस्थायी 10% टैरिफ लागू करने का फैसला किया था। अमेरिका

0: के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार न हो। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लैन के साथ सार्थक बातचीत की और पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की। श्री ट्रंप ने कहा कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि अपने लोगों की हत्या करने वाले ऐसे शासन को हथियार प्राप्त करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए जिससे लाखों लोगों की जान जा सकती हो। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लैन ने भी सोशल मीडिया पर बातचीत की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया से जुड़े घटनाक्रमों और क्षेत्रीय साझेदारों के साथ समन्वय पर बातचीत की। आकाशवाणी ने राष्ट्र के प्रति अपनी विशिष्ट सेवा के 90 वर्ष के उपलक्ष्य में आज राष्ट्रीय राजधानी में मैराथन का आयोजन किया। लगभग 3.5 किलोमीटर की मैराथन की शुरुआत आकाशवाणी भवन से हुई। ये मैराथन कृषि भवन, रेल भवन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से गुजरते हुए आकाशवाणी भवन पर समाप्त हुई। मैराथन पूरा करने वाले सभी प्रतिभागियों को पदक प्रदान किए गए। वहीं पुरुष और महिला दोनों वर्गों में शीर्ष 3 प्रतिभागियों को ट्रॉफी प्रदान की गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने इस मैराथन को रवाना किया।
1: आकाशवाणी के व्यापक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क में इसी प्रकार के मैराथन और वॉकाथॉन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है जिससे 90वीं वर्षगांठ के समारोह के दौरान व्यापक जनभागीदारी और जागरूकता सुनिश्चित हो सके। इस अवसर पर प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी ने कहा कि मैराथन के माध्यम से फिटनेस का संदेश जनता तक पहुँचाया जा रहा है।
2: इस साल 90 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आकाशवाणी में आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे पूरे देश में जितने भी स्टेशन हैं, जो देश में फिटनेस की एक मूवमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आरंभ हुई, उसका संदेश भी लोगों तक ले जाने के लिए ये उस कड़ी में एक कदम था।
1: आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने बताया कि आयोजन सार्वजनिक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी द्वारा देश की सेवा में किए गए योगदान को दर्शाता है।
3: ब्रॉडकास्टर होने के नाते जब इस तरह का कार्यक्रम हम करते हैं तो इसका संदेश दूर दूर तक, सुदूर प्रदेश तक पहुंचता है और ये बहुत बड़ा उदाहरण होगा।
4: देश भर में जो हमारे 232 मुख्य केंद्र हैं उन पर ये आयोजन इस महीने आयोजित होगा।
1: अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के अंतर्गत 6वें युवा संगम का आयोजन कर रहा है। इसका उद्देश्य विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के युवाओं में सांस्कृतिक एकीकरण को बढ़ावा देना तथा लोगों के बीच संपर्क को सशक्त बनाना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत देश के विभिन्न हिस्सों के युवा प्रतिभागी जीवन, विकास, संस्कृति, विरासत, शिक्षा, पर्यटन, नवाचार और श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों के विभिन्न पहलुओं का अनुभव करने के लिए सहयोगी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा कर रहे हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। वर्षा से बाधित मैच का फैसला डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर हुआ। 213 रन के लक्ष्य के जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु निर्धारित 19 ओवर में 6 विकेट पर 203 रन ही बना सका। मिशेल मार्श को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.7% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 527 अंक गिरकर 77,318 पर, जबकि निफ्टी 153 अंक की गिरावट के साथ 24,173 पर था। मौसम विभाग ने 10 से 13 मई के बीच देश के उत्तर पश्चिमी भागों के विभिन्न स्थानों पर बिजली चमकने, बादल गरजने और तेज हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। केरला, माहे, दक्षिण आंध्रीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और कराईकाल में तेज बारिश की संभावना है। रविवार तक उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए आज कोलकाता में बैठक। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी ग्लाइड हथियार तारा का सफल उड़ान परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर को भारत की दृढ़ता, एकता और सभ्यतागत शक्ति का शाश्वत प्रतीक बताया। अमरीकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत तथा अन्य देशों से आयात पर लगाए गए 10% शुल्क को अवैध घोषित किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा

0: अफ्रीका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास परमाणु हथियार न हो। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला आज शाम दिल्ली में कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 2:30 हुए हैं। अब हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर को अभी आपने सुना। रामपुर का लक्ष्मण फिल्म का नाम था। कैफी आजमी ने इस गीत को शब्द दिए थे, धुन थी मदन मोहन की। सुनने के लिए चिट्ठी लिख भेजी थी हमारे इन सभी दोस्तों ने। मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवहाणकर, सरिता सिद्धांत और प्रिंस एकांश गवहाणकर ने। आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से शैलेश वैशाली, श्वेता सुमित और ध्वनि गवाणकर ने भी इसी गीत को सुनना चाहा था। दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार ने इस गीत के लिए अपनी फरमाइश लिख भेजी थी। ग्राम महसेवाड़ी मलकापुर महाराष्ट्र से शत्रुघ्न घाड़े, निनाजी घाड़े और स्वप्निल घाड़े साथ में अजय खिरोडकर ने इस गीत को सुनना चाहा था। और अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं हमारे इन

रोशन का ये संगीतबद्ध किया हुआ नगमा है, बोल है मजरूह सुल्तानपुरी की आवाज़, लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम ममता, फरमाइशी नाम, गीत के बाद।

लता जी के गाए हुए इस गीत को सुनना चाहा था हमारे इन सभी दोस्तों ने। बीड शहर से प्रकाश पगारिया, पराग, प्रदीप और केशव पटेल, संजय पंचोलिया, प्रियंका, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सरमती पंचोलिया ने घंटाघर चौक खंडवा से ये चिट्ठी हमें लिख भेजी थी। रेलवे कॉलोनी बटंडा से अगला खत आया है। जगमाल सिंह डांगला, हैप्पी डांगला, जेएस नायक और शोभा नायक। और अब हम आपको सुनवा रहे हैं हमारे इन सभी दोस्तों की फरमाइश। उपाध्याय नगर देवास से मुरलीलाल वर्मा, मनीष और शिवम वर्मा। राजा राम नगर देवास से ही ये खत आया है। राजू अग्रवाल, मधु महाजन और राकेश अग्रवाल, ये दोस्त हमारे जो हैं, इन्होंने भी ये चिट्ठी लिख भेजी है। देवास से सुपरमार्केट से ये खत है, प्रकाश चंद्र जसवानी, पंकज और सनी जसवानी का। हरिराम माली, विष्णु माली, कपिल और निरंजन माली ने रूपा खेड़ी देवास से ही खत लिख भेजा है। जेल रोड देवास से अगली चिट्ठी आई है नवीन वर्मा और बबलू वर्मा की। गंगेड़ी जिला उज्जैन से गोपाल बागवान, गोविंद सालाग्राम, दशरथ बागवान, साथ में है कन्हैयालाल प्रजापति। इन सभी दोस्तों की फरमाइश पर हम आपको सुनवा रहे हैं ये गीत।

और अब बारी है हमारे इन सभी दोस्तों की फरमाइश की। ये हैं नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना, मोनिका, नूपुर, ऋषिका और रॉबिन, मोहम्मद सादिक, मोहम्मद शाकिर, मुश्ताक अहमद, बेबी मंतसा, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री ने ये चिट्ठी लिख भेजी है पाकिजा रेडियो श्रोता संघ इस्लामपुरा सनावत से। लाल माता

सुदामानगर रटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से ये खत लिख भेजा है हमारे इन सभी सुनने वालों ने, हर्षिता, रामेश्वर, कान्हा, सफलता, कपिल, मीनाक्षी, सत्यनारायण, मनोहर भाई और प्रभुलाल बांगरी। जयराज प्लॉट राजकोट से इस खत लिख भेजा है हमारे इन सभी श्रोताओं ने, मधुसूदन भट्ट, आरती, पूजा, जास्मिन और प्रयागराज भट्ट। इन सभी दोस्तों की फरमाइश पर हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार का गाया हुआ ये गीत। साथ में आवाज है सुरेश वाडेकर की। राहुल देव वर्मन ने इस गीत को संगीतबद्ध किया है और शब्दकार हैं आनंद बख्शी। फिल्म का नाम बेमिसाल।

और इसी नगमे के साथ कार्यक्रम आपकी फरमाइश अब खत्म होता है। ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। 2:58 हुए हैं। अब प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।

0: कुंभ चल रहा है। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय और वीर भारत न्यास मिलकर प्रणाम उदंत मातंड नाम से यह समारोह 10 मई तक आयोजित कर रहे हैं। आकाशवाणी की सेवा के 90 साल पूरे होने के जश्न में आज नई दिल्ली में 3.5 किलोमीटर की मैराथन दौड़ आयोजित की गई। यह दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व बैंक होते हुए वापस आकाशवाणी भवन पर ही खत्म हुई। और रेलवे ने स्वदेशी तकनीक से बनी कवच ट्रेन सुरक्षा प्रणाली को उत्तर रेलवे के अहम रूटों पर लगाने की मंजूरी दे दी है, जिस पर करीब 362 करोड़ रूपये खर्च होंगे। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। अब हम इस सभा का समापन करें, उससे पहले आपको जानकारी दे दें हमारी सांध्यकालीन सभा के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की। शाम 5:02 पर आप सुनेंगे युवा दोस्तों का कार्यक्रम युवावाणी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति होगी और एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम सुना जा सकेगा शाम 6:00। ग्राम सभा का प्रसारण किया जाएगा 7:21 पर। सुर्खियों में इस कार्यक्रम का प्रसारण होगा 8:00। खेल जगत, इसे आप सुन सकते हैं 9:30 पर। 10:00 का समय है कार्यक्रम आपकी फरमाइश का। पंडित भीमसेन जोशी का राग भीम पलासी में ख्याल गायन प्रसारित होगा। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में प्रसारण समय रहेगा 10:30। ये थी जानकारी हमारे उन कार्यक्रमों की जिन्हें आप हमारी सांध्यकालीन सभा में सुन सकते हैं। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण है, 3:02 होने को हैं। अब मीडियम वेव पर हमारी ये सभा संपन्न होती है। मीडियम वेव पर आप हमारी सभा का प्रसारण शाम 5:00 से सुन सकते हैं। अभी दीजिए इजाजत, इस बीच प्रसारण डीटीएच पर जारी रहेगा। नमस्कार। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। 3:02 हुए हैं। अब सुनिए लोक संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को गुजरात के सोमनाथ मंदिर जाएंगे, जहां पुनर्निर्मित मंदिर के उद्घाटन के 75 साल पूरे होने के जश्न मनाया जाएगा। देश के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई 1951 को इस मंदिर का उद्घाटन किया था। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट पर भाजपा नेताओं के स्वागत के बाद श्री शाह सबसे पहले दक्षिणेश्वर काली मंदिर गए और पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से शिष्टाचार भेंट की और उन्हें पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। हिंदी पत्रकारिता के 200 साल पूरे होने की खुशी में भोपाल के भारत भवन में 3 दिन का मीडिया महाकुंभ

0: नमस्कार। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ पर, साथ ही साथ प्रसार भारती के ऑफिशियल न्यूज ऑन AIR ऐप पर। ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। संध्या के 5 बजे हैं। अब हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। आज की सभा में प्रारंभ में सुनते हैं आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से युवाणी कार्यक्रम। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू LPG की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में आज पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता पहुंच गए हैं। श्री शाह भाजपा के

भी 207 नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में विधायक दल का नेता यानी मुख्यमंत्री चुना जाएगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बिहार में लीची की फसल को कीड़ों से होने वाले नुकसान से रोकने के लिए त्वरित और सक्रिय कदम उठाए हैं। श्री चौहान ने एक विशेष विशेषज्ञ कार्यबल गठित करने का निर्देश दिया। अमरीका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए 10% के वैश्विक शुल्क को अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया है। उप मुख्यमंत्री एवं शहडोल जिले के प्रभारी मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि जिले में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित निर्माणाधीन विकास कार्यों में तेजी लाकर उन्हें समय सीमा में पूर्ण किया जाए। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा स्वीकृत विकास कार्यों को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करना अत्यंत आवश्यक है। और आईपीएल में आज शाम 7:30 बजे दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति है।

0: साथियों आपका स्वागत है आज के खास युववाणी कार्यक्रम में। मैं हूं आपका अपना मित्र अनुपम खरे, लेकर आया हूं आज का युववाणी कार्यक्रम। साथियों आज के कार्यक्रम में हम करेंगे कुछ महत्वपूर्ण चर्चाएं, साथ ही होगी वार्ता और होंगे आपके मनोरंजन के लिए मधुर गीत भी। तो आइए दोस्तों कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस चर्चा के साथ, जिसका विषय है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और थोक मूल्य सूचकांक। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और थोक मूल्य सूचकांक महंगाई मापने के प्रमुख उपकरण है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI आम उपभोक्ता द्वारा खरीदी जाने वाले वस्तु और सेवाओं की कीमतों में बदलाव को दर्शाता है। यह आम लोगों की जीवन यापन लागत को समझने में मदद करता है। CPI में खाद्य पदार्थ, कपड़े, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी चीजें शामिल होती हैं। थोक मूल्य सूचकांक यानी WPI थोक बाजार में वस्तुओं की कीमतों में बदलाव को मापता है। यह मुख्य रूप से उत्पादकों और व्यापारियों के स्तर की महंगाई को दिखाता है। WPI में कच्चा माल, ईंधन और विनिर्मित वस्तुएं शामिल होती हैं। CPI का उपयोग आमतौर पर मौद्रिक नीति बनाने में किया जाता है, जबकि WPI से उत्पादन लागत और आपूर्ति की स्थिति का अंदाजा लगाया जाता है। CPI सीधे आम जनता को प्रभावित करता है, जबकि WPI अप्रत्यक्ष प्रभाव डालता है। दोनों सूचकांक मिलकर अर्थव्यवस्था की स्थिति को समझने में सहायक होते हैं। अगर CPI बढ़ता है तो महंगाई बढ़ने का संकेत मिलता है। WPI में वृद्धि से उत्पादन लागत बढ़ने का संकेत मिलता है। सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक इन सूचकांकों के आधार पर नीतियां बनाते हैं, इसलिए CPI और WPI दोनों आर्थिक विश्लेषण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथियों ये तो थी हमारी एक छोटी सी जानकारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और थोक मूल्य सूचकांक पर। साथियों कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब आपको लेकर चलते हैं वार्ता की ओर। वार्ता का विषय है जल संरक्षण। वार्ताकार हैं सुमुख रावत।
1: सभी को नमस्कार, और आज हम जल के संरक्षण और जल के महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। जल संरक्षण वर्तमान समय की महती आवश्यकता। जल पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। यह न केवल हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, बल्कि यह कृषि, उद्योग और संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र के लिए भी अनिवार्य है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार दुनिया का लगभग 40% आबादी को पर्याप्त स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं है। जल संकट लगातार बढ़ रहा है, और यदि इस पर तुरंत ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले वर्षों में यह समस्या और भी विकराल हो सकती है। जल का

नवाश्यक उपयोग, जल स्रोतों का दूषित होना और जलवायु परिवर्तन की वजह से वर्षा में अनिश्चित जल संकट को और गंभीर बना दिया है। इसलिए जल संरक्षण वाटर कंजर्वेशन केवल एक विकल्प नहीं बल्कि एक अनिवार्यता बन गया है। जल संकट के महत्व, जल संकट के कारण, जल संरक्षण के विभिन्न उपायों और इससे जुड़े सामाजिक तत्वों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जल संरक्षण का महत्व। जल संरक्षण का अर्थ है जल के उपयोग को अनुकूलित करना, जल की बर्बादी को रोकना और जल स्रोतों की रक्षा करना। यह न केवल हमारे पर्यावरण के लिए बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जल संरक्षण के कुछ प्रमुख लाभ इस प्रकार हैं। पहला, मानव जीवन का आधार। जल के बिना जीवन की कल्पना भी असंभव है। यह पीने, खाना पकाने, स्वच्छता बनाए रखने, कृषि और कार्यों में आवश्यक भूमिका निभाता है। दूसरा, कृषि और खाद्य सुरक्षा। कृषि क्षेत्र जल पर अत्यधिक निर्भर करता है। सिंचाई के बिना खेती असंभव है। जल की कमी के कारण फसल उत्पादन प्रभावित हो सकता है जिससे खाद्य संकट उत्पन्न हो सकता है। तीसरा, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना। नदियाँ, झीलें और समुद्र कई जीवों का प्राकृतिक आवास है। जल स्रोतों की कमी से जैव विविधता को नुकसान पहुंचाता है और पारिस्थितिक असंतुलित हो जाती है। चौथा, ऊर्जा उत्पादन में योगदान। जल का उपयोग बिजली हाइड्रो पावर उत्पादन में किया जाता है। यदि जल संकट बढ़ता है तो बिजली उत्पादन भी प्रभावित होता है जिससे औद्योगिक और घरेलू क्षेत्रों में ऊर्जा की समस्या उत्पन्न हो सकती है। पांचवा, औद्योगिक और आर्थिक विकास। अधिकांश उद्योगों में जल की आवश्यकता होती है। यदि जल की उपलब्धता सीमित हो जाती है तो औद्योगिक उत्पादन भी प्रभावित होगा जिससे आर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। वर्तमान जल संकट और इसके कारण, जल स्रोतों का अत्यधिक दोहन। भूमिगत जल का अनियंत्रित दोहन जल संकट का एक प्रमुख कारण है। उद्योगों, कृषि और घरेलू उपयोग के लिए लगातार बढ़ते दोहन ने भूमिगत जल स्तर को अत्यधिक गिरा दिया है। जल प्रदूषण, औद्योगिक कचरा, प्लास्टिक अपशिष्ट, कृषि में उपयोग होने वाले कीटनाशक और घरेलू गंदगी जल स्रोतों को दूषित कर रहे हैं। इससे स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता कम हो रही है। जलवायु परिवर्तन और अनिश्चित वर्षा। जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा का पैटर्न अनिश्चित हो गया है। कई क्षेत्रों में सूखा पड़ रहा है जबकि कुछ क्षेत्रों में बाढ़ की समस्या बनी हुई है। बढ़ती जनसंख्या और शहरीकरण। जनसंख्या वृद्धि के साथ जल की मांग भी बढ़ रही है। शहरीकरण के कारण जल स्रोतों पर अत्यधिक दबाव पड़ रहा है जिससे जल संकट और भी गंभीर हो गया है। जल प्रबंधन की कमी। भारत जैसे देशों में जल प्रबंधन की कमी भी जल संकट का एक बड़ा कारण है। जल संचयन और जल पुनर्चक्रण वाटर रिसाइकलिंग की पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं होने के कारण जल का अपव्यय हो रहा है। जल संरक्षण के उपाय। वर्षा जल संचयन रेन वाटर हार्वेस्टिंग। वर्षा जल का संरक्षण और उपयोग जल संकट को कम करने का एक प्रभावी तरीका है। इसके लिए विधियां अपनाई जा सकती हैं। छतों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाकर जल संरक्षण किया जाए। तालाबों और कुओं का पुनरुद्धार किया जाए। ग्रामीणों क्षेत्रों में पारंपरिक जल संचयन तकनीकों को अपनाया जाए। भूमिगत जल पुनर्वरण ग्राउंड वाटर रिचार्ज। कुओं, तालाबों और बावड़ियों की सफाई कर उन्हें जल संरक्षण के लिए उपयुक्त बनाए जाए। सड़कों और घरों के पास परकुलेशन टैंक बनाए जाए ताकि वर्षा जल जमीन में समा सके। सिंचाई में जल की बचत टपकन सिंचाई ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर प्रणाली का उपयोग किया जाए। कम पानी वाली फसलें उगाई जाए। फसल चक्र क्रॉप रोटेशन अपनाया जाए। घरेलू स्तर पर जल की बचत नलों को खुला ना छोड़ें और टपकते नलों को ठीक कराएं। बाल्टी से नहाने को प्राथमिकता दें। शावर को कम उपयोग करें। कपड़े और बर्तन धोने में पानी ही कम खर्च करें। उद्योगों में जल संरक्षण जब जल पुनर्चक्रण तकनीकों को अपनाएं। औद्योगिक कचरे को जल स्रोतों में बहाने से रोकें। कारखानों में जल उपयोग की प्रभावी निगरानी हो। जल स्रोतों का संरक्षण नदियां, झीलें और जलाशयों की सफाई और पुनरुद्धार किया जाए। जल निकायों के आसपास वृक्षारोपण किया जाए। जन जागरूकता अभियान स्कूलों, कॉलेजों और कार्यस्थलों पर जल संरक्षण पर कार्यशालाएं आयोजित की जाएं। जल संरक्षण पर सामाजिक अभियानों को बढ़ावा दिया जाए। सरकार और समाज की भूमिका। सरकार नीतियों और योजनाएं नमामि गंगे जैसी योजनाएं का विस्तार किया जाए। जल संरक्षण कानूनों को सख्ती से लागू किया जाए। किसानों को जल बचाने की तकनीकों पर प्रशिक्षण दिया जाए। समाज की भूमिका प्रत्येक नागरिक को जल की बचत के लिए प्रयास करने चाहिए। सामाजिक संगठनों
को जल संरक्षण के लिए सामूहिक प्रयास करने चाहिए।

0: युवाओं को जल संरक्षण अभियानों में सक्रिय भागीदारी करनी चाहिए। इसका निष्कर्ष, जल संरक्षण आज की सबसे बड़ी जरूरत है। यदि हम जल को बचाने के लिए अभी से प्रयास नहीं करेंगे तो भविष्य में जल संकट और भी गहरा हो सकता है। हमें व्यक्तिगत, सामाजिक और सरकारी स्तर पर मिलकर जल संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। जल बचाने के लिए हमें अपनी आदतों में सुधार करना होगा, जल स्रोतों को स्वच्छ रखना होगा, वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देना होगा और जल पुनर्चक्रण की प्रक्रिया को अपनाना होगा। सरकार, उद्योगों और आम जनता को मिलकर जल प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाना होगा। जल है तो कल है, ये केवल एक नारा नहीं बल्कि एक सच्चाई है। यदि हम जल संरक्षण के लिए अभी से कार्य करें तो हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और समृद्ध भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं। जल की हर एक बूंद अनमोल है, इसे बचाना सभी की जिम्मेदारी है।
1: साथियों, अभी आपने सुनी ये वार्ता जिसका विषय था जल संरक्षण। वार्ताकार थे सुमुख रावत। साथियों, कार्यक्रम का रुख मोड़ देते हैं अब मनोरंजन की ओर और सुनते हैं ये मधुर गीत।

साथियों, अभी हमने जो ये गीत सुना ये था फिल्म कारवां से, जिसमें आवाज थी अरिजीत सिंह की, जिसके गीतकार थे आकर्ष खुराना और संगीत से सवारा था अनुराग साइकिया ने। साथियों, जैसा आप सभी को ज्ञात है कि आज है 8 मई, यानी आज ही के दिन हम विश्व रेड क्रॉस दिवस भी मनाते हैं। तो हम आपको दे देते हैं विश्व रेड क्रॉस दिवस के बारे में थोड़ी सी जानकारी। विश्व रेड क्रॉस दिवस हर साल 8 मई को मनाया जाता है। यह दिन मानवता, सेवा और करुणा के मूल्यों को सम्मान देने के लिए समर्पित है। यह दिन हेनरी ड्यूनांट के जन्मदिन पर मनाया जाता है, जो अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति के संस्थापक थे। उन्होंने युद्ध के दौरान घायल सैनिकों की मदद के लिए एक वैश्विक मानवीय संगठन की नींव रखी। विश्व रेड क्रॉस दिवस का मुख्य उद्देश्य मानवता की सेवा के लिए लोगों को प्रेरित करना, आपदा और संकट में राहत कार्यों के महत्व को समझाना, स्वयं सेवकों के योगदान को सम्मान देना। रेड क्रॉस संगठन दुनिया भर में कई महत्वपूर्ण कार्य करता है। बाढ़, भूकंप, युद्ध आदि में सहायता, प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं, रक्तदान शिविरों का आयोजन, शरणार्थियों और जरूरतमंदों की मदद करना। आज के समय में जब दुनिया विभिन्न संकटों से जूझ रही है, रेड क्रॉस जैसे संगठन मानवता के लिए उम्मीद की किरण है। यह हमें सिखाता है कि बिना किसी भेदभाव के दूसरों की मदद करना ही सच्ची मानवता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस हमें यह याद दिलाता है कि छोटे छोटे प्रयास भी किसी की जिंदगी बदल सकते हैं। सेवा, सहानुभूति और सहयोग के माध्यम से हम समाज को बेहतर बना सकते हैं। तो साथियों, ये तो थी एक छोटी सी जानकारी विश्व रेड क्रॉस दिवस के बारे में। साथियों, आपको लेकर चलते हैं हमारी आखिरी चर्चा की ओर, जिसका विषय है संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह। संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह हर 2 साल में एक बार मनाया जाता है। इसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को कम करना और जागरूकता बढ़ाना है। यह पहल संयुक्त राष्ट्र द्वारा शुरू की गई है। सड़क सुरक्षा एक वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दा बन चुका है। हर साल लाखों लोग सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवाते हैं। इस सप्ताह के दौरान विभिन्न देशों में जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। लोगों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए भी प्रेरित किया जाता है। हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग जीवन बचा सकता है। तेज गति और लापरवाही दुर्घटनाओं का मुख्य कारण भी बनती है। नशे में वाहन चलाना बहुत खतरनाक होता है। पैदल यात्रियों और साइकिल चालकों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता है। स्कूलों और कॉलेजों में सड़क सुरक्षा शिक्षा भी दी जाती है। सरकारें बेहतर सड़क और ट्रैफिक व्यवस्था बनाने पर जोर देती है। यह सप्ताह युवाओं को जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित करता है। साथियों, मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से संदेश फैलाया जाता है। आपातकालीन सेवाओं की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वह सुरक्षित ड्राइविंग करे। छोटी छोटी सावधानियां बड़े हादसों को रोक सकती हैं। यह अभियान सुरक्षा पहले की सिद्धांत को बढ़ावा देता है। मिलकर प्रयास करने से ही सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकती है। तो साथियों, हमेशा हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग करें और वाहन बहुत ही सावधानी से चलाएं। साथियों, ये तो थी हमारी एक चर्चा संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह पर। साथियों, वक्त हो चला है मनोरंजन का, तो आइए करवा देते हैं आपका मनोरंजन इस मधुर गीत के साथ।

साथियों, अभी हमने सुना फिल्म अखियों के झरोके से ये मधुर गीत, जिसमें आवाज थी हेमलता की, जिसके गीतकार और संगीतकार थे रविंद्र जैन। साथियों, अब जाते जाते दे देते हैं आपको रोजगार सूचना भी। आरआरबी योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। पद का नाम है सहायक लोको पायलट यानी ALP, जिसमें पदों की संख्या है 11,127। आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम 30 वर्ष। आयु सीमा में छूट नियमानुसार दी जाएगी। शैक्षणिक योग्यता है उम्मीदवार को संबंधित ट्रेड में ITI डिप्लोमा के साथ 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। आवेदन की अंतिम तिथि 15 जून 2026 है। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी आधिकारिक वेबसाइट यानी www.indianrailwaysgovernment.in पर विजिट भी कर सकते हैं। ना चाहते हुए भी वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का, तो दीजिए अनुमति अपने मित्र अनुपम खरे को। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति में कार्यक्रम युववाणी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश।

मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्स और प्रसार भारती की न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत है फिल्म कबूतर से सोन निगम और अलका याग्निक की आवाज में। गीत लिखा है जावेद अख्तर ने और संगीत दिया है राजेश रोशन ने।

0: कबूतर फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज में। गीत जावेद अख्तर का था और संगीत राजेश रोशन का। हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद।
1: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: कार्यक्रम में आगे सुनिए बाल ब्रह्मचारी फिल्म का गीत कविता कृष्णमूर्ति और राम शंकर की आवाज में। गीत माया गोविंद और प्रकाश मेहरा का और संगीत बप्पी लहरी का।

कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए फिल्म हमराज का गीत उदित नारायण की आवाज में, गीत सुधाकर शर्मा का और संगीत हिमेश रेशमिया का।

0: इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से कुछ देर बाद 6 बजे प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। 6:30 पर बुंदेली लोकगीतों के कार्यक्रम लोकधारा में आप सुनेंगे राम सिंह खंगार को। 7:20 पर ग्राम सभा में आप सुनेंगे मानस प्रवचन। प्रसंग होगा प्रताप भानु की कथा, प्रवचन करता होंगे रविंद्र कुमार मिश्रा। प्रेम नारायण शर्मा से सुनिएगा काव्य पाठ और आज की सीख का विषय होगा छक्के छूटना। रात्रि 8 बजे भोपाल से हम अनुप्रसारित करेंगे सुर्खियों में। 8:15 पर होगा फिल्म संगीत। 9:15 पर स्पॉटलाइट हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। 9:30 पर आप सुनेंगे रसावतरण के अंतर्गत कवि गोष्ठी। प्रतिभागी होंगे शरद मिश्रा, डॉ राम कुमार पांडे झटपट, विजय प्रकाश सेनी और नम्रता शुक्ला। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे नाटक स्मारक। लेखक हैं सुशील त्रिपाठी, प्रस्तुति है डॉ अरविंद सोनी की। 10:30 पर शास्त्रीय संगीत में सुनिए अली अकबर खां से सरोद पर बजाया राग पूरिया कल्याण। तो श्रोता, ये तो थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रम हम आपको बताते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
1: बदलो बदलो आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: कल सुबह 7:20 पर बुंदेली सुगंध के अंतर्गत आप सुनेंगे शिवनारायण तिवारी से वार्ता, खजुराहो के अनछुए पहलू। 7:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। 8:30 पर फिल्मी गीतों के संयोजित कार्यक्रम गीत गुंजन का प्रसारण किया जाएगा। 9 बजे लोक रंग में सुनिएगा चिंतामन राय को। 9:30 पर होगा श्रोताओं के पत्रों एवं ईमेल पर आधारित फिल्मी गीतों का संयोजित साप्ताहिक कार्यक्रम जवाब गुनगुना उठे। प्रस्तुति होगी रविंद्र कुमार प्रजापति की, सहयोग राजेंद्र कुमार अहिरवार का।

10:05 पर आप सुनेंगे मिश्रित संगीत का कार्यक्रम सबरंग। 10:30 पर श्रोताओं के पत्रों एवं ईमेल पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद हम आपको सुनवाएंगे। आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से हम अनुप्रसारित करेंगे 11 बजे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे, 12 बजे आपकी फरमाइश, 12:30 पर संग्रहालय से ये कार्यक्रम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र की प्रस्तुति होंगे। इसके अलावा 1 बजे महिला कार्यक्रम जो कि आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति होगा। रीवा की ही प्रस्तुति में आप सुनेंगे 1:30 पर लोक संगीत, 1:45 पर सुगम संगीत। आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से ही हम अनुप्रसारित करेंगे 2 बजे फिल्म संगीत और 2:30 पर आपकी फरमाइश। कल हमारी सांध्यकालीन सभा में 5:02 पर युववाणी कार्यक्रम हम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति होगा। 5:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत, 6 बजे सुगम संगीत में आप सुनेंगे अनुराधा पौडवाल।

0: कल हमारी सांध्यकालीन सभा में 5:02 पर युववाणी कार्यक्रम हम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति होगा। 5:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। 6:00 सुगम संगीत में आप सुनेंगे अनुराधा पौडवाल और चंदन दास को। 6:30 पर बुंदेली लोकगीतों के कार्यक्रम लोकधारा में आप सुनेंगे शैलेन्द्र दुबे को। 7:20 पर ग्राम सभा में आप सुनेंगे हेलो लोक रंजन कार्यक्रम, जो श्रोताओं के फोन कॉल्स पर आधारित बुंदेली लोकगीतों का फरमाइशी कार्यक्रम है। इसकी प्रस्तुति होगी रविन्द्र कुमार प्रजापति की। आज की सीख का विषय होगा छाती पे धरें फिरत। कल रात 8:00 भोपाल से हम अनुप्रसारित करेंगे सुर्खियों में 8:15 पर फिल्म संगीत, 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर राष्ट्रीय संस्कृति पत्रिका संस्कृति भारती और रात्रि 10:00 संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। तो श्रोताओं, ये तो थी हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्स और प्रसार भारती की न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 5:58 हो रहे हैं। न्यूज हेडलाइंस और उसके उपरांत प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। अब हम आकाशवाणी
1: मध्य प्रदेश है। इस समय हमारे स्टूडियोज की घड़ी में संध्या के 5:58 हुए हैं। अब प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
2: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। सरकार ने कहा है कि देशभर में घरेलू LPG की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में आज पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS के अंतर्गत नामांकित व्यक्तियों की कुल संख्या इस वर्ष मार्च तक 2,17,00,000 तक पहुंच गई है। पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित यह योजना सेवानिवृत्त के बाद नागरिकों को लंबे समय तक के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बिहार में लीची की फसल को कीड़ों से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए त्वरित और सक्रिय कदम उठाए हैं। श्री चौहान ने एक विशेष विशेषज्ञ कार्यबल गठित करने का निर्देश दिया। उप मुख्यमंत्री एवं शहडोल जिले के प्रभारी मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि जिले में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित निर्माणाधीन विकास कार्यों में तेजी लाकर उन्हें समय सीमा में पूर्ण किया जाए। और IPL में आज शाम 7:30 दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा।
1: और पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू,
0: सिटी गोनियाना मंडी से गुरप्रीत सिंह जस्सल
1: और गांव फरांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी।
0: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
1: अरे वह फिर से आप सबका स्वागत है ये भी जानिए श्रृंखला में। श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं समुद्र की,
0: इसके रहस्यों की और मानवता को दिए जाने वाले इसके अमूल्य योगदान की। आइए सबसे पहले जानते हैं कि भारतीय शास्त्रों में इसे किन किन नामों से पुकारा गया है। इन नामों से भी समुद्र की विशेषताओं का पता चलता है। अजीत जी, अब आपकी बारी है।
1: जी बिमलेश जी, तो साथियों, समुद्र का सबसे प्रचलित नाम है सागर
0: जी,
1: लेकिन इसे जलधि भी कहा जाता है, यानी जल को धारण करने वाला। अब आपकी बारी।
0: दूसरा प्रचलित नाम है रत्नाकर, यानी बहुमूल्य रत्नों का भंडार। विष्णु पुराण और भागवत पुराण में समुद्र मंथन का उल्लेख है। इस प्रक्रिया में बहुत से अलग अलग प्रवृत्ति वाले रत्न निकले थे।
1: श्रोताओ, समुद्र को अर्णव भी कहा गया है, यानी विशाल और गर्जन करने वाला। इसे सिंधु भी कहते हैं
0: जी,
1: यानी जल का विशाल बहता भंडार। तो श्रोताओ, ये हैं समुद्र के विभिन्न नाम जो हम अपने शास्त्रों में पाते हैं। आज हम विशेषकर बात करेंगे समुद्र की गहराई और इसके एक खास रहस्य के बारे में।
0: वैसे तो समुद्र अपनी गहराई के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज हम जानेंगे कि दुनिया का सबसे गहरा समुद्र स्थल कहाँ है। जी, चर्चा को आगे बढ़ाएं।
1: जी श्रोताओ, मरियाना ट्रेंच दुनिया का सबसे गहरा समुद्री क्षेत्र है, जो फिलीपींस के पास प्रशांत महासागर में है, और सबसे गहरे स्थान का नाम है चैलेंजर डीप।
0: यहाँ समुद्र 10,984 मीटर से भी अधिक गहरा है, यानी करीब 11 किलोमीटर गहरा।
1: विमलेश जी, इस तथ्य को और रोचक बनाते हैं एक प्रश्न से। क्या चैलेंजर डीप की गहराई माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से अधिक है?
0: जी बिल्कुल, इस बात को एक तुलना से समझते हैं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊपर है, जबकि समुद्र तल से नीचे चैलेंजर डीप की गहराई 10,984 मीटर है, यानी अंतर करीब 2 किलोमीटर का है।
1: 2 किलोमीटर का अंतर, अद्भुत सच में। यानी यदि माउंट एवरेस्ट को मरियाना ट्रेंच के चैलेंजर डीप में डाल दिया जाए तो यह पूरी तरह से डूब जाएगा
0: जी,
1: और ऊपर 2 किलोमीटर गहराई का पानी बचा रहेगा
0: जी।
1: अच्छा, चलिए वार्ता को कुछ और रोचक बनाते हैं। अभी हमने बात की माउंट एवरेस्ट की, सुना है कि समुद्र के अंदर भी पर्वत होते हैं।
0: जी बिल्कुल सही सुना है आपने। समुद्र के अंदर हमारी भूमि से अधिक पर्वत श्रृंखलाएं हैं, वहाँ बड़े बड़े ज्वालामुखी भी होते हैं। श्रोताओं को एक और रोचक बात बताऊं, समुद्र में भी एक ऐसा पर्वत है जिसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से भी अधिक मानी जाती है। नाम है माउना केया।
1: जी श्रोताओ, है ना रोचक बात। यदि पूरी पृथ्वी की बात करें तो इसमें समुद्र भी शामिल है
0: जी,
1: तो ये दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है ये, यानी माउना केया
0: जी।
1: और ये पर्वत प्रशांत महासागर में स्थित है
0: जी।
1: समुद्र के ऊपर दिखाई देने वाली ऊंचाई लगभग 4000 मीटर है, लेकिन बाकी हिस्सा समुद्र के अंदर है। माउना केया की ऊंचाई आधार से लगभग 10,200 मीटर है, यानी जबकि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर है।
0: ये एक ज्वालामुखी द्वारा निर्मित पर्वत है, जो लाखों वर्षों में लावा जमा होते रहने से धीरे धीरे बना और परत दर परत जमा होकर इतना विशाल हो गया, आज ये एक आकर्षक पर्यटन स्थल और अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए जाना जाता है।
1: तो विमलेश जी, अब समाप्त करने से पहले श्रोताओं को समुद्र के बारे में कुछ और रोचक जानकारी दे दें
0: जी।
1: तो सबसे पहली जानकारी है, पूर्ण विकसित ब्लू व्हेल समुद्र का सबसे बड़ा जीव है। और मालूम है, इसका दिल एक सामान्य कार के आकार से भी बड़ा होता है
0: जी। समुद्र की गहराई के 3 भाग हैं, सतही क्षेत्र, ये वो भाग हैं जहां अधिकतर जीव पाए जाते हैं, यहां सूर्य का प्रकाश पहुंच पाता है।
1: और दूसरा क्षेत्र है मध्य क्षेत्र, यहां समुद्र का प्रकाश बहुत कम पहुंचता है, इसलिए कई ऐसे जीव यहां पाए जाते हैं जो खुद चमकते हैं।
0: और तीसरा क्षेत्र है बहुत ही गहरा क्षेत्र, यहां पूरी तरह से अंधेरा रहता है और जल का दबाव लाखों टन से भी अधिक होता है। सामान्य स्थिति में हम वहां कुचल जाएंगे, लेकिन फिर भी इस क्षेत्र में बहुत से जीव पाए जाते हैं। ये प्रकृति का चमत्कार नहीं तो और क्या है।
1: सच में ये प्रकृति का अद्भुत चमत्कार है। तो श्रोताओं, अब करते हैं समाप्त आज की चर्चा और अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम बताइए।
1: 8800440559 यानी हमारे IBRS नंबर पर और audio@cieet.nic.in पर आप अपना संदेश भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो करना मत भूलिएगा।
1: और अब सुनते हैं आज का विशेष शैक्षिक कार्यक्रम, शीर्षक है रविंद्रनाथ टैगोर।
0: इस कार्यक्रम के द्वारा कविवर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन, उनकी साहित्यिक रचनाओं और कविताओं के बारे में जानकारी दी गई है।

0: IET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को मेरा यानी विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ, जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम राजकोट से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
2: लिखते हैं, खुशी दुनिया में उपलब्ध सब दवाओं में सर्वोत्तम दवा है, इसलिए खुश रहो और खुशियाँ बांटो।
0: बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर संदेश के लिए। और आइए सुनते हैं हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना भावना बिंदु गोलू और कुसुमबाई नागनपुरे।
2: अयोध्या धाम से राजा बाबू शर्मा, राम बाबू शर्मा, राज बाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेन्द्र शर्मा।

0: उनके जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को भी शामिल किया गया है और बताया गया है कि उनका व्यक्तित्व कितना बहुआयामी और विलक्षण था। रविंद्र संगीत के बारे में भी इसमें चर्चा की गई है।
1: विश्व शिक्षक रविंद्रनाथ टैगोर।

0: रविन्द्रनाथ ठाकुर के इस गीत में है निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा, चाहे कोई साथ दे या ना दे। आज भी रविन्द्र संगीत में वही ऊर्जा, वही शक्ति और वही प्रेरणा है। रविन्द्र संगीत हमारे दिलो दिमाग पर छा गया है, हमारी संस्कृति में रच बस गया है। बंगाल की माटी के कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर की गीतांजलि काव्य कृति को 10 दिसंबर सन 1913 में एशिया में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये संसार का सर्वोत्कृष्ट और दुर्लभ पुरस्कार है।
1: इस अवसर पर स्वीडिश अकादमी की नोबेल कमेटी के चेयरमैन हेरल्ड हर्जन ने कहा था, भारतीय कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने श्रेष्ठ आध्यात्मिक कविताओं की रचना की है। गीतांजलि ने बहुत से आलोचकों का ध्यान अपनी तरफ मोड़ा है और अब ये अंग्रेजी साहित्य में ही नहीं, अमेरिका और समस्त पश्चिमी दुनिया के साहित्य में भी उपलब्ध होगी। इसकी विशेषताएं हैं, कवि के विचारों में संपूर्णता, कविताओं में लयात्मक संतुलन, शब्दों का चयन, और किसी अन्य भाषा में इसका अनुवाद करना मुश्किल होगा।

0: गीतांजलि के गीतों में भारत के प्रति अगाध प्रेम और श्रद्धा है।
1: हेमोर चित्त पुण्य तीर्थ जागरे धीरे এই ভারতের মহামানবীর সাগর তীরে।
2: इस गीत में कवि ऐसी भारत की कामना करता है जहां हमारा मन निर्भय और मस्तक ऊंचा हो।
0: वे मनुष्य के कर्म को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। भजन कीर्तन कंठी माला सब बेकार। किसे पूछते हो अंधियारे मंदिर में तुम बंद किए सब द्वार। कृषक जहां खेती करते हैं ईश वहां है।
2: गीतांजलि में प्रतीक्षा का भाव अनेक रचनाओं में है, चाहे वो ईश्वर की हो या ऋतुओं की। इसमें कुछ गीत भावात्मक हैं, कुछ सोनेट शैली में लिखे गए हैं। सोनेट 14 पंक्तियों के प्रगीतों को कहते हैं जो मुक्त छंद में लिखे होते हैं। कवि रविंद्रनाथ ने इन्हीं दिनों हमारे देश का राष्ट्रगान जन गण मन लिखा और स्वयं उसे गाया भी।
3: जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता।

उत्थल जलधितरम्य तव शुभ नामे जागे तव शुभयाशिषु मागे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे

0: बंगाल ही नहीं, उनके गीत देश विदेश, गांव शहर हर जगह गाए और सराहे जाते हैं। भारत के सुप्रसिद्ध जाने माने साहित्यकार रविन्द्रनाथ ठाकुर एक सशक्त गीतकार और संगीतकार ही नहीं, साहित्य की अनेक विधाओं में उन्हें महारत हासिल है। वे एक सुविख्यात कवि, नाटककार, उपन्यासकार, कथाकार, गद्यकार, निबंधकार, व्याख्याता, कुशल गायक, चित्रकार और नाट्य अभिनेता होने के साथ साथ विश्व के एक महान शिक्षक हैं।
1: देश ने मनाई रविन्द्रनाथ ठाकुर की 150वीं जयंती। इस अवसर पर तेलुगु के प्रसिद्ध कवि समालोचक एम गोपी ने ठाकुर बाड़ी कविता लिखी। प्रस्तुत अंश उसी कविता का है। जोड़ा सांकों की एक पतली गली में है ठाकुर बाड़ी। उस गली ने खोल दिए हैं विशाल विश्व के प्रवेश द्वार। द्वार छोटे भले ही क्यों ना हो, पर विहरण है दिगंतों तक। सात मई सन 1861 को इसी ठाकुरबाड़ी में पिता देवेंद्रनाथ की 14वीं संतान रविन्द्रनाथ ठाकुर का जन्म हुआ। ये जगह उत्तरी कलकत्ता में है, कलकत्ता जो अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के राज में इसे बनाया गया था। बचपन में रविन्द्रनाथ ने बहुत से स्कूल बदले। स्कूल के बंधन उन्हें कारागार जैसे लगते। घर पर ही उन्होंने बांग्ला, संस्कृत, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, संगीत, चित्रकला आदि विषयों का अध्ययन किया। मगर घर में नौकरों का शासन भी था, जिसे रवि ने सेवकशाही तंत्र का नाम दिया। ये नौकर बच्चों को रामायण महाभारत की कथाएं सुनाते, उन्हें घेरे रहते और दंड

रविन्द्रनाथ ने लगभग 7-8 वर्ष की उम्र से लिखना शुरू किया। उन्हें नए शब्दों को गढ़ने में बहुत आनंद मिलने लगा और फिर नीले कागजों की बही पर गढ़ी जाने लगी कविता। उनकी प्रारंभिक रचनाओं में बनफूल तथा कवि काहिनी विशेष महत्वपूर्ण है।

0: और फिर वो दिन भी आया जब पिता 12 वर्ष के रविंद्रनाथ को अपने साथ हिमालय यात्रा पर ले गए। प्रकृति के प्रति लगाव को देखते हुए पिता ने उन्हें वहां घूमने और अपने विचारों को व्यक्त करने की आजादी दी। यहीं रविंद्र ने प्रकृति को जाना पहचाना और उसे महसूस किया।
1: कविंद्र रविंद्र को नदी का कवि भी कहा जाता है।
0: यही प्रकृति आगे चलकर उनके काव्य सृजन का सशक्त आधार बनी। 12 वर्ष की उम्र में ही रविंद्रनाथ ठाकुर की पहली कविता अभिलाष सन 1874 में तत्व बोधिनी पत्रिका के नवंबर दिसंबर अंक में छपी। फिर दूसरी रचना भारत उस समय की अमृत बाजार पत्रिका में प्रकाशित हुई। उनका मन संगीत में रचा बसा था। उन्होंने भक्ति, प्रकृति, देश प्रेम, ऋतुओं, उत्सवों सभी के गीत गाए। उन्होंने बंगला में गीतों की स्वरलिपि साधने में कठिन साधना की थी। सांध्य संगीत और प्रभात संगीत

0: संग्रह उनके गीतों के दो महत्वपूर्ण काव्य संग्रह हैं। प्रभात संगीत संग्रह की एक चर्चित कविता है निर्झरेर स्वप्न भंग, जिसमें सूर्य किरण के स्वागत में झरना फूट पड़ता है, जो जिंदगी के उल्लास और आनंद का प्रतीक है।
1: बच्चों के लिए रविंद्रनाथ की पहली कविता है बृष्टि पड़े टापुर टोपुर। इसकी धुन लोकगीत जैसी है।

0: शिशु भोलानाथ आदि काव्य संग्रहों में रविंद्रनाथ द्वारा रचित बाल कविताएं हैं। बच्चों के लिए लिखी एक कविता दोपहर बड़ी मार्मिक है। इसका अनुवाद सिने जगत के प्रसिद्ध गीतकार गुलजार ने किया। ओ मां, अब मेरी छुट्टी करो ना, सुबह से पढ़ रहा हूं मैं, तुम्हारे कमरे में जाकर मैं पढ़ना खेलूंगा। अभी दोपहर है बस, कह दिया तुमने। उन्होंने बच्चों के लिए नाटक और कथाएं भी लिखी।
1: सन 1877 के आसपास इन्होंने लघु कथा कहानी की एक नई विधा को जन्म दिया। इस समय की कहानियां गल्पगुच्छ के नाम से प्रसिद्ध थीं। उनकी पहली कहानी है भिखारिणी, जो रविंद्रनाथ ठाकुर की साधना पत्रिका में प्रकाशित हुई। इनमें उन दिनों के अनुभवों पर आधारित कहानियां हैं, जब रविंद्रनाथ ठाकुर जमींदारी की देखभाल के लिए शजातपुर सियालदेह गांव का दौरा कर रहे थे।

0: यही वे नदी के किनारे नौकाओं पर रहते और लोगों की समस्याएं सुनते। इनसे मिलने के लिए किसानों, मल्लाहों, केवटों, चरवाहों, कुम्हारों, यात्रियों, गायकों, बालकों, शिक्षकों, सभी का मेला लगा रहता। वे अपने स्नेह युक्त हृदय और उदारता के कारण बाबू मोशाय बन गए और इन्हीं में रविन्द्रनाथ को मिलते गए अपनी कथाओं के पात्र भी।
1: जुलाई 1905 अंग्रेजी शासन ने भाषा और संस्कृति की दृष्टि से हिंदुओं और मुस्लिमों में भेद उत्पन्न करने के लिए बंग विभाजन किया। बंगीय जनता में तिलमिलाहट पनपी। रविंद्रनाथ ठाकुर ने इस अवसर पर अपने मातृभूमि से प्रेम और सांप्रदायिक एकता बनाए रखने के लिए बंगाल के लोगों का अपने गीतों द्वारा आह्वान किया।
2: আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি, চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি।

0: और फिर दिल दहलाने वाली नरसंहार की घटना घटी। अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग वाली त्रासद घटना के विरोध में उन्होंने नाइटहुड उपाधि लौटाई। इस संबंध में 30 मई 1919 को उन्होंने वॉइसरॉय को पत्र लिखा।
1: अपने देश के लिए मैं इतना तो अवश्य कर सकता हूँ, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो, कि मैं अपने करोड़ों देशवासियों

0: वासियों के विरोध को वाणी दे सकूं। समय आ गया है, अब ये उपाधियों के तमगे हमारे अपमान के संदर्भ में लज्जास्पद लगते हैं।
1: रविंद्रनाथ ने नाट्य रचना के गुण विरासत में पाए। उन्होंने अपने नाटकों में बांग्ला यात्रा के लोक तत्वों और संस्कृत नाट्य परंपरा के तत्वों का सामंजस्य किया। इससे उस समय के रंगमंच को एक नया स्वरूप मिला। नाट्य से रविंद्रनाथ ने गीति नाट्यों की ओर रुख किया। उन्होंने संगीत को काव्य और नाटक का महत्वपूर्ण साधन माना है। रविंद्रनाथ ठाकुर एक शिक्षक हैं। वे जीवन और शिक्षा में सामंजस्य स्थापित करना चाहते थे। वे शिक्षा नीति अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़े रखना चाहते थे। साहित्य, संगीत एवं अन्य कलाओं को शिक्षा में स्थान दिलाने का श्रेय रविंद्रनाथ ठाकुर को जाता है। उनका मानना था कि बच्चा अपने परिवेश और पर्यावरण से जुड़कर बेहतर सीख सकता है और समझ सकता है।
2: आमादेर शांति निकेतन, यानी हमारा शांति निकेतन।
3: आमादेर शांति निकेतन, आमादेर
2: शांति। सन 1901 में शांति निकेतन आरंभ हुआ, जिसमें रविंद्रनाथ ने शिक्षा की औपचारिक रटंत विद्या से अलग बच्चों की सृजन शक्ति के विकास के लिए भारत की प्राचीन आश्रम व्यवस्था को अपनाया। एक कवि की पाठशाला में उन्होंने लिखा,
0: बच्चे का अवचेतन संवेदनशील होता है और पेड़ों की तरह वह अपनी खुराक वातावरण से ग्रहण करता है। उसके लिए यह नियमों, रीतियों, पाठ्य पुस्तकों और पाठों से अधिक महत्वपूर्ण है।
2: शिक्षार हेरफेर निबंध में सशक्त निबंधकार रविंद्रनाथ ने मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने पर जोर दिया। सामान्य स्कूलों की तुलना उन्होंने कारखानों से की है। भारतीय औपनिवेशिक शिक्षा व्यवस्था पर रविंद्रनाथ ने एक मार्मिक नीति कथा लिखी, तोते का प्रशिक्षण, जो पाठ्य पुस्तकों को बच्चों में जबरन ठूसने पर एक करारा व्यंग्य है। इस कहानी में तोते को ऐसी भयानक कष्टपूर्ण शिक्षा दी जाती है कि तोता मर जाता है। शांति निकेतन में बच्चों को पेड़ों के नीचे शिक्षा दी जाती थी और आज भी यही पद्धति जारी है। यहां बच्चों के बहुमुखी विकास के लिए अलग अलग प्रयोगशालाएं हैं। जहां सीखने की आजादी है, अब ये विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। रविंद्रनाथ ने कहा था,
0: विश्व से एकात्म होने का अर्थ अपनी पहचान खो देना नहीं है, बल्कि सीखने सिखाने के लिए एक सौहार्दपूर्ण वातावरण पैदा करना है।
1: उनका मानना था, इस विश्व भारती में सभी देशों के शिक्षा संस्कृति के प्रतिनिधि शामिल हों, जिससे सारा संसार एक घोंसला बन जाए। और ऐसा हुआ भी। उनके प्रयासों से ही देश विदेश के विद्वानों को इस विश्व भारती में आमंत्रित किया जा सका।
2: वे स्त्रियों की शिक्षा के हिमायती थे। उस जमाने में भी उनकी कहानी, उपन्यासों के स्त्री पात्र, कविता लेखन और स्वतंत्र चिंतन के प्रतिरूप हैं। स्त्री शिक्षा निबंध में उन्होंने लिखा था,
0: विद्या यदि मनुष्यत्व प्राप्त करने का उपाय है और विद्या प्राप्त करना यदि मानव मात्र का जन्मजात अधिकार है, तो उसे इस अधिकार से वंचित न किया जाए। जो कुछ भी जानने लायक है वही विद्या है। पुरुष को भी जानना होगा, स्त्री को भी जानना होगा।
1: रविंद्रनाथ ठाकुर ने अनेक विधाओं में लिखा, पर स्वयं को मूलतः कवि ही माना। आमी कवि, मैं कवि हूँ। उन्होंने

0: अपने 70वें जन्मदिन पर लिखा,
1: मैंने एक तपोवन का संधान करना चाहा था, शहर के भयावह घरों में नहीं, आकाश के खुले वितान के नीचे सुबह से शाम तक मैं इन लड़के लड़कियों के खेल का साथी बनना चाहता था। यही मेरा सच्चा कार्य रहा है। मेरी जगह वही है, धरती की गोद, इन पेड़ों, इन जंगलों में, इस धूल, इस तृण दल में मैंने अपना जीवन उंडेला है। जो धरती की आत्मा के निकट हैं, जो उससे ही बने, उसी में ढले हैं, जो अपना अंतिम विराम उसी में पाएंगे, मैं उन सब का मित्र हूं, मैं कवि हूं।
2: स्पेनिश, जर्मन, अंग्रेजी और विभिन्न विदेशी भाषाओं में रविंद्रनाथ की कृतियों का अनुवाद किया गया है। उनकी कविताओं की अंग्रेजी में अनुदित कृतियां हैं गार्डनर, फूड गैदरिंग, द फ्यूजिटिव क्रेसेंट मून। न केवल भारत में अपितु जर्मनी, अमेरिका, इटली आदि अनेक देशों के पाठ्यक्रम में रविंद्र साहित्य शामिल किया गया है।

सुनकर पुकार तुम्हारी, आए नहीं कोई पास तो क्या, चल दो अकेले। जो कायर हैं छुपते हैं ओट लेकर, तुम चलो अकेले। अरे अभागे खोलो मन, तुम बोलो पगले एक अकेले। रेगिस्तानों में कोई साथ छोड़े तो भी क्या है, कांटों के पांव में चुभने से होता क्या है, रक्त सने पथ पर बढ़ लेना अकेले। तूफानी रातों में दीपक लेकर कोई खड़ा नहीं तो भी तुम चलो अकेले। तड़त ज्योति पीड़ा की बनने दो एकाकी मन में, चलते चलो अकेले, चलते चलो अकेले।

0: तो श्रोताओ, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यही समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश।
4: हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है बुंदेली लोक गीतों का कार्यक्रम लोकधारा। इसमें आज हमारे कलाकार हैं राम सिंह खंगार। आरंभ करते हैं इनकी गाई गणेश वंदना से।
5: अरे आओ गणराज विराज।

0: अब कैंसर इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं,
1: क्योंकि अब ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में पेट सीटी स्कैन, लीनियर एक्सेलरेटर जैसे एडवांस मशीन्स उपलब्ध हैं। कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, मंदिर की माता।

0: निखार। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: ओहो भाई साहब, फिर खराब हो गया आपकी चक्की का पत्थर।
2: क्या करें बहन जी, ये हर बार की मुसीबत है।
1: डुप्लीकेट पत्थर तो मुसीबत ही है, चक्की का पक्का साथी जोयल पत्थर लाओ और मुसीबत से छुटकारा पाओ। कीमत बढ़ने पर भी आपको मिल रहा है पुरानी कीमत में जोयल पत्थर।
2: जोयल के असली पत्थर के लिए आएं ओमरे जी की पुरानी दुकान, ओमरे कॉम्प्लेक्स दुकान नंबर 4, लिंक रोड, सागर।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: कार्यक्रम में आगे सुनिए राम सिंह खंगार से ये दहेज निषेध गारी।

0: अब कैंसर इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं,
1: क्योंकि अब ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में पेट सीटी स्कैन, लीनियर एक्सेलरेटर जैसे एडवांस मशीन उपलब्ध है। कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, मंदिर की माता।
2: हो गया इंतजाम।
3: किसका?
2: गुड्डी की फीस का।
3: दिखा 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
4: आरबीआई कहता है
5: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: लीजिए अब सुनते हैं चेतावनी राम सिंह खंगार से।
2: अरे अब कहो ने भैया।

0: अब कैंसर इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं,
1: क्योंकि अब ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में पेट सीटी स्कैन, लीनियर एक्सेलरेटर जैसे एडवांस मशीन्स उपलब्ध हैं। कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, मंदिर की माता।
2: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
3: जी,
2: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
3: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
2: पर ये होगा कैसे?
3: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
2: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
3: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
2: बस
3: बस
2: समझ गया।
3: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
4: आरबीआई कहता है
0: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: में आए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: लीजिए अब सुनिए कहरवा राम सिंह खंगार से।
3: सफल होने

राम सिंह खंगार के गाए इस लोक शैलीबद्ध गीत के साथ ही बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए गुमशुदा सूचना। ये गुमशुदा सूचना है वर्षा के बारे में, जिनकी उम्र है 19 वर्ष, हुलिया, रंग गोरा, दोहरा जिस्म, ऊंचाई 5 फुट, लाल कलर का फ्रॉक पहने हुए हैं। पिता का नाम है नूर शाह। इनका पता है ग्राम भिटारी, थाना सिरसा कलार, जनपद जालौन। ये दिनांक 25 फरवरी 2026 को दोपहर को 2:30 पर ग्राम भिटारी से कहीं चली गई हैं। इनके परिवार का जो संपर्क का नंबर है वो है 9580056709। एक बार नंबर फिर सुन लें, 9580056709। क्षेत्राधिकारी जालौन का नंबर है 9454401428। जांच अधिकारी SI अनूप सिंह का नंबर है 9305490479। थानाध्यक्ष सिरसा कलार का नंबर है 9454403605। इनका एक और

0: मोबाइल नंबर है 8470851123। वर्षा की गुमशुदा सूचना समाप्त हुई। एक और गुमशुदा सूचना है जो कि है श्रीमती पूनम के बारे में है। इनके पति का नाम है सुमित अग्रवाल, निवासी है मोहाल जवाहर नगर कोच जिला जालौन की। इनका रंग गोरा है, लंबाई 5 फुट के लगभग है, उम्र 28 वर्ष के लगभग है। सुमित अग्रवाल सूचित करते हैं कि इनकी पत्नी श्रीमती पूनम 31 मार्च 2026 को दिन 12 बजे से गायब हैं। इनके साथ में 7 माह की बच्ची कुमारी अनन्या भी है। काफी खोजबीन के बाद कहीं इनका पता नहीं चला। सारे रिश्तेदार संबंधियों से जानकारी करने के बाद भी कोई पता नहीं चला है। अतः किसी व्यक्ति को कोई सूचना मिलती है तो इन नंबरों पर वो सूचित कर सकते हैं, उनको उचित इनाम दिया जाएगा। संपर्क सूत्र जो वो है वो इस प्रकार है। सुमित अग्रवाल जो उनके पति हैं, उनका मोबाइल नंबर है 6307677693। मोबाइल नंबर एक बार और सुन ले, 6307677693। क्षेत्राधिकारी कोच जालौन का मोबाइल नंबर है 9454401431। प्रभारी निरीक्षक थाना कोच का मोबाइल नंबर है 9454403597। सुमित अग्रवाल का एक बार और नंबर सुन ले, 6307677693। क्षेत्राधिकारी कौन जिला जालौन का 9454401431। प्रभारी निरीक्षक थाना कोंच का नंबर है 9454403597। इसके अलावा अगर आपको वर्षा या पूनम के बारे में कोई भी जानकारी पता चलती है और मोबाइल नंबर आपको याद नहीं रखते तो आप निकटस्थ थाने में इसकी सूचना भी दे सकते हैं और बता सकते हैं कि ये कोंच जालौन का मामला है और आगे की कार्यवाही वो थाना कर लेगा। सूचना समाप्त हुई। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ और प्रसार भारती की न्यूज ऑन AIR ऐप पर आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। 7:10 हो रहे हैं। प्रादेशिक समाचार अब हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से।
1: प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राणा शाहे। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 साल पूरे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को करेंगे दर्शन पूजन। अगले 1000 दिनों तक होंगी विशेष प्रार्थनाएं। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल की बैठक में शुभेंदु अधिकारी के नाम पर मोहर, कल ब्रिगेड परेड ग्राउंड में लेंगे शपथ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिल्ली में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से की मुलाकात। और देश भर में घरेलू एलपीजी आपूर्ति पूरी तरह सामान्य, वाणिज्यिक आपूर्ति 70% बहाल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को गुजरात के सोमनाथ मंदिर जाएंगे, जहां पुनर्निर्मित मंदिर के उद्घाटन के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाया जाएगा। देश के पहले राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई 1951 को इस मंदिर का उद्घाटन किया था। श्री मोदी ने एक अखबार में लिखे लेख में कहा कि सोमनाथ भारत की सभ्यतागत ताकत का प्रतीक है और यह मंदिर बताता है कि आस्था और संस्कृति

0: बार बार के हमलों के बावजूद जिंदा रहती है। पश्चिम बंगाल में भाजपा की ऐतिहासिक जीत के बाद कोलकाता में आयोजित विधायक दल की बैठक में शुभेंदु अधिकारी को विधायक दल का नेता चुना गया है। बैठक के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उनके नाम का ऐलान किया।
1: प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
0: श्री शुभेंदु अधिकारी ने इस चुनाव में ममता बनर्जी को उनके गृह क्षेत्र भवानीपुर से हराया है और नंदीग्राम से भी लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की है। श्री शुभेंदु कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी समेत एनडीए के कई बड़े नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से उनके निवास पर भेंट की। इसके अलावा उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से भी शिष्टाचार भेंट कर उन्हें पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह भेंट किया। दोनों नेताओं ने संगठनात्मक मामलों और आगामी राजनीतिक रणनीति पर चर्चा भी की। अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। केंद्र सरकार का कहना है कि देश भर में घरेलू एलपीजी की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है और किसी भी वितरक पर गैस की कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। पेट्रोलियम मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि वाणिज्यिक आपूर्ति करीब 70% तक बहाल हो चुकी है और प्रवासी श्रमिकों के लिए 5 किलोग्राम के सिलेंडरों की आपूर्ति भी बढ़ा दी गई है। मार्च से अब तक 6 लाख से अधिक PNG कनेक्शन चालू किए जा चुके हैं और देश में कहीं भी पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है।
3: अभी तक 6.5 लाख से अधिक PNG कनेक्शंस को गैसीफाई किया गया है, ये मार्च से अब तक के आंकड़े मैं आपको बता रही हूँ। इसके अलावा 2,66,000 से अधिक नए कनेक्शंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है। 7 लाख से अधिक ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने अपने आप को PNG कनेक्शन के लिए रजिस्टर किया है।
0: राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने विश्व रेडक्रॉस दिवस पर भोपाल में आयोजित सेवा सम्मान समारोह में शिरकत की। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि दीन दुखियों की सेवा ही ईश्वर की सेवा है और रेडक्रॉस के 7 मूलभूत सिद्धांत जीवन जीने के सच्चे मार्गदर्शक हैं। प्रदेश में अब तक 9 लाख से अधिक किसानों से 53.40 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी हो चुकी है और करीब 9,500 करोड़ रुपए का भुगतान सीधे किसानों के खातों में किया जा चुका है। इस वर्ष गेहूं का समर्थन मूल्य 2,585 रुपए प्रति क्विंटल के साथ 40 रुपए बोनस मिलाकर किसानों को कुल 2,625 रुपए प्रति क्विंटल का भाव मिल रहा है। राज्य सरकार ने खरीदी की अंतिम तिथि बढ़ाकर 23 मई 2026 कर दी है और उपार्जन केंद्रों पर तौल पर्ची बनाने का समय भी रात 10 बजे तक कर दिया गया है। उप मुख्यमंत्री एवं शहडोल जिले के प्रभारी मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने आज बाणसागर सर्किट हाउस में जिला विकास सलाहकार समिति की बैठक में विकास कार्यों की समीक्षा की। श्री शुक्ल ने शहडोल उमरिया मार्ग और विजय सोता पुल निर्माण में अपेक्षित प्रगति न होने पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने नर्सिंग कॉलेज, स्वास्थ्य केंद्रों, सांदीपनि विद्यालय और जर्जर शासकीय विद्यालयों की मरम्मत जल्द पूरी करने के निर्देश दिये। प्रदेश में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत अब तक 1,21,392 घरों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। केंद्र सरकार द्वारा इसके लिए 847 करोड़ रुपए से अधिक का अनुदान दिया गया है। ऊर्जा विकास निगम के एमडी अमनवीर सिंह बैस ने बताया कि अच्छा काम करने वाले वेंडरों को सम्मानित किया जाएगा, जबकि लापरवाह

बैंडरों के खिलाफ कार्रवाई होगी। आकाशवाणी की सेवा के 90 साल पूरे होने के जश्न में आज नई दिल्ली में 3.5 किलोमीटर की मैराथन दौड़ आयोजित की गई। यह दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व बैंक होते हुए वापस आकाशवाणी भवन पर ही खत्म हुई। इसी तरह की एक दौड़ भोपाल स्थित आकाशवाणी के दफ्तर से भी सुबह आयोजित की गई। रेलवे ने स्वदेशी तकनीक से बनी कवच ट्रेन सुरक्षा प्रणाली को उत्तर रेलवे के अहम रूटों पर लगाने की मंजूरी दे दी है, जिस पर करीब 362 करोड़ रुपए खर्च होंगे। फिरोजपुर डिवीजन के 1000 किलोमीटर और जम्मू डिवीजन के 446 किलोमीटर रूट पर यह सिस्टम लगाया जाएगा, जिसमें जालंधर जम्मू तवी कटरा, बटाला पठानकोट और बनिहाल बारामूला जैसे महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। कवच एक स्वदेश निर्मित स्वचालित सुरक्षा प्रणाली है, जो खतरे की स्थिति में ट्रेन में अपने आप ब्रेक लगाकर टक्कर और दुर्घटना को रोकती है। राज्य शिक्षा केंद्र ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए बीएड, डीएलएड, एमएड समेत विभिन्न शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में प्रवेश की समय सारणी जारी कर दी है। इच्छुक अभ्यर्थी rsk.mponline.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसमें डीएलएड के लिए 15 मई से, बीएड के लिए 25 मई से और एमएड के लिए 1 जून से आवेदन शुरू होंगे। कुछ ही देर बाद आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला होगा। यह मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं कल रात लखनऊ में बारिश से बाधित मैच में लखनऊ सुपर जॉयंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से मात दी। मिचेल मार्श की शानदार बल्लेबाजी ने उन्हें मैन ऑफ द मैच का खिताब दिलाया। प्रदेश में एक बार फिर मौसम बिगड़ने वाला है। मौसम विभाग ने प्रदेश के उत्तरी व पूर्वी हिस्सों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छिंदवाड़ा और पांडुना में आज तेज आंधी के साथ ओले गिरने की प्रबल संभावना है, जिससे किसानों की फसल को नुकसान हो सकता है। वहीं छतरपुर, दमोह, पन्ना, सतना, रीवा और सीधी समेत कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 10 मई को गुना आएंगे और कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। प्रदेश भर में कल नेशनल लोक अदालत लगेगी, जहां बिजली बिल, बैंक रिकवरी, तलाक, सड़क हादसे और चेक बाउंस जैसे पुराने मामलों का आपसी सहमति से जल्द निपटारा किया जाएगा। अशोकनगर के प्रभारी मंत्री राकेश शुक्ला ने जिला अस्पताल का अचानक दौरा कर आईसीयू में भर्ती मरीजों का हालचाल जाना। आगरमालवा के कंपनी गार्डन में जिला बैठक हुई, जिसमें अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री, सांसद और संभाग प्रभारी शामिल रहे। शिवपुरी में जनगणना 2027 के काम में लापरवाही करने वाले 12 कर्मचारियों और अफसरों को नोटिस थमाया गया। शहडोल में वन विभाग तेंदुपत्ता तोड़ने वालों को जंगली जानवरों से बचाव के तरीके बता रहा है और अच्छे पत्ते तोड़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। ग्रामीणों के लिए पेश है कार्यक्रम ग्राम सभा।

0: ग्राम सभा सुनने वाले सभी पंच भैयन खान नोने भैया की राम राम पहुंचे। और एक बार फिर अपने पंच भैया बहनन के बीच में अपने नोने भैया लेके आए हैं आज को जो कार्यक्रम ग्राम सभा। और भैया निश्चित है कि जब हम आए हैं तो आज नोनी नोनी बातें हुई हैं, जरूरी बातें हुई हैं। और आज 8 मई है तो कौन कौन से ऐसे खास मौका रहे हैं कि जो 8 मई का भय है अपने पूरे भारत विश्व के अंदर। संगे संगे अपने पंचन का इंतजार रात है, शुक्रवार के दिन अपने मानस प्रवचन को उनके साथ लेके आए हैं काव्य पाठ और आज की सीख। तो ऐसी सब सारी बातें आज अपने पंच भैया बहन के बीच में ग्राम सभा में हुई है। लेकिन चर्चा अपन जो कर रहे थे आज 8 मई के दिन के लाने कर रहे थे, वो भैया कहो जाते कि 8 मई का जो उन्हें विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है मनाओ जाते। अपन और ने पंच भैया बहन ने देखो ये कि कहूं अपन और जाते हैं तो अस्पताल में कौन ऐसी विशेष जगह जो थोड़ी सी आपातकालीन स्थिति की जगह होती हो, तो अपन ने एक लाल रंग को निशान देखो ये धन को चिन्ह बनो देखो ये भैया वही कहा रेड क्रॉस कहो जाते। और जो निशान जोन है जो शांति व्यवस्था और सम्मान और सहायता के लाने इस्तेमाल करो जाते, खास तौर पे युद्ध के समय पे भी ई लाल रंग के निशान को बड़ो महत्व होते। और ई की स्थापना जोन करी हती बा करी थी हेनरी ड्यूनेंट ने जोन भैया ई के संस्थापक हते और जिन्हें विश्व को पहलो 1901 में विश्व नोबल शांति पुरस्कार से सम्मानित भी करोगे। तो और इनको मुख्य उद्देश्य जोन हतो वो अपने पंच भैया बहनन के लाने स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करावो है, कोनो प्रकार की कोनो परेशानी है, कोनो जीवन में कोनो प्रकार को संघर्ष चल रहा है या कोनो भी जरूरत है मानवता की सेवा जोन है इनके लाने इनको परम उद्देश्य तो। और बिना कोनो भेदभाव के, बिना कोनो जात पात के, बिना भेदभाव के साथ में मानवता की सेवा करवो इनको मुख्य उद्देश्य है। तो और जोन घायल व्यक्ति हैं, पीड़ित व्यक्ति हैं जिन्हें इलाज की जरूरत है या कोनो प्राकृतिक आपदाएं भी, चूंकि भैया अपन और इनके बीच में इस समय पे अपन देख रहे हैं कि बहुत प्राकृतिक आपदाएं भी अपने भारतवर्ष के अंदर का पूरे विश्व के अंदर कहूं ना कहूं चलती रहती हैं, ऐसी स्थिति में जोन है जे अपने संगी साथी इनके संगे उनका सहायता प्रदान करते। और कहो चाहिए कई बार भैया पहले तो अब महामारी बहुत समय से नहीं पहली है, कोविड के बाद से ईश्वर से कृपा रही अपन और इनके बीच में कि चलो कोविड के बाद कौन ऐसी महामारी नहीं आई है, लेकिन उनके पहले भी भैया महामारियों को प्रकोप जो है कई जगह पर रहू है। और ऐसे समय पर निस्वार्थ भाव से इनने बड़ी सहायता करी है इनके संयोजकन ने, सहायतन ने। और देखो भैया ओई की परंपरा भी आज अपने गांव में शहरन में अपन और देख रहे हैं जो स्व सहायता समूह है, छोटे छोटे अपनी जो है संघ बना लेते हैं, एनजीओ बना लेते हैं। तो जे भी भैया एक प्रकार को कहो चाहिए कि रेड क्रॉस सोसाइटी के अंदर ही कहूं ना कहूं से उनके साथ में उनसे प्रेरणा लेके जो उन्हें बने भाई हैं। तो ऐसी बहुत सारी चर्चाएं अपन लोगों के बीच में है। अपन मानस प्रवचन पंचन का सुनवाई वाले हैं, लेकिन तनक देर की बात।
1: ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉक्टर बी आर श्रीवास्तव के नेतृत्व में शुरू हुआ है एडवांस्ड एआई बेस्ड रेडियोथेरेपी सेंटर। सरकारी योजनाओं के तहत निशुल्क इलाज भी उपलब्ध है।
2: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, ग्वालियर।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: आए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: भैया रामचरितमानस में प्रताप भानु की जो कथा है उनको एक अपनो ही महत्व है, और ई महत्व के बारे में आज ई कथा के बारे में जो उन्हें अपन और इनका बता रहे हैं रविन्द्र कुमार मिश्रा जी जो ई कथा की प्रवचन करता है। तो सुनत है जो रामचरितमानस से एक मानस प्रसंग।

मानस के प्रेमियों, रामायण के प्रथम रचयिता श्रद्धा स्वरूप भवानी पार्वती सहित विश्वास स्वरूप भगवान भोलेनाथ का पावन स्मरण करते हुए जिन्होंने मानस का हिंदी अनुवाद कर जन जन तक पहुंचाया, ऐसे श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एवं श्री रामचरित के रसिक श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए आज की राम कथा में प्रवेश करें।

प्रेमियों, संसार में एक प्रसिद्ध कैकई देश है। वहां के राजा महाराज सत्य केतु के गुणों के सत्तु केतु थे, जो गुणों के भंडार अपार बलशाली। उन्होंने दो पुत्रों को जन्म दिया। उनके दो पुत्र हुए भानु प्रताप एवं अरिमर्दन। दोनों भाइयों में अपार प्रीति थी। राजा सत्य केतु ने बड़े पुत्र प्रताप भानु को राज्य सौंपकर भगवत भजन के लिए वन के लिए गमन किया। प्रताप भानु के राजा बनते ही पूरे देश में उनका नाम हो गया। उत्तम रीति से प्रजा पालन करने लगे। पूरा राज्य सुखी था। अनेकों पुराण सुने, सभी यज्ञ कराए। भानु प्रताप एक पूर्ण धर्मनिष्ठ राजा थे। एक बार कि चारे बारे बाजी बाज

राजा प्रताप भानु शिकार के बहुत शौकीन थे। एक दिन शिकार करने हेतु विंध्याचल के घने जंगल में पहुंच गए। अनेकों मृगों का शिकार किया। तभी उन्हें एक वराह दिखा। वह उसका वध करने हेतु उसका पीछा करते करते घने जंगल में चले गए। संध्या काल हो गया, प्यास से व्याकुल होने लगे। तभी उन्हें एक आश्रम दिखा। वहां एक मुनि भी दिखे। प्रताप भानु ने जिस राजा का राज्य छोड़ा लिया था वही जंगल में कपट मुनि का भेष धारण करके उनसे बदले की आग में जलता हुआ प्रताप भानु की ही प्रतीक्षा कर रहा था। उसने प्रताप भानु को पहचान लिया, किंतु प्रताप भानु उसे नहीं पहचान सके। घोड़े से उतर कर मुनि को प्रणाम किया, किंतु अपना नाम नहीं बताया। यह चतुरता की। कपट मुनि भी अनभिज्ञता जाहिर कर

कपट मुनि बोले, लगते तो तुम कोई राजा जैसे हो, लेकिन इस वन में अकेले कैसे आ गए? अब राजा के मन में भी कपट भाव आ गया, चतुर तो थे ही, बोले अरे नहीं, हम कोई राजा आजा नहीं है, एक प्रताप भानु नाम का राजा है, हम उसके मंत्री हैं, शिकार खेलने आए थे, रास्ता भटक गए, किंतु भाग्य से आप मिल गए। कपट मुनि बोले, कोई बात नहीं, तुम्हारा नगर यहां से 70 योजन पर है, अंधेरा भी हो गया है, यहीं विश्राम करो, सुबह चले जाना। रुक गए, सत्संग होने लगा। अब राजा ने आत्मा या परमात्मा की चर्चा नहीं की, नाम पूछा, उत्पत्ति पूछी। कपट मुनि बोले, मैं एकांत में इसलिए रहता हूं ताकि मुझसे कोई कुछ पूछे नहीं, मेरा नाम नहीं पूछे, फिर भी तुमने पूछ ही लिया, तो सुनो,

बोले हमारा नाम एकतन हुए। बोले बहुत से नाम सुने पर यह नाम पहली बार सुना, इस नाम का अर्थ तो बताएं। मुनि बोले जब यह सृष्टि उत्पन्न हुई थी तब मैं पैदा हुआ था, लेकिन तभी से अमर हूं, मरा नहीं, इसलिए मेरा नाम एकतन है। राजा प्रताप भानु चतुर तो थे ही, मन ही मन विचार करने लगे, पैदा हुआ मरा नहीं, जबकि गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु अटल है, इतना ही नहीं। कुछ पाता रहा जो सदा जग में, उसे आखिर में कुछ पाना पड़ा, पछताया नहीं जो कभी भी कहीं, उसे अंत समय पछताना पड़ा। कोई फूल न बाग में ऐसा खिला, खिलके न जिसे मुरझा।

और ये कहते हैं कि मैं अमर हूं, कभी मरा ही नहीं। विचार किया कि जब इनकी इतनी लंबी आयु है तो इनसे क्यों ना कुछ मांग लूं। प्रेमियों, अभी प्रताप भानु के मन में कपट उत्पन्न हुआ था, अब कामना उत्पन्न हो गई। अपना नाम कपट मुनि को बता दिया। महाराज, मैं ही राजा प्रताप भानु हूं। हां, मैं जानता हूं तुम राजा शत्रुकेतु के पुत्र हो। आपने कैसे जाना? तप से। अब तुम मांग लो क्या चाहते हो। राजा बोले कि जरा मरण दुख रहे ते तनु, समर जिते जन को, एक छत्र रिपुहीन मही राज कलप सत्य हो। वरदान क्या मांगा? हम कभी भी वृद्ध ना हो। बोले ठीक है, लेकिन तुम्हारी मृत्यु होगी। राजा बोले यह भी नहीं होना चाहिए। कपट मुनि बोले ए विमस्तु, ऐसे कह दिया जैसे मृत्यु इन्हीं से पूछकर आती हो। बोले हमें कोई युद्ध में पराजित ना कर सके, हम अजय हो जाएं, पृथ्वी पर केवल हमारा ही राज हो। कब तक? कल्प सत होए। बोले ए विमस्तु। अब मुनि बोले तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं, उनके क्रोध से कोई नहीं बच सकता। अतः ब्राह्मणों को छोड़कर बाकी काल भी तुम्हारे चरणों में नतमस्तक रहेगा, तुम्हारा किसी काल में नाश नहीं होगा। बोले बस आप इतना और बता दो कि ब्राह्मण मेरे वश में कैसे हो जाएंगे। प्रेमियों, ब्राह्मणों के कोप से स्वयं भगवान हरि डरते हैं।

उनको यह बस में करना चाहता है। ठीक भी है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। राजा को समझा बुझाकर कपट मुनि ने राजा के विनाश का पूरा प्रबंध कर दिया। आगे की कथा अगले प्रसंग में सुनिएगा, दर्शन करिएगा। आइए मानस के रचयिता भगवान भोलेनाथ का पावन स्मरण करते हुए उनकी कृपा प्राप्त करें। किस्से भोले भंडारी।

पंचो रामचरित मानस की बालकांड में एक दोहा है कि भूप प्रताप भानु बल पाई, भूम भई सब काम दुहाई, प्रजा सुखारी सब दुख हारी, सुंदर सब नर नारी सुधारी। तो भैया ऐसे जो नहते अपने राजा प्रताप भानु जते और उनकी आज कथा को विस्तारित वर्णन जो है हमारे प्रवचन करता है रविंद्र कुमार मिश्रा जी ने करो। तो और चूंकि शुरू से आज अपने कार्यक्रम में अपन और कह रहे थे कि कछु ना कछु चर्चा अपने बीच में अभी, तो भैया एक चर्चा जो है, चाहे चर्चा कह लो, सीख कह लो, नसीहत कह लो, भैया इका अपन और कई बार अपने परिवारन में देखो गो पंचो के पारिवारिक हिंसा जो है, कभू कभू अपन और देखो है कि अपन और गुस्सा में आके अपने बाल गोपालन के ऊपर हाथ उठा दिए थे, कभू अपनी जो धर्म पत्नी है कभू अपनी सेवा में लगी रहती हैं सारी चीजें हैं, कभू अपन ततोस बस उनके ऊपर हाथ उठा दिए थे, कोनो भी प्रकार को धक्का मुक्की कर रहे थे। तो भैया जब पारिवारिक हिंसा जो है इसे अपने पंचन का थोड़ा सो बच कर आने हैं भैया, जा मतलब कहो चाहिए कि परिवार के अंदर एक सामंजस्य होता है पत्नी को और पति के बीच के जो है अपने पंच भैया बहनन के बीच को एक सामंजस्य होता है जो पूरे परिवार का संगे लेके चलते है। यदि इस प्रकार की कोनो भी हिंसा अपने परिवारन के बीच में होते है तो भैया उसे परिवार उन्नति नहीं कर सकता है ना अपनों

0: कोनो भी मन जो है कामकाज में लगाता है, अपने जो बच्चा बड़े हो रहे हैं, जवान बच्चा हो रहे हैं, कान लगत के भैया जब लड़का की पाँव में बाप की चप्पलें आने लगती हैं तो कान लगत के भैया लड़का बड़ो हो जाते हो, कभू कभू अपन हो रहे हैं उनका मार दिए थे, पीट दिए थे, या कोनो भी प्रकार की धक्का मुक्की कर रहे थे, तो भैया अपन का ऐसो चाहने के उनका समझाए हैं, यदि उनने कोनो गलती करी है तो उनके बारे में उन्हें बताएं कि भैया अपन ने जहां गलती करी है और आगे ही गलती अपन उनका नहीं करने है। अच्छा कछु एक बात भी देखने के लाने आती है कि कई बार पंच बहने भी अपने पंच भैया के ऊपर जो उन्हें हाथापाई पे आ जाती है, काय से पंच भैया जो उन्हें नशाखोरी करके जो उन्हें अपने घर पहुंचाते हैं और कहो चाहिए कि बड़ी अमानवीय बातें जो उन्हें अपने घर करा था, तो निश्चित है कि भैया घर की शांति के लाने पंच बहने भी ऐसो जो उन्हें कहो चाहिए कि काम कर जाती है, लेकिन अपनी पंच बहनन का भी चाहने के भैया शांति से इन चीजन का जो उन्हें अपन औरन का बैठ के बात करके सुलझाओ चाहिए। घर की बातें घर के भीतर रहे, ना कि जो उन्हें कचहरी लो पहुंचे, थाने में पहुंचे कि भैया उनने हमारे संग मारपीट करी, उनने हमारे साथ में। अब देखो कहो चाहिए कि दहेज प्रथा वगैरह धीरे धीरे करके सब खत्म हो चली जा रही है, इन सब बातों को कोनो लाभ नहीं है, और कहो चाहिए कि आज हम एक अच्छी शिक्षा और नैतिकता के साथ में अपनो जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो अब जी पारिवारिक हिंसाएं जो उन्हें ईखा अपन औरन खा नहीं ले गए, कभों कभों जमीन जायदाद के बीच में भैया दो परिवारन के बीच में हिंसा हो जाते, तो भैया कोनो भी मामला है उनका संगे बैठ के हैं तो देखो भर भैया परिवार के सदस्य जुड़े हुए हैं, तो अपन लोगों का चाहने कि कोनो भी इस प्रकार की समस्या को समाधान जो है वो बैठ के सुलझाओ जा सका था, ना कि कोनो हिंसा से। और भैया महात्मा गांधी जो भारत के राष्ट्रपिता कहे जाते हैं, उनने अहिंसा का अपनो परम धर्म मानो तो, और पूरी वही अहिंसा के पाठ का लेके उनने पूरे भारत देश का जो स्वतंत्रता दिलाई, बड़े बड़े आंदोलन करे केवल अहिंसा के बल पे, कोई प्रकार की हिंसा नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ अनशन और अहिंसा के बल पे उनने इतने बड़े भारत देश का सैकड़न साल से जो अपना भारत देश गुलाम हतु में आजादी दिलाई। तो भैया जी तो घर परिवार की अपनी छोटी छोटी बातें हैं, इनका बैठ के सुलझाओ जा सकत है, कोनो भी प्रकार की हिंसा परिवार में हो वो परिवार की उन्नति के लाने अच्छो नहीं है, तो अपने सब पंच भैया बहनों से हम जो ही निवेदन करें कि भैया इस प्रकार की कोनो भी हिंसा में अपने संगी साथी भाग न लें, बैठ के जो भी आपसी तालमेल के साथ में अपना जीवन यापन करें, खुशी से जो अपने बीच में जो खुशियां हैं निश्चित रूप से परिवार की उन्नति भी हुई है। और एक अब लेके आ रहे हैं अपन और प्रेम नारायण शर्मा को एक काव्य पाठ, तो अपने पंच भैया इको काव्य पाठ को भी आनंद लें।
1: तो आइए हमारी पहली कविता गर्मी पर आधारित है। अरे जेठो मास की खरी दोपहरिया लू से बच के राने हैं, अब नाए माए नहीं जाने हैं। हाँ जेठ मास की खरी दोपहरिया इनसे बच के राने हैं, नाए माए नहीं जाने हैं। बहुत ही कठिन परत है घामो जो कहूं सूरज परवे सामो, बांध तोलिया ढाको तुम मो खाली पेट निकरने नैया, खाली पेट निकरने नैया, पानी पी तैराने हैं, अब नाए माए नहीं जाने हैं। जेठ मास की तपत दोपहरिया लू से बच के राने हैं, नाए माए नहीं जाने हैं। जो कहूं काम जरूरी होए तो अमिया को पनो निचोए, पी के पानी पी के पनो छाया में सोए, ओ ताती झकर लगत जी तन में, ताती झकर लगत जी तन में, बेतन सब झुलसाने हैं, नाए माए नहीं जाने हैं। जेठ मास की खरी दोपहरिया लू से

खरीं दुपरियां जलत अवासी, रोटी भी नहीं खाने बासी, केरे बात सबई से सांसी। रसगन्ना को पनो अमिया को, रसगन्ना को

जेठ मास की तपत दोपहरिया लू से बच के राने हैं, नाए माए नहीं जाने हैं। घर से निकलो सुबह या शाम, ठंडे में करो घर के काम, करो दोपहरिया में आराम। प्रेमी कठिन जेठ को महीना, प्रेमी कठिन जेठ को महीना, घर में समय बिताने हैं, नाए माए नहीं जाने हैं। जेठ मास की तपत दोपहरिया लू से

आइए, हमारी दूसरी रचना है जो पर्यावरण सुधार पर आधारित है। अब लगा के बिरछा पर्यावरण सुधारो, हाँ लगा के बिरछा पर्यावरण सुधारो, के वो है जे

बिरछा परया बरण सुधारो। दूषित वायु से पीड़ित सब वातावरण हमारो। हाँ दूषित वायु से पीड़ित भव वातावरण हमारो। बढ़ो प्रदूषण शहर गांव में, बढ़ो प्रदूषण।

पर्यावरण सुधारो। हरे भरे वृक्षन से पानी बरस जाते अवढारो। हरे भरे वृक्षन से पानी बरस जाते अवढारो। रुके कटाओ जमीन न कटवे जन धन को रखवारो। लगा के बिरछा पर्यावरण सुधारो। लगा के बिरछा पर्यावरण सुधारो। और हमारे पौधों से मिलत फूल फल और औषधियां होवे रोग निवारो। मिलत फूल फल और औषधियां होवे रोग निवारो। ओ प्रेमी पेड़ लगा के प्यारे, प्रेमी पेड़ लगा के प्यारे, सुखमय समय निकारो। लगा के बिरछा पर्यावरण सुधारो। लगा के बिरछा पर्यावरण सुधारो। लगा के बिरछा पर्यावरण सुधारो। आइए हमारी तीसरी रचना चेतावनी के रूप में जो चौकड़िया विधा में है। नर्तन पाके हरि सुमरेलो। नर्तन पाके हरि सुमरेलो। राम नामो चित धरेलो। हाँ हाँ राम नामो चित धरेलो। नर्तन पाके हरि सुमरेलो। जो नर्तन

जादे हिया मुश्किल से पाई, भाई कृपा जब हाथ में आई, प्रभु की बाह पकड़ लो। हाँ, प्रभु की बाहें पकड़ लो, सुनर तन पाके हरी सुमर लो। हाँ, नर तन पाके हरी सुमर लो। राम नाम की पाव

सत्संग करो सत्संगा, बैठ संत ढिंग करो सत्संगा। और इस पावन गंगा में दोई दोई जोर सपर लो दोई दोई जोर सपर लो, नरतन पाके हरी सुमर लो, नरतन पाके हरी सुमर लो। जगत पिता परमेश्वर स्वामी, जगत पिता परमेश्वर स्वामी, सब जानत वे अंतर्यामी, सब जानत वे अंतर्यामी। मोका है अबे सुधर लो मोका है अबे सुधर लो, सुनर

0: ਤੇ ਹੋ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਾਫਿਰ ਕੇ ਹੋ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਾਫਿਰ ਕੇ ਹੋ ਭਵ ਸਾਗਰ ਸੇ ਤਰ ਲੋ ਹਾਂ ਭਵ ਸਾਗਰ ਸੇ ਤਰ ਲੋ ਨਰਤਨ ਪਾਕੇ ਹਰੀ ਸੁਮਰ ਲੋ ਹਾਂ ਨਰਤਨ ਪਾਕੇ ਹਰੀ ਸੁਮਰ ਲੋ ਹਾਂ ਨਰਤਨ ਪਾਕੇ ਹਰੀ ਸੁਮਰ ਲੋ।
1: पंचो अब अपन सुन रहे थे प्रेम नारायण शर्मा से जो काव्य पाठ, और अपन तनक रुकत हैं और फिर अपने प्रोग्राम का आगे बढ़ाते हैं।
2: ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉक्टर बी आर श्रीवास्तव के नेतृत्व में शुरू हुआ है एडवांस्ड एआई बेस्ड रेडियोथेरेपी सेंटर। सरकारी योजनाओं के तहत निःशुल्क इलाज भी उपलब्ध है।
3: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, ग्वालियर।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

सुरक्षा सप्ताह जो कि जो है 8 मई से 12 मई के बीच में मनाओ जात है, और कहूं कहूं जो है 12 से 18 मई के बीच में भी मनाओ जात है। भैया कहन लगत है कि इकवी बारे में जो नीको संगठन है वो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा एक आयोजित एक 2 वर्षीय अभियान है, कार्यक्रम है। इमें अपने पंचन खां सड़क से सुरक्षा के बारे में जागरूकता देवे के लाने जो कार्यक्रम करो जाते हैं कि भैया पैदल चलवे के लाने अलग प्रकार की जो है व्यवस्था होते है, साइकिल से चलने वालन के लाने एक अलग व्यवस्था होते है, मोटरसाइकिल और बड़े वाहन का चलवे के लाने एक अलग व्यवस्था होते है, और जोन सड़क सुरक्षा में जोन जिम्मेदार जोन है लोग बाग होते हैं दुर्घटनाओं से कैसे बचो जा सकते है ई के बारे में भी जानकारी दी जाते। हम तो देखो पंचन से बहुत कहते हैं कि अपने बुंदेलखंड क्षेत्र के अंदर अपने पंचन की बड़ी खराब आदत है कि कान में उन्हें जो है ठेंटा घूस ले और गमछा बांध लो, संगे ऊपर हेलमेट लगा लो और बोर जोर से मोबाइल पे गाना लगा के और डर से मोटरसाइकिल से होने कर गए। भैया जब सबसे बड़ी गलती होते है कि ना पीछे आई वाले बांध दिखा रहे ना

कि अपने बुंदेलखंड क्षेत्र के अंदर अपनी पंचन की बड़ी खराब आदत है कि कान में उन्हें जो है ठेंटा घूस ले और गमछा बांध लो, संगे ऊपर हेलमेट लगा लो और बोर जोर से मोबाइल पे गाना लगा के और डर से मोटरसाइकिल से होने कर गए। भैया जब सबसे बड़ी गलती होते है कि ना पीछे आई वाली बांध दिखा रहे, ना आपका कोनू को हॉर्न सुनाई दे रहो, कोनू प्रकार की घटना दुर्घटना आपके अगल बगल हो रही है उनके बारे में भी आपका जानकारी नहीं लग रही है, तो हमें अपने पंचन से एक बात जरूर कहने हैं कि जोन पंच भैया ई प्रकार की काम करते हैं, भैया हेलमेट जरूरी है, आप अपने जरूर लगाएं, कैसे बिना ही के मोटरसाइकिल चलावो दुर्घटना का निमंत्रण देवे के बराबर है, तो अपन का अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। और देखो अब हो रही है चलवे की बेरा, तो पंचन का काल के कार्यक्रम बता जाए, काल अपने पंच भैया सुने लोक मंजरी श्रोताओं के फोन कॉल्स पर आधारित फरमाइशी बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम हुई है और प्रस्तुति हुई है रविंद्र कुमार प्रजापति जी की और छक्के छूटना जैसी जो आज की जो सीख थी वह पंचन का बता दें कि कैसे अपने भारत देश के जवानों ने ऑपरेशन सिंदूर में पिछले साल जो उन्हें अपने देश पे आतंकी हमला करने वालन की छक्का छोड़ा दे। भैया जब सबसे बड़ी बात जो रूथ है दुश्मन के छक्का छोड़ा वो भैया कोनो भी यदि आपके ऊपर इस प्रकार को कोनो कहो चाहिए कि आक्रमण करे या आपका उके जो है उके बचाव में यदि कोनो काम करने पड़े तो भैया उनको पूरी तत्परता से अपने पंच भैया जवाब दें, यही का कान लगत भैया छक्के छोड़ाना। अब हो रही है चलवे की बेरा तो पंचन से बदल ली जाए, पंचो राम राम।

0: भी मध्य प्रदेश है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में
2: नमस्कार श्रोताओं, सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुभा रोहतगी। इस सप्ताह की शुरुआत में हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे घोषित होने के बाद अब ध्यान सरकार के गठन पर केंद्रित हो गया है और वही है आज हमारी चर्चा का विषय, पश्चिम बंगाल में सरकार गठन की तैयारी, राजनीतिक गतिविधियां और चुनौतियां। इस मुद्दे पर अपने विचार साझा करने के लिए मेरे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर और संचिता गुहा और भाजपा प्रवक्ता किया घोष। आप सबका आकाशवाणी की सुर्खियों में कार्यक्रम में स्वागत है।
3: नमस्कार,
4: धन्यवाद।
2: आज कोलकाता में हुई भाजपा विधायक दल की बैठक के बाद भाजपा नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के अगले मुख्यमंत्री के रूप में शुभेंदु अधिकारी के नाम की घोषणा की। चलिए सुनते हैं गृह मंत्री ने क्या कहा।
5: भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्यों की एक मीटिंग यहां आहूत की गई है। उस मीटिंग में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे और श्री मोहन चरण मांझी जी को केंद्र की ओर से पर्यवेक्षक के रूप में यहां भेजा था। कुछ समय पहले ही चुनाव की प्रक्रिया पूरी हुई है। लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको पर्याप्त समय दिया गया मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं।
2: तो अभी हमने सुना कि अमित शाह जी ने शुभेंदु अधिकारी के नाम पर मुहर लगा दी जो कि पश्चिम बंगाल के अगले मुख्यमंत्री होंगे। मैं आप तीनों से जानना चाहूंगी, शुभेंदु अधिकारी के पक्ष में वो क्या कारक थे जिन्होंने उनको इस पद के लिए उपयुक्त बनाया। क्या जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं कि ये जो जनादेश मिला है इसको आप किस नजरिए से देखती हैं?
6: सबसे पहली बात ये है कि ये जो लड़ाई थी, मैं लड़ाई इसलिए बोल रही हूँ कि ये लड़ाई से किसी भी हद से कम नहीं था। लगातार ये कुशासन पश्चिम बंगाल में जो हुआ है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुई है और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर पूरा एक युवा पीढ़ी रस्ते में बैठ गया है। तो ये जो लड़ाई थी, ये लड़ाई एक दिन में तो नहीं हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह जो लड़ाई जो तृणमूल सरकार थी उनके वर्सेस

0: पश्चिम बंगाल के आम जनगण, उनका जनता ने इस बार तय कर लिया था कि तृणमूल को हटाना है और उनके सामने एकमात्र विकल्प था भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि आजकल देखिए इंटरनेट की जमाना है, हर जगह की खबर मिलती रहती है, जैसे कि लोगों को ये भी पता लगता है कि असम जैसे छोटे राज्य में भी इतना बड़े तादाद में इंडस्ट्री हो रहा है, तो लोगों को लगता है कि पश्चिम बंगाल में हमारे यहाँ क्या है, तस्करी है, राशन घोटाला बोलिए, शिक्षक की नौकरी को लेकर घोटाला बोलिए, तो ये तो पश्चिम बंगाल की संस्कृति नहीं है
1: जी।
0: तो लोगों ने इस बार तय किया था कि पश्चिम बंगाल से जो सरकार इनका बिल्कुल सुपड़ा साफ करना
1: जी। तो शेखर जी, वो कौन सी ऐसे कारक थे, कौन से फैक्टर्स थे जो शुभेंदु अधिकारी के फेवर में जिन्होंने काम किया?
2: अनुभव जी, आप देखिए पश्चिम बंगाल में जो लंबा सा एक मुहिम चला जिसका एक बड़ा चेहरा था शुभेंदु अधिकारी
1: जी,
2: पिछले चुनाव से पहले आए थे और उसके बाद जिस तरह नंदीग्राम में ममता को डिफीट किया और इस बार दोबारा भवानीपुर में, दक्षिण कलकत्ते के एक बहुत इंपॉर्टेंट इलाका है, वहां पे ममता को अपने गढ़ में जाके डिफीट करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी जीत है। और लगातार जिस तरह तृणमूल कांग्रेस की तरफ से जो राजनीतिक जो हिंसा चली आई है उसको मुकाबला करना, आपने देखा दो दिन पहले किस तरह घटना घटी
1: जी,
2: उनकी सेक्रेटरी को गोली मार के हत्या कर दी गई। तो इस तरह की जो कल्चर है, ये साइकिल ऑफ पॉलिटिकल वायलेंस जो हमने देखा है, खास करके पहले वामपंथी सरकार में था, इसके बाद में अभी तृणमूल के एरिया में भी एक प्रकार से हथियार बन गया, कुछ भी नहीं ऐसे ही चल रहा था मामला, केवल लोक कल्याण के काम पे कुछ स्कीम्स दे रहे थे और लोग के अंदर ये था कि अगर चुनाव बिना भय सुरक्षित रूप में अगर होगा तो जरूर वहां पे परिवर्तन आ सकता है। तो इस बार हमने देखा जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने जो व्यवस्था की जिसकी वजह से लोगों ने बिना डर घर से बाहर आके वोट किए। पहली बार जब SIR को ममता ने बड़ा मुद्दा बनाया उसको ने भी लोगों ने नकारा दिया, क्योंकि SIR के माध्यम से जितनी फर्जी वोटर्स घोस्ट वोटर्स भी निकल गए, पश्चिम बंगाल के जनता की जो आशाएं अपेक्षाएं उसको रिफ्लेक्ट करके इतना बड़ा मैंडेट मिला है भारतीय जनता पार्टी।
1: संचिता जी, आपसे भी ये पूछना चाहूंगी, वो कौन से ऐसे फैक्टर्स थे, कौन से ऐसे कारक हैं जो शुभेंदु अधिकारी के फेवर में, इनके पक्ष में काम कर रहे हैं?
3: शुभेंदु अधिकारी का जो पर्सनल जो फैक्टर है वो दो दो बार ममता बनर्जी को हरा चुके हैं
1: जी,
3: पर बीजेपी ऐसा पार्टी नहीं है, बीजेपी एक इंडिविजुअल के नाम पे नहीं चलता है, बीजेपी एक ऑर्गेनाइजेशनली ड्रिवन पार्टी है। जैसे शेखर जी ने बताया कि जिस तरह से इलेक्शन कंडक्ट किया है इलेक्शन कमीशन ने, वो तो बहुत ही, ये 15 साल में पहली बार नहीं 50 साल में पहली बार शायद फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए हैं। किनको वोट दिया है वो बड़ी बात नहीं है, पर वोट दे सकते हैं सबसे बड़ी फैक्टर थी जो ममता बनर्जी के खिलाफ का है। वो आजकल रेप मर्डर का असली खूनी जो थे वो तो कभी पकड़ा नहीं गए, तृणमूल को शायद लगा था कि लोग भूल गए हैं, वो कोई फैक्टर नहीं होगा, पर वो बहुत बड़ी फैक्टर थी, लोग कुछ भी नहीं बोलते हैं। पिछले साल मुर्शिदाबाद में जो वायलेंस हुआ, अप्रैल 2025 में जो वायलेंस हुआ, दैट वॉज अनदर लैंडमार्क इवेंट इन द हिस्ट्री, वो भी लोग भूले नहीं है
1: जी।
3: वक्फ बिल पास होने के बाद वेस्ट बंगाल में मुसलमान लोग जैसे हिंदुओं के घर जला दिए हैं वो कभी हम सोच भी नहीं कर सकते थे। और ये जो बंगाली अस्मिता, बंगाली अस्मिता जिसको जो मुद्दा बनाए थे ना ममता बनर्जी गवर्नमेंट ने कि जो बंगाली बोलते हैं वही इंडियन है, पश्चिम बंगाल के लोग और बांग्लादेशी उनको एक ही कर रहे थे, ये अच्छा नहीं लगा
1: जी, जी।
3: और सबको समझ में आ गया ये क्या हो रहा है और इस बार का वोट उसके खिलाफ है, ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ा फैक्टर है।
1: और इससे पहले के कार्यक्रम में आगे बढ़े, चलिए सुनते हैं कि विधायक दल की बैठक के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने और क्या कहा।
4: सबसे पहले मैं दो हाथ जोड़कर जिम्मेदारी के साथ बंगाल की जनता को कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहता हूं। जिस प्रकार का माहौल कम्युनिस्टों के समय से यहां पर बनाया जाता था, ममता जी ने इसको और गहरा तरीके से भय में परिवर्तित किया। वहां मत की अभिव्यक्ति लगभग असंभव थी, सैकड़ों उदाहरण हिंसा के, क्रूरता के, उसके बीच में भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता नरेंद्र मोदी पर भरोसा करकर बंगाल की जनता ने जो प्रचंड विजय हमें दी है इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।
1: मैं केया जी से अगला अपना सवाल करना चाहूंगी कि अब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो आपकी सरकार की क्या प्राथमिकताएं होंगी और कौन सी चुनौतियां हैं जिनका आपकी सरकार को अगले कुछ सालों में सामना करना पड़ेगा?
0: हमारे सामने चुनौतियां तो बहुत है, क्योंकि सिर्फ ये 15 साल नहीं, इसके पहले 3.5 दशक का, मतलब करीब 50 साल का जो अपशासन पश्चिम बंगाल में हुआ है, जब सारा देश आगे बढ़ रहा था हम बंगाली हम लोग पीछे जा रहे थे, तो कोई

0: इंडस्ट्री नहीं है, भारी इंडस्ट्री नहीं हमारे राज्य में। यहाँ पर महिलाओं की सुरक्षा, तो जैसे हमारे संकल्प पत्र में हमने वादा किया है कि पहले जो मंत्रिसभा मंत्रिमंडल की बैठक होगा उसमें आयुष्मान कार्ड सबके लिए हम लोग अवेलेबल करेंगे, वो हमारे सबसे जो पहला वादा वो है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी ये प्रतिश्रुति दे के गए हैं, पहला बात। दूसरी बात यह कि 45 दिन के अंदर जो सेवन पे कमीशन पश्चिम बंगाल का जो पेंडिंग है वो बैठाएंगे, क्योंकि राज्य सरकारी जो कर्मचारी है उनका डीए इतने सालों से पेंडिंग है। ममता बनर्जी जी वो जनता के पैसा, टैक्स की पैसा खर्च करके वो डीए बंद करवाने के लिए कहां कहां नहीं गई, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हर जगह चली गई। तो ये हमारा वादा है, ये पूरा करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जॉब क्रिएशन, क्योंकि पश्चिम बंगाल में यहाँ पर इतना ब्रेन ड्रेन हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जॉब नहीं है
1: जी।
0: वो आप माइग्रेंट लेबरर बोलिए या व्हाइट कॉलर जॉब, क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ पर कौन जॉब करेगा। तो वो हमको वापस लाना है। हमारा बंगाल के जो टैलेंट है, इतने अच्छे अच्छे जो लोग हैं उनको वापस बंगाल में लाना है, जॉब क्रिएशन है। क्योंकि पश्चिम बंगाल में फिलहाल जो अर्थनीति है, जीडीपी है, बहुत नीचे, सारा देश के मुकाबले इतना बड़ा राज्य है उसके मुकाबले बहुत नीचे चला गया। तो चुनौती तो बहुत सारे हैं और एक दिन में तो नहीं होगा ये, जो कोई एक महीना में भी नहीं होगा, लेकिन हाँ ये जो हम एक एक कदम हर दिन के लिए हमारे लिए चैलेंज होगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है मेरी सरकार पे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो बार बार बोल के गए हैं कि डबल इंजन की सरकार। और आपको तथ्य मैं दे दूं कि ऑलरेडी केंद्रीय सरकार 2,900 करोड़ रुपए का एक मूव जो है हमारे यहाँ ग्रांट किया है, कि पश्चिम बंगाल की जो हम लोग पीछे रह गए थे उसको थोड़ा सा पैरिटी लाने के लिए ये राशि नव निर्वाचित पश्चिम बंगाल सरकार को दी जाएगी।
1: शिखर जी, आप इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे, जब हम चुनौतियों की बात करते हैं कि पश्चिम बंगाल की जो अगली जो सरकार है उसके सामने किस तरह की चुनौतियां होंगी?
2: बिल्कुल अनुभव जी, वहाँ पे सबसे बड़ी बात है 15 साल के बाद सुशासन का शुरुआत होगा
1: जी,
2: यानी गुड गवर्नेंस। और प्रधानमंत्री की तरफ से यही बड़ी गारंटी है कि जो जो केंद्र के बड़े कार्यक्रम जो है, वो पीएम आवास योजना हो, आपके जल जीवन मिशन हो, जितने कार्यक्रम को जो ममता ने इम्प्लीमेंट नहीं किया और इम्प्लीमेंट होने नहीं दिया, या आयुष्मान भारत हो, ऐसे कई कार्यक्रम को राजनीतिक कारण से वहां पर रुकावट डाली थी ममता जी ने, वो सारे चीजें अभी हट जाएगा। अब बंगाल भी राष्ट्रीय जो एक जर्नी चल रही है विकसित भारत के लिए उसमें शामिल हो जाएंगे, खास करके इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, मीडियम स्केल इंडस्ट्री। देखिए, एक पैसा भी वहां कोई भी इन्वेस्टमेंट की कोई भी ये नहीं थी, स्कोप ही नहीं थी, क्योंकि ऐसा एक शासन था, लोगों को डर था भाई पैसा डालो तो पहले टोलबाजी होगी यानी कटबनी होगी। देखिये, पहले से बिगड़ा हुआ था वामपंथी सरकार के समय, 34 ईयर्स जो वहां पे वामपंथी की सरकार, चीजें बहुत बिगड़ी थी, सबको पता है। उसके बाद जब बुद्धदेव भट्टाचार्य के नेतृत्व में कुछ परिवर्तन लाने की कोशिश किए, तब उसको विरोध करके ममता ने बड़ा ये छेड़ा कैंपेन, और जिसके वजह से ममता को फिर मैंडेट मिली, ममता ने चीजों को और बिगाड़ा। और आज एक परिस्थिति आ गई है बंगाल में, नौजवान के लिए सबसे बड़ी चीज नौकरी चाहिए, इसीलिए आप देखेंगे सारे बंगाल के जो हमारे बच्चे हैं जो शिक्षा लेकर आते बाहर, सबको बाहर जाना पड़ रहा है। ये चीजों पर एक रोक लगेगी, जितनी जल्दी वहां पे इंडस्ट्री के छोटे बड़े जो भी उद्योग शुरू हो सकता है उसका होगा। और सबसे बड़ी बात, लॉ एंड ऑर्डर एस्टेब्लिश होगा, क्योंकि अभी तक ऐसा एक रूल चल रहा था कि शासन और पार्टी और सरकार, पुलिस, कोई फर्क नहीं था, सब कुछ पार्टी के दादा तय करते थे और आपस में भी लड़ते थे इलेक्शन के लिए। देखिए, एक चीज बताना चाहता हूं, पश्चिम बंगाल के भ्रष्टाचार को भी हमें समझना है, इतने सालों से क्या हो रहा था, क्या भ्रष्टाचार होता है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट होता था उसको कमीशन ले लेते, यहाँ पे प्रोजेक्ट तो होता ही नहीं है, या प्रोजेक्ट में जो भी पैसे वो खा जाते थे, और लोक कल्याण के लिए भी जो पैसा खर्चा होता था उसमें भी पैसे खाते थे। तो ऐसी एक हालत बन गया है जो उसको पूरा पूरा खत्म करके, और अभी जो नया गवर्नमेंट बनेगा उस पर आप देखेंगे बहुत चीजें होंगी, और सबसे बड़ी बात शांति कायम हो जाएगी, पॉलिटिकल वायलेंस की बिल्कुल बंद, और तीसरी बात लोगों को एक सुरक्षा महसूस करेंगे, यह सबसे बड़ी बात है।
1: संचिता जी, आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि इस बार तृणमूल कांग्रेस को केवल 80 सीटें ही मिल पाई हैं, जो कि 2021 में उसके द्वारा जीती गई 2015 सीटों के मुकाबले में बहुत कम है, आधे से भी कम है, फिर भी तृणमूल कांग्रेस जो है वो राज्य की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई है। तो नतीजों के बाद जो जिस तरह के घटनाक्रम हमने देखे हैं उसे देखते हुए आप राज्य की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस और इसकी प्रमुख ममता बनर्जी की भूमिका को किस तरह से देखती हैं?
3: देखिए, ममता बनर्जी तो अभी तक अपनी हार स्वीकार कर ही नहीं पाई, अभी तक अपने आप को चीफ मिनिस्टर बोल रहे हैं, जबकि गवर्नर ने असेंबली डिसॉल्व कर दिया है उसके बाद भी। तो आई थिंक ये बात उनके दिमाग में थोड़ा बैठने में टाइम

0: लगेगा। और जो वो बोल रहे हैं कि वो अभी पूरा भारतवर्ष घूम घूम के बीजेपी को सारे हटाएंगी, उसके बारे में तो क्या ही बोले। तो तृणमूल कांग्रेस से अभी टोन जैसे आ रहे हैं लीडर से, मेरे ख्याल से कुछ लोग बीजेपी ज्वाइन करना चाहते हैं। अब बीजेपी उनको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं वो तो बीजेपी की बात है, और कुछ लोग तृणमूल टीएमसी में रह जाएंगे। जितना तक मैंने सुना है कि बहुत सारा टीएमसी के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट अपने आप में, जो एक दूसरे से लड़ाई जो चल रही थी, वो सब एकदम बाहर आ रही है, ये और भी बाहर आती जाएगी। हम आपको एक एग्जाम्पल देना चाहते हैं कि जैसे सद्दाम हुसैन ने जब कुवैत इन्वेड किया था और अमेरिका ने उनको हटा दिया, उन्होंने सारे जो ऑयल वेल था, तेल की खनी, आग जला दिए। तो सद्दाम हुसैन हट जाने के बाद भी वो आग जलती रही। तो ममता बनर्जी भी ऐसा ही कुछ करना चाह रही है।
1: शेखर जी, जो भाजपा की इस ऐतिहासिक जीत ने पश्चिम बंगाल के राजनीतिक परिदृश्य को किस तरह प्रभावित या फिर आप कहिए कि परिवर्तित किया है, क्योंकि पश्चिम बंगाल आज तक पारंपरिक रूप से वामपंथ का गढ़ रहा है, तो पश्चिम बंगाल की राजनीति और पूरे भारत की अगर हम बात करें तो इंडिया ब्लॉक जो है, भाजपा की जीत ने उसको किस तरह से प्रभावित किया है?
2: देखिए, बहुत बड़ा फर्क यही पड़ेगा, हमारे राजनीति में सुशासन एक माइलस्टोन बन गया है कि कोई पार्टी की हार या जीत इस ये पे मेजर किया जाएगा, वो लोगों के लिए क्या कर सकते हैं, गरीबों के लिए क्या कर सकते हैं, किसान के लिए क्या कर सकते हैं, महिला के लिए क्या कर सकते हैं। एक प्रकार से जो राजनीतिक हिंसा पर भी एक बड़ी रोक लगेगी और बड़ी मैसेज जाएगी। आपने सही कहा कि बीजेपी के लिए अपना एक इमोशनल जर्नी है। पहले जनसंघ की जो फाउंडर जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनके प्रति एक बहुत बड़ा ऑनर है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो कल्पना थी सोनार बांग्ला का, आज उस सपना को साकार करने में पहला कदम है।
1: शेखर अय्यर जी, संचिता गुहा और केया घोष, आपने आकाशवाणी की सुर्खियों में कार्यक्रम में शामिल हुई और पश्चिम बंगाल में सरकार गठन की जो तैयारियां हैं उसके परिप्रेक्ष्य में राजनीतिक गतिविधियों और चुनौतियों पर हमसे बातचीत की, इसके लिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद।
1: श्रोताओं, ये कार्यक्रम आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: सुर्खियों में
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर्खियों में, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य
5: ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत है फिल्म कुदरत से लता मंगेशकर की आवाज में। गीत मजरू का है, संगीत राहुल देव बर्मन का।

0: ना जिया।
1: कुदरत फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। आइए आगे सुनते हैं थोड़ी सी बेवफाई। इस फिल्म का गीत अनवर और सुलक्षणा पंडित की आवाज में, गीत गुलजार का और संगीत खय्याम का।

थोड़ी सी बेवफाई। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे अनवर और सुलक्षणा पंडित की आवाज में। आइए अब सुनते फिल्म कर्ज का गीत मोहम्मद रफी व साथियों की आवाज में। गीत आनंद बख्शी का और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

फर्ज फिल्म का गीत अभी आपने सुना, मोहम्मद रफी व साथियों की आवाज में। गीत आनंद बख्शी का था और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम को। फिल्म है एक दूजे के लिए, गीत रचना आनंद बख्शी की है और संगीत एक बार फिर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम को फिल्म एक दूजे के लिए। मैं कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए लता मंगेशकर और किशोर कुमार को। फिल्म शक्ति, गीत आर डी बर्मन का, गीत आनंद बख्शी का है और संगीत आर डी बर्मन का।

0: शक्ति फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ और प्रसार भारती की न्यूज ऑन AIR ऐप पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। 8:45 हो रहे हैं, समाचार संध्या, उसके उपरांत News@9 और उसके उपरांत स्पॉटलाइट अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया हमारे अनुप्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, IUML, VCK और वामपंथी दलों का समर्थन मिला, कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की, राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा। भारत और सिंगापुर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सूचना साझा करने में तेजी लाने पर सहमत। और चीन में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर रिकर्व स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को चुना गया और श्री अधिकारी को निर्विरोध विधायक दल का नेता चुना गया।
2: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
1: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है।
2: 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हम सब के लिए बहुत आनंद है। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है।
1: शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्शों पर राज्य का विकास करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: संकेत मिल गया था कि भवानीपुर में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनाव में शिकस्त देने वाले

0: पूर्व अधिकारी बंगाल की अगले मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे बड़े उम्मीदवार है। आखिरकार वही आत्काल सच साबित हुए। परिषदीय दल के नेता चुने जाने के बाद शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ लेकर लोक भवन गए। उनके साथ दिलीप घोष, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी सहित दल के कई केंद्रीय और राज्य नेता मौजूद थे। वहाँ राज्यपाल आर एन रवि के पास शुभेंदु ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। संवैधानिक परंपरा के पालन करते हुए बहुमत का दावा पेश किया गया और इसके साथ ही काल ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए राज्यपाल को औपचारिक निमंत्रण भी दिया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच दिन रात एक करके वहाँ तैयारी के काम चल रहा है। आकाशवाणी के लिए कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य।
1: तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, आईयूएमएल, वीसीके और वामपंथी दलों का समर्थन मिल गया है। वे कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 51 वर्षीय जोसेफ विजय ने आज तीसरी बार राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर से भेंट कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। एक रिपोर्ट।
2: दो दिनों तक चली बैठकों के बाद तमिल गवेत्री कड़गम टीवीके पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, विदुथलाई चिरुथिगल काची, वीसीके और आईयूएमएल से समर्थन पत्र प्राप्त हो गए हैं। पार्टी ने सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 विधायकों का समर्थन हासिल कर लिया है, जिससे उसे स्पष्ट बहुमत मिल गया है। अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय अब राज्य के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उनका शपथ ग्रहण समारोह जल्द ही चेन्नई में आयोजित होने की संभावना है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में निर्णय राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार लगातार तीसरी बार मंगलवार को शपथ लेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डेटा दिए गए। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटे के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध कराया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। न्यायालय की पीठ ने हाल ही में मादक पदार्थों की लत के कारण एक महिला के पांचों बेटों को खोने की घटना का संज्ञान लिया। पीठ ने कहा कि मादक पदार्थों के खतरे से निपटने के लिए केंद्र सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक हो गया है। मुख्य न्यायाधीश ने राज्य और केंद्र की एजेंसियों से मादक पदार्थों के खतरे को जड़ से खत्म करने को कहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA द्वारा जांच किए जा रहे 10 से 15 लंबित मामलों की सुनवाई के लिए कम से कम एक विशेष अदालत गठित की जाए। न्यायालय ने कहा कि विशेष न्यायालयों का गठन एक महीने के भीतर किया जाना चाहिए। मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए शीर्ष न्यायालय ने निर्देश दिया कि कोई अन्य मामले विशेष न्यायालय को नहीं सौंपे जाएंगे और सुनवाई प्रतिदिन के आधार पर की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का सशक्तिकरण और सुरक्षा केवल सीमाओं की रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज, पर्यावरण और नागरिकों की सुरक्षा से भी जुड़ी है। नई दिल्ली में तिरंगा पर्वतीय बचाव दल के 10 वर्ष होने पर एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने दल के कार्यों और उपलब्धियों का उल्लेख किया।
2: तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू के लोग वो हैं जिनकी उपस्थिति हमारी सेनाओं को संबल प्रदान करती है। आपने सैनिकों के मनोबल को बढ़ाया है। आपने हिमालयी क्षेत्र में रहने वाले समुदायों को यह एहसास कराया है कि वे अकेले नहीं हैं। TMR जैसे संस्थानों का कार्य केवल रेस्क्यू तक सीमित नहीं है। आप इनडायरेक्टली बॉर्डर स्टेबिलिटी, कम्युनिटी कॉन्फिडेंस और नेशनल रेजिलियंस को भी मजबूत कर रहे हैं।
1: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तथा वायुसेना ने ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज

0: संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल परीक्षण किया है। यह अत्याधुनिक कम लागत वाली प्रणालियों का उपयोग करने वाला पहला ग्लाइड हथियार है। एक रिपोर्ट।
1: यह भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है जो किसी भी सामान्य हथियार को घातक और सही दिशा में सटीक मार करने वाले हथियार में बदलने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर इस एडवांस रेंज वेपन सिस्टम तारा का सफल परीक्षण किया गया। हैदराबाद स्थित डीआरडीओ की रिसर्च सेंटर इमारत ने डीआरडीओ के अन्य प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर इसे डिजाइन और विकसित किया है। तारा प्रणाली में अत्याधुनिक लेकिन कम लागत वाली तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। भारत की यह उपलब्धि स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता और अत्याधुनिक सैन्य तकनीक विकसित करने की दिशा में बढ़ती ताकत को दर्शाती है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि को भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में भूमि संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तीसरे चरण की समीक्षा करते हुए श्री चौहान ने कहा कि आधुनिकीकरण के प्रयासों से भूमि संबंधी सेवाओं को पारदर्शी, कुशल और परेशानी मुक्त बनाया जाएगा। इससे नागरिकों और राजस्व अधिकारियों की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने बताया है कि पिछले वर्ष अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे की अंतिम जांच रिपोर्ट एक महीने में जारी होने की संभावना है। गुजरात में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से जांच कर रहा है।
2: एक साल पूरा होने वाला है और वो इन्वेस्टिगेशन अभी बहुत ही सक्षम से चालू है। जब भी ये इन्वेस्टिगेशन होता है और खास करके इंटरनेशनल वाला फ्लाइट है, इसको कोई भी क्वेश्चन कर सकता है। जो रिपोर्ट आता है इट विल बी अप फॉर स्क्रूटनी, कोई भी देश कर सकता है, कोई भी इंस्टीट्यूशन देश का कर सकता है। तो हमें बहुत ही सीरियसनेस के साथ, फेयरनेस के साथ, ट्रांसपेरेंट नेचर के साथ हमें इन्वेस्टिगेशन करना है।
0: सरकार ने कहा है कि देशभर में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें।
3: पिछले दो दिन में भी तो हमने लगभग 97 लाख घरों को एलपीजी सिलेंडर पहुंचाए और इसके अगेंस्ट जो बुकिंग थी लगभग 87,66,000 थी। जो हमारी कमर्शियल सप्लाई है अभी भी वो 70% पर है, लेकिन पिछले दो दिन में 15,400 टन से अधिक कमर्शियल एलपीजी की सेल हुई है। पिछले दो दिन में 1,11,000 से अधिक 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल हुई।
0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल संयुक्त अरब अमीरात का आधिकारिक दौरा किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। भारत और सिंगापुर ने रणनीतिक साझेदार के रूप में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए द्विपक्षीय सहयोग के महत्व पर बल दिया। आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने के लिए गठित संयुक्त कार्य समूह की 5वीं बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। संयुक्त कार्य समूह ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा करते हुए उसे कतई बर्दाश्त न करने की नीति दोहराई। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और ट्रिनिदाद टोबैगो के संबंध इतिहास, मानवीय संपर्क और साझा आकांक्षाओं का अनूठा संगम है। ट्रिनिदाद टोबैगो के अखबार में एक लेख में विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और पिछले 5 वर्षों में यह लगभग दोगुना होकर अब $35 करोड़ तक पहुंच गया है। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को आयोजित इस पर्व में शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
4: वर्षा इस आयोजन के प्रमुख आकर्षण रहेंगे। आध्यात्मिक अनुष्ठानों के पश्चात प्रधानमंत्री प्रभास पाटन के सद्भावना मैदान में एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बार बार हुए विनाशकाली हमलों के बावजूद सोमनाथ मंदिर आज भी स्वाभिमान और साहस के प्रतीक के रूप में अड़िग खड़ा है। गौरतलब है कि 75 वर्ष पहले 11 मई को ही भारत के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने इस पुनर्निर्मित मंदिर का उद्घाटन किया था। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: गृहमंत्री अमित शाह रविवार को बाढ़ और लू से निपटने की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता नई दिल्ली में करेंगे। बैठक में बाढ़ के पूर्वानुमान और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ आपदाओं, विशेष रूप से बाढ़ और लू के चुनौतियों से निपटने की तैयारियों पर भी चर्चा होगी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म

0: दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पैरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। आयोग की अध्यक्ष विजय राहटकर ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। इनमें दुष्कर्म, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अन्य गंभीर अपराधों के मामले में दोषी व्यक्तियों के लिए पैरोल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की जाएगी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
1: देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में 1% से अधिक की तेजी देखी गई। सेंसेक्स 77,328 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 24,176 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 की तुलना में 24 पैसे कमजोर होकर ₹94.48 के स्तर पर बंद हुआ।
0: चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में रिकर्व तीरंदाज सिमरनजीत कौर और कंपाउंड तीरंदाज साहिल जाधव व्यक्तिगत स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। सिमरन ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की फोंग यू जू को

0: 94 रुपए और 48 पैसे के स्तर पर बंद हुआ।
1: चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में रिकर्व तीरंदाज सिमरनजीत कौर और कंपाउंड तीरंदाज साहिल जाधव व्यक्तिगत स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। सिमरन ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की फोंग यू जू को और साहिल ने शूट ऑफ में ऑस्ट्रिया के निको विनर को हराया। भारत की महिला फुटबॉल टीम AFC अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। उधर दिल्ली में IPL क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली कैपिटल्स ने 18 ओवर में 5 विकेट पर 126 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, VC के IUML और वामपंथी दलों का समर्थन मिला, कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा। भारत और सिंगापुर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सूचना साझा करने में तेजी पर सहमत। और चीन में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर रिकर्व स्पर्धा के सेमीफाइनल में। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: तमिजगा वेतरी कसगम टीवी के सी जोसेफ विजय को कल सुबह 11 बजे तमिलनाडु के वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाया जाएगा। इससे कबल आज टीवी के चीफ ने गवर्नर राजेंद्र आर्लेकर से मुलाकात की और इत्तेहादी पार्टियों की हिमायत के दस्तावेजात पेश करके सरकार तश्कील देने का दावा पेश किया। 4 मई को असेंबली इंतखाबात के नतीजे आने के बाद से उनकी गवर्नर के साथ तीसरी मीटिंग थी। हमारे नुमाइंदे ने खबर दी है कि सीपीआई सीपीआईएम बीसीके और आईयूएमएल ने टीवीके को अपनी हिमायत दी है। इसके साथ ही इत्तेहाद अब असेंबली में मतलूबा तादाद की हिमायत रखता है जो अक्सरियत से ज्यादा है। टीवीके के 107 अरकान कानून साज असेंबली है कांग्रेस के 5 जबकि वीसीके सीपीआई और सीपीआईएम नीज आईयूएमएल के 2-2 अरकान कानून साज असेंबली हैं। टीवीके के सरबरा ने दावा किया कि अब उन्हें 120 अरकान कानून साज असेंबली की हिमायत हासिल है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: आज टीवीके पार्टी के लिए एक बहुत अहम दिन था, हालांकि वो अक्सरियत के साथ सरकार तश्कील देने के लिए मतलूबा तादाद हासिल करने में कामयाब रही। टीवीके की हिमायत करने वाले अफराद सड़कों के दोनों अतराफ बड़ी तादाद में ढोल ताशे बजाकर अपने मनपसंद लीडर को देखने के लिए मौजूद थे। फिल्म सरकार ब्लॉकबस्टर के हीरो हलफ लेने के बाद रियासत के वजीर आला बन जाएंगे। नामजद वजीर आला सी जोसेफ विजय लाल तिलक लगाए हुए थे, नीले रंग की जीन्स पहने हुए थे और उन्होंने बाएं हाथ पर लाल धागा बांधा हुआ था। उनका यह रूप इससे कबल के वजीर आला के मुकाबले में कतई मुख्तलिफ है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फुरकान खान।
0: सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में मनशियात की बढ़ती हुई लानत पर तशवीश का इजहार किया है। रियासत के जरिए मनशियात की रोकथाम कैसे की जाए, इस सिलसिले में अदालत ने बुनियादी तब्दीली लाने पर जोर दिया और कहा कि इंसानी अमवाद की सूरत हाल तशवीशनाक है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची ने एक हालिया वाकये का हवाला दिया जिसमें एक मां ने अपने सभी 5 बच्चों को मनशियात की लत का शिकार होने के सबब खो दिया। बेंच ने कहा कि मनशियात की लानत इस हद पर पहुंच गई है कि जहां मरकजी हुकूमत की मदाखलत जरूरी हो गई है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने रियासत और मरकजी एजेंसियों से मनशियात की लानत के मुकम्मल खात्मे के वाहिद मकसद के साथ काम करने के लिए कहा। बेंच ने पंजाब पुलिस की कहते हुए नुक्ताचीनी की कि वो शोहरत के लिए छोटे जराइम के मुर्तकिब अफराद को पकड़ने पर तवज्जो मरकूज कर रही है जबकि मनशियात की नाजायज तिजारत करने वाले बड़े मुजरिम आजाद घूम रहे हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज कहा कि मुल्क की बाख्तियारी और सलामती सरहदों की हिफाजत तक ही महदूद नहीं है बल्कि ये मुआशरे माहौलियात और शहरियों की सलामती से भी वाबस्ता है। नई दिल्ली में भारतीय फौज के साथ पहाड़ी इलाकों में बचाव कार्रवाई से मुतालिक मुहिम तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू के 10 साल मुकम्मल होने की एक तकरीब से खिताब करते हुए जनाब सिंह ने जोर देकर कहा कि एक बाख्तियार भारत वो है जहां सरहदें महफूज हों, समाजी बिरादरियां पुरएतमाद हों और आफात के वक्त हरेक की जिंदगी की हिफाजत यकीनी हो। जनाब सिंह ने मजीद कहा कि हिमालय जैसे हसास और दूरदराज खित्तों में तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू महज बचाव कार्रवाई तक महदूद नहीं है बल्कि मुल्क की मुसल्ला अफवाज मकामी बिरादरियों के भरोसे और कौमी पायदारी के लिए एक मजबूत सुतून की हैसियत रखता है।
2: तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू के लोग वो हैं जिनकी उपस्थिति हमारी सेनाओं को संबल प्रदान करती है। आपने सैनिकों के मनोबल को बढ़ाया है, आपने हिमालयी क्षेत्र में रहने वाले समुदायों को यह एहसास कराया है कि वे अकेले नहीं हैं। पीएमआर जैसे संस्थानों का कार्य केवल रेस्क्यू तक सीमित नहीं है, आप इनडायरेक्टली बॉर्डर स्टेबिलिटी, कम्युनिटी कॉन्फिडेंस और नेशनल रेजिलियंस को भी मजबूत कर रहे हैं।
0: हुकूमत ने कहा है कि मुल्क भर में घरेलू एलपीजी की सप्लाई मुस्तहकम है और किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर की जानिब से एलपीजी का जखीरा खत्म होने की कोई इत्तला नहीं है। नई दिल्ली में एक बैन वजारती मीटिंग में खिताब करते हुए पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत में सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने कहा कि हुकूमत की यह कोशिश है कि घरेलू सारिफिन को गैस की कोई किल्लत न पेश आए और मगरबी एशिया में बदलते हुए हालात के पेश नजर कीमतें मुस्तहकम रहें। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 2 दिनों में 87 लाख गैस बुकिंग हुई जिनमें से 57 लाख गैस सिलेंडर सारिफिन तक पहुंचा दिए गए। ये आकाशवाणी है। भारत और सिंगापुर ने अहम शराकतदारों के तौर पर दहशतगर्दी का मुकाबला करने में बाहमी तआवुन की अहमियत पर जोर दिया है। भारत और सिंगापुर के दरमियान दहशतगर्दी और जराइम से मुकाबला करने से मुतालिक मुश्तरका वर्किंग ग्रुप की 5वीं मीटिंग गुज़िश्ता रोज नई दिल्ली में मुनक़िद हुई। मुश्तरका वर्किंग ग्रुप ने सरहद पार की दहशतगर्दी समेत हर तरह और हर शक्ल में दहशतगर्दी की मुकम्मल तौर पर और सख्ती के साथ मजम्मत की, नीज दहशतगर्दी के तहत सिफर बर्दाश्त के उसूल का इआदा किया। JWG ने दहशतगर्दों और अक़वाम-ए-मुत्तहिदा

0: टू द पेरोल फ्रेमवर्क पर गहरी तश्वीश का इजहार किया। भारत की सिमरनजीत कौर आज शंघाई में खेले गए तीरंदाजी आलमी कप स्टेज टू में खवातीन के रिकर्व इंफरादी मुकाबले के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिमरनजीत कौर ने क्वार्टर फाइनल में अपनी चीनी ताइपाई हरीफ फेंग यू जू को सीधे सेटों में 0 के मुकाबले 6-0 से शिकस्त देकर अपने पहले वर्ल्ड कप तमगे से सिर्फ एक जीत की दूरी पर पहुंच गई हैं। अब सेमीफाइनल में सिमरनजीत कौर का मुकाबला आलमी नंबर एक जनूबी कोरिया की किम श्योंग से होगा। आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। सुवेंदु अधिकारी मगरबी बंगाल के पहले बीजेपी के वजीर आला होंगे। हलफ बरदारी की तकरीब कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगी। टीवीके के सरबराह सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, वीसीके, आईयूएमएल और बाएं बाजू की पार्टियों की हिमायत हासिल हो गई है। वो कल तमिलनाडु के वजीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में मुनशियात की बढ़ती हुई लानत पर तश्वीश का इजहार किया है। उसने रियासत की पॉलिसी में बुनियादी तब्दीली और गैर कानूनी मुनशियात की तिजारत करने वाले बड़े ताजिरों को गिरफ्तार करने पर जोर दिया। भारत और सिंगापुर ने दहशतगर्दी से मुकाबला करने में मालूमात शेयरिंग को बढ़ाने से इत्तेफाक किया है। और तीरंदाजी में सिमरनजीत कौर शंघाई में आलमी कप स्टेज टू में खवातीन के रिकर्व मुकाबले के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ और प्रसार भारती की न्यूज ऑन AIR ऐप पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। प्रस्तुत है रसावतरण के अंतर्गत कवि गोष्ठी। प्रतिभागी कवि हैं शरद मिश्रा, डॉक्टर राम कुमार पांडे झटपट, विजय प्रकाश सैनी और नम्रता शुक्ला।
2: आकाशवाणी छतरपुर के सभी श्रोताओं को हमारी तरफ से सादर नमन पहुंचे और आज हम एक काव्य गोष्ठी करने जा रहे हैं। हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर राम कुमार पांडे झटपट BHEL झांसी से, डॉक्टर विजय प्रकाश सैनी विजय जी झांसी से, नम्रता शुक्ला छतरपुर से और मैं स्वयं डॉक्टर शरद मिश्र। गोष्ठी चूंकि इस समय गर्मी अपने पूरे उफान पर है, शुरुआत करते हैं सरस्वती वंदना से। हमारे बीच में डॉक्टर राम कुमार पांडे झटपट जी हैं, उनसे निवेदन करेंगे कि सरस्वती वंदना से कवि गोष्ठी का शुभारंभ करें।
3: धन्यवाद शरद जी, माँ सरस्वती के चरणों में अपनी पंक्तियां निवेदित करता हूँ।

भोग लगाएंगे हम सभी आपको, नौरस का भोग लगाएंगे हम सभी आपको, गोरा के नंदन आज तुम झटपट पधारिए, गोरा के नंदन आज तुम झटपट पधारियो। भगवान गणेश अकेले आए हैं एक परिवार के साथ में बुलाने के लिए, एक मुक्तक और करे दी।

शुभ लाभ पुत्र दोनों को अपने साथ लाइए, शुभ लाभ पुत्र दोनों को अपने साथ लाइए। बेटी संतोषी को लाना तुम।

0: परिवार के साथ में प्रभु आप आइए।
1: अपनी छोटी छोटी रचनाओं से सभी को प्रभावित करने वाले डॉक्टर विजय प्रकाश सैनी जी हमारे बीच में हैं। उनसे आग्रह करते हैं कि अपनी रचना के द्वारा इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए।
2: ये छोटी छोटी दो रचनाएं मैं आपको सुना रहा हूँ। संबंधों को जलाए रखना और दुआ सलाम बनाए रखना, और सब तो लुट गया आज के दौर में, और जमीर को किसी तरह बचाए रखना। और छाया अंधेरा चारों ओर है, और पता चलता नहीं कौन किस ओर है। प्यार की एक लौ तो जलाए रखना, एक आस तो बनाए रखना। और हर चीज बिकाऊ नहीं होती, ये खरीदारों को बताए रखना। संबंधों को जलाए रखना, दुआ सलाम बनाए रखना। छोटी सी एक दूसरे छड़काए हैं कि तन्हा तन्हा हो गया आदमी, और चला था कहाँ के लिए, और कहाँ जा रहा आदमी, और बेशुमार लोगों की भीड़, और तन्हा रह गया आदमी। खून के रिश्ते दिल के नाते, अनजानी सी राह पर छोड़ गया आदमी। हंसता है रोता है परेशान होता है, और जिंदगी को ढोता है आदमी। ईमान बिक गया धर्म बिक गया, अब अपने को खुद बेच रहा आदमी, और तन्हा तन्हा हो गया आदमी।
3: क्या बात है, बहुत सुंदर।
1: दतिया के सुप्रसिद्ध कवि वासुदेव गोस्वामी की चार लाइनें एक सुना रहे हैं। छत्रपति छत्रसाल की मिसाल, मिले किते दुष्ट दल दर्प की दराह जो बुंदेलखंड। दानवीर वीर सिंह देव की तुलासी भासी, वासुदेव न्याय मुख राह जो बुंदेलखंड। धर्मवीर हर दौल मधुकर, शाहजू की जन्मभूमि पावन धराह जो बुंदेलखंड। अहुल सी के नंदन न चंदन घिसो है, ते भारत को तुलसी घरा है जो बुंदेलखंड। हमारे बीच में छतरपुर से नम्रता शुक्ला जी मातृशक्ति उपस्थित हैं। उनसे आग्रह है कि वो अपनी रचना प्रस्तुत करें।
4: काम क्रोध मद लोभ के काटो सारे फंद, काम क्रोध मद लोभ के काटो सारे फंद, कृपा करो मां शारदा पढ़वा दो कुछ छंद। कृपा करो मां शारदा पढ़वा दो कुछ छंद। एक छंद से आपको जोड़ के कुछ गजल के शेर प्रस्तुत करूंगी, सुनिएगा। कस में निभाते हुए रस में निभाते हुए, तलवों से तालमेल आपके मिलाया है। कस में निभाते हुए रस में निभाते हुए, तलवों से तालमेल आपके मिलाया है। जय माल प्रीत वाली हार ना ये जीत वाली, जय माल प्रीत वाली हार ना ये जीत वाली, चुन चुन कलियों का हार बनाया है, चुन चुन कलियों का हार बनाया है। प्रीत का ये हार पहन जीत और हार में भी, प्रीत का ये हार पहन जीत और हार में भी, हार का पहाड़ पार प्यार से लगाया है, हार का पहाड़ पार प्यार से।

0: भाव का अभाव नहीं धन्य का प्रभाव नहीं, भाव का अभाव नहीं धन्य का प्रभाव नहीं, सात फेरों वाला एक वचन निभाया है, सात फेरों वाला एक वचन निभाया है। धन्यवाद। एक समसामायिक गजल की कुछ शेर, मुफ्त जो देते नसीहत आजकल, मुफ्त जो देते नसीहत आजकल, मोल वो लेते मुसीबत आजकल। मशवरे अनमोल बांटे मुफ्त जो, मशवरे अनमोल बांटे मुफ्त जो, उड़ रही उनकी फजीहत आजकल, उड़ रही उनकी फजीहत आजकल। जख्म दे के हाल भी वो पूछते, जख्म दे के हाल भी वो पूछते, और कैसी है तबीयत आजकल, और कैसी है तबीयत आजकल। हो रही हस्तांतरित पाखंडता, हो रही हस्तांतरित पाखंडता, क्या लिखेंगे हम वसीयत आजकल, क्या क्या लिखेंगे हम वसीयत आजकल। कौन कितना श्रेष्ठ पानीदार है, कौन कितना श्रेष्ठ पानीदार है, आचरण कहते हकीकत आजकल, आचरण कहते हकीकत आजकल। सफेदा नकली चमकती धात पर, सफेदा नकली चमकती धात पर, गुल असल सूरत व सीरत आजकल। मूल्य नैतिक है पतन पर इसलिए, मूल्य नैतिक है पतन पर इसलिए, नम्रता की निम्न कीमत आजकल, नम्रता की निम्न कीमत आजकल। मुफ्त जो देते नसीहत आजकल, मूल वो लेते मुसीबत आजकल, मुसीबत।
1: बहुत सुंदर रचना। और अभी जो संचालन कर रहे थे, हम लोगों को चला रहे थे, अब आपके मध्य में डॉक्टर शरद मिश्र जी द्वारा अपनी रचना प्रस्तुत करें।
2: आजकल पर्यावरण की समस्या हर जगह है, गर्मी का ताप बहुत बढ़ रहा है, पेड़ जंगल सब कुछ नष्ट होते जा रहे, पहाड़ पूरे अपनी जगह काटे जा रहे। इस पर एक कविता आपको के सम्मुख प्रस्तुत है। जंगल काटे उपवन काटे, रुके वेग नदियों के, प्रकृति के सौंदर्य बोध में कारक थे सदियों से, विकसित दिखने की स्पर्धा मानव क्या कर बैठा, जिनसे जीवन की थी आशा उनसे ही वह ऐठा, विकसित दिखने की स्पर्धा मानव क्या कर बैठा, जिनसे जीवन की थी आशा उनसे ही वह ऐठा। पशु पक्षी की कई प्रजातियां लुप्त हुई वसुधा से, पशु पक्षी की कई प्रजातियां लुप्त हुई वसुधा से, जल थल नभ सब हुए प्रदूषित ऐसी मानवता से, नष्ट हुए जंगल अब भूसे पर्वत दरक रहे हैं, अवनि के इस विकृत रूप को हम सब दरस रहे हैं, नष्ट हुए जंगल अब भूसे पर्वत दरक रहे हैं, अवनि के इस विकृत रूप को हम सब दरस रहे हैं। जीवों के जीवन के हेतु हमें बदलना होगा, संरक्षित हो जलवायु तो कर्मठ बनना होगा, संरक्षित हो जलवायु तो कर्मठ बनना होगा, संचित हो वर्षा का जल अब यह बहने ना पाए, वृक्षारोपण सभी जगह हो वन कटने ना पाए, वन संपदा बड़े पृथ्वी पर नहीं अवैध खनन हो, पर्यावरण रहे संरक्षित इस पर गहन मनन हो, वन संपदा बड़े पृथ्वी पर नहीं अवैध खनन हो, पर्यावरण रहे संरक्षित इस पर गहन मनन हो। धन्यवाद।
3: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
2: अब हमारे बीच में डॉक्टर रामकुमार पांडे झटपट जी व्यंगकार हैं, BHEL झांसी से आए हुए हैं और अपनी रचना आपके सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। डॉक्टर रामकुमार झटपट जी,
1: जिंदगी में हम सभी को मुस्कराना चाहिए, जिंदगी में हम सभी को मुस्कराना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी का मकसद सिर्फ मौज मस्ती ही नहीं, जिंदगी में कुछ तो अच्छे काम करना चाहिए, जिंदगी में कुछ तो अच्छे काम करना चाहिए। मेरी रचना एक मई दिवस था जो मजदूरों के लिए था, तो मजदूरों के ऊपर मेरी एक रचना है। आप लोग तो मजदूर कौन होते हैं? ऊंचे ऊंचे भवन बना रहे, ऊंचे ऊंचे भवन बना रहे, घर से कोसों दूर रहने को बस एक टपरिया, यही है मजदूर, रहने को बस एक टपरिया, यही है मजदूर, के गांव छोड़ कर गए शहर में करने को मजदूरी, गांव छोड़ कर गए शहर में करने को मजदूरी, बच्चे अपने लिए साथ में कुछ सामान जरूरी, बच्चे अपने लिए साथ में कुछ सामान जरूरी, तो जहाँ पर काम वहीं पर।

0: रहने को बस एक टपरिया यही है मजदूर, रहने को बस एक टपरिया यही है मजदूर। तो क्या करते हैं आगे जाके, ईंटा बालू कोई पटक रहे कोई काटते सरिया, ईंटा बालू कोई पटक रहे कोई काटते सरिया, राज मिस्त्री पहाड़ बना रहे बांध बांध के पटिया। तो हुआ पलस्तर करे तलाई, हुआ पलस्तर करे तलाई भवन बना मजबूत, और रहने को बस एक टपरिया यही है मजदूर। तो मेहनत से सब काम करें और मिलजुल कर सब रहते, मेहनत से सब काम करें और मिलजुल कर सब रहते, ऐसे ही दिन गुजर जाते हैं बीत जाते हैं हफ्ते, ऐसे ही दिन गुजर जाते हैं बीत जाते हैं हफ्ते। तो हर हफ्ते में पैसे बटते, एक सप्ताह में पैसा मिलता है, हर हफ्ते में पैसे बटते खर्च करें भरपूर, और रहने को बस एक टपरिया यही है मजदूर। तो क्या होगा, पूरा हुआ भवन बन करके आगे की तैयारी, पूरा हुआ भवन बन करके आगे की तैयारी, और नहीं सोचते हैं ये अपनी, नहीं सोचते हैं ये अपनी नव निर्माण की बारी। तो कितने भवन बनाए फिर भी, कितने भवन बनाए फिर भी रहने को मजबूर, और रहने को बस एक टपरिया यही है मजदूर। तो ऊंचे ऊंचे भवन बना रहे और घर से कोसों दूर, और रहने को बस एक टपरिया यही है मजदूर, यही है मजदूर।
1: धन्यवाद, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे मार्मिक उन्होंने कविता सुनाई है। और अब डॉक्टर विजय प्रकाश सैनी जी से अनुरोध है कि अपनी प्रस्तुति दें।
2: ये अपना जो है ये बुंदेलखंड है, और बुंदेलखंड में का ही इसमें वर्णन है। बुंदेलखंड जो है शुरू से सबको भाया, जो भी यहाँ आया वो भी यहीं का होके रह गया, और यहाँ तक कि भगवान जब वनगमन को गए तो सबसे ज्यादा बुंदेलखंड में ही रहे। तो उसी के लिए जो बुंदेलखंड का वर्णन मैं आपको सुना रहा हूँ। हरियाला मन भावन अपना बुंदेलखंड, यहाँ बीतवा वहाँ कीन, और राम रमे जहाँ वहाँ बह रही मंदाकिनी, और झड़ते झरने खंड खंड वो अपना है बुंदेलखंड, झड़ते झरने खंड खंड अपना है बुंदेलखंड। हरदौल से चरित कहाँ और मिले, लक्ष्मी बाई सी झांसी रानी कहाँ और मिले, और छत्रसाल से वीर कहाँ और मिले, और गणेश कुंवर की भक्ति से लुभाता अपना बुंदेलखंड, गणेश कुंवर की भक्ति से लुभाता है अपना बुंदेलखंड। तुलसी केशव से कवि और छासी नगरी, और बेतवा की तान सुनाता अपना बुंदेलखंड, बेतवा की तान सुनाता अपना बुंदेलखंड। खनिज संपदा से भरपूर देवगढ़ कलीजा चित्रकूट से ठौर, और खजुराहो की कला से लुभाता अपना बुंदेलखंड, खजुराहो की कला से लुभाता अपना बुंदेलखंड। और चंदेरी की साड़ी कटरी का चूना, और महोबा का पान और आला का गान सबको सुनाता अपना बुंदेलखंड, सबको सुनाता अपना बुंदेलखंड। विश्व प्रसिद्ध झांसी की रानी लक्ष्मीबाई क्रांतिकारी, वीरों कवियों की जननी, और जो आया सबको भाया अपना बुंदेलखंड, अपना बुंदेलखंड।
1: हमारे बीच में छतरपुर से नम्रता शुक्ला जी हैं, उनसे अनुरोध है कि अपनी प्रस्तुति दें।
3: नारी शक्ति के स्वभाव को लेकर एक गजल मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करती हूँ, सुनिएगा।
0: स्वागत।
3: हमें मौन रहने की आदत नहीं है, हमें मौन रहने की आदत नहीं है, मगर बोलने की इजाजत नहीं है, मगर बोलने की इजाजत नहीं है। तुम्हें जो हमारी जरूरत नहीं तो, तुम्हें जो हमारी जरूरत नहीं तो हमें भी तुम्हारी जरूरत नहीं, हमें भी तुम्हारी जरूरत नहीं है। जरूरत पड़ी तो

मोहब्बत है बरना, जरूरत पड़ी तो मोहब्बत है बरना, किसी को किसी से मोहब्बत नहीं, किसी को किसी से मोहब्बत नहीं है। जरा हाल दिल का सुनो कुछ सुनाओ, जरा हाल दिल का सुनो कुछ सुनाओ, न हालात हैं ठीक हालत नहीं है, न बिगड़े कहीं काम जब तक किसी का, न बिगड़े जहां काम जब तक किसी का, किसी को किसी से शिकायत नहीं, शिकायत नहीं। दिखावा दिखावा न मौलिक रहे हम, दिखावा जमीनी हकीकत नहीं है, हकीकत नहीं है। मोहब्बत अगर हो गई हो किसी से, मोहब्बत अगर हो गई हो किसी से, सरेआम कहना शराफत नहीं है, सरेआम कहना शराफत नहीं है। हृदय नम्रता में अदालत नहीं है, मतलब जो लोग बहस करते हैं उनके लिए कुतर्क के लिए है। हृदय नम्रता का अदालत नहीं है, कि संवाद करना वकालत नहीं है, कि संवाद करना

0: नहीं है।
1: बहुत सुंदर रचना नम्रता शुक्ला जी के द्वारा, प्रेम रसम सराबोर, बहुत अच्छी गजल आपने सुनाई। और अब इसके बाद डॉक्टर शरद मिश्र जी अपनी रचना प्रस्तुत करें।
2: हाँ, सभी लोगों, इस समय क्या है कि मौसम चल रहा है, गर्मी का तापमान बहुत ज्यादा चढ़ा हुआ है और इस समय किसान अपनी पूरी तैयारी करते हैं आगामी फसल की, और इतनी गर्मी है लेकिन उसके बाद भी किसान के ऊपर लिखी हुई ये कविता है कृषक के ऊपर जो आपके सम्मुख प्रस्तुत है। तपती दोपहरी किसान जब आसमान में देखता, उमड़ उठे घनघोर घटाएं, मन में यह है लेखता, आतप से पीड़ित है फिर भी हाथों से ले आया हल, समय न बीते अब गुड़ाई बोनी का उन्नत होए फसल, सूखी धरा देख माथे पर उसके बल है पड़ जाता, बिन बादल के देख क्षितिज को रोम रोम थर्रा जाता, बिन पानी के बिना फसल के कैसे जीवन बीतेगा, सूखेंगे वन उपवन सरोवर और कूप भी रीतेगा, इतने निष्ठुर बनो न हे देवेंद्र कृपा करते जाओ, प्यास मिटे इस वसुंधरा की काली मेघा ले आओ, रिमझिम होती है जब वर्षा धरा तृप्त हो जाती है, ही की टीस कृषक की मिटती फसल लहलहा जाती है, परिवर्तित होती जलवायु मेघ गगन में छाते हैं, गर्मी हो जाती कम आंगन में बच्चे मदमाते हैं, करें अन्न एकत्र कृषक का सदा सुखी हो घर संसार, बच्चे पढ़ें लिखें स्वर्णिम अपने सपने कर लें साकार, करें अन्न एकत्र कृषक का सदा सुखी हो घर संसार, बच्चे पढ़ें लिखें स्वर्णिम अपने सपने कर लें साकार। हमारे बीच में उपस्थित थे, हम डॉक्टर रामकुमार पांडे झटपट जी से अनुरोध करेंगे कि अपनी अगली प्रस्तुति प्रस्तुत करें।
1: धन्यवाद शरद जी। शरद जी ने भी गर्मी के ऊपर अपनी प्रस्तुति दी रचना, तो गर्मी के ऊपर एक मेरी रचना है कि टॉनिक कितने लो मगर सेहत नहीं बन पाएगी, और प्रेम से हंसकर जियो तो हालत सुधर जाएगी, तन्हाई की जिंदगी जीने में क्या रखा है यारो, आपस में मिलकर जियो तो ये जिंदगी कट जाएगी, आपस में मिलकर जियो तो जिंदगी कट जाएगी। सुने कि जेठ मास की परी दुपहरिया, जेठ मास की परी दुपहरिया, वो गर्मी पड़ रही भारी, वो दिन तो कट रहे काम धाम में, रात न कटत हमारी, दिन तो कट रहे काम धाम में, रात न कटत हमारी। देखें कि कूलर फुको धरो है घर में, ठंडी हवा न पावे, कूलर फुको धरो है घर में।

0: बिहारी दिन तो कट रही काम धाम में, रात न कटत हमारी। तो क्या कहते हैं कि लाइट नहीं है तो पति देव कहे छत के ऊपर बिस्तर आज बिछाओ। भैया लाइट है नहीं है तो पति देव कहे छत के ऊपर बिस्तर आज बिछाओ। और प्रकृति के संग जीना सीखो, शुद्ध हवा सब पाओ। तो घंटा दो घंटा सो पावे, घंटा दो घंटा सो पावे, ओ मछरा ची थे भारी। ओ दिन तो कट रहे काम धाम में, रात न कटत हमारी। तो गर्मी के कारण ना कोऊ काऊ के घर जा रहे, गर्मी के कारण ना कोई काऊ के घर जा रहे। ओ मजबूरी में घर से निकरत बांध तो लिया आ रहे, मजबूरी में घर से निकरत बांध तो लिया आ रहे। तो गोरी ओढ़ चुनरिया निकली, गोरी ओढ़ चुनरिया निकली, दे ढाक लई सारी। ओ दिन तो कट रहे काम धाम में, रात न कटत हमारी। तो अंत में तो कहें झटपट गर्मी के ये दिन जतन जतन से काढ़ो, कहें झटपट गर्मी के ये दिन जतन जतन से काढ़ो, और ठंडा पानी पियो बैठ कर गर्मी दूर भगा लो, ठंडा पानी पियो बैठ कर गर्मी दूर भगा लो। तो पना आम को बना के पी लो, पना आम को बना के पी लो, पौधी ना पुट न्यारी। और दिन तो कट रहे काम धाम में, रात न कटत हमारी। तो जेठ मास की परी दोपहरिया, जेठ मास की परी दोपहरिया, ओ गर्मी पड़ रही भारी। ओ दिन तो कट रहे काम धाम में, रात न कटत हमारी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब अंत में आप शरद मिश्र जी से एक उनकी रचना है छोटी सी, आप लोग सुनेंगे, जिसका जो संचालन कर रहे थे हम लोगों का। और आप अंत में कार्यक्रम के अंत में शरद मिश्र जी से एक रचना।
1: एक आपके सम्मुख गजल प्रस्तुत है। रहने चला था शहर में, जाने कहां मैं खो गया, थी भीड़ बेगानों की इतनी, यूं ही ओझल हो गया। रहने चला था शहर में, यूं जहां मैं साथ मेरे कई अजीज अलमस्त थे, जब वक्त ने भी साथ छोड़ा, फिर मैं तन्हा हो गया। यूं जहां मैं साथ मेरे कई अजीज अलमस्त थे, जब

0: हो गया धन्यवाद।
1: हमारे बीच में उपस्थित थे आज की काव्य गोष्ठी में, हमारे बीच में उपस्थित थे डॉक्टर रामकुमार पांडे झटपट जी झांसी से BHEL से आए हुए, डॉक्टर विजय प्रकाश सैनी विजय जी, नम्रता शुक्ला छतरपुर से मातृशक्ति के रूप में उपस्थित थी, और मैं स्वयं डॉक्टर शरद मिश्र आपसे इजाजत लेता

0: प्रकाश सैनी विजय जी, नम्रता शुक्ला छतरपुर से मात्र शक्ति के रूप में उपस्थित थी, और मैं स्वयं डॉक्टर शरद मिश्र आपसे इजाजत लेता हूं आज की कवि गोष्ठी की। धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे रसावतरण के अंतर्गत कवि गोष्ठी। प्रतिभागी थे शरद मिश्र, डॉक्टर रामकुमार पांडे झटपट, विजय प्रकाश सैनी और नम्रता शुक्ला। हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए नाटक स्मारक। लेखक हैं सुशील त्रिपाठी और प्रस्तुति है डॉक्टर अरविंद सोनी की।

0: अब तो मैं भ्रमण करते करते थक चुकी हूं। आखिर कब तक लगाती रहूं इस वसुंधरा का चक्कर? यदि साहस जुटा भी लूं, तो कैसे सुनूं अपने ही पुत्रों की वो बातें जिनमें भाई भाई के खून की प्यास छुपी है, और कैसे निहारूं वो दृश्य जहां अबोध बालकों से लेकर असहाय वृद्धों के पड़े शव छटपटा रहे हैं जीवन मुक्ति से। बहुत हो चुका, आखिर विनाश का तांडव कब थमेगा? अरे ये क्या, आज इतनी रात गए तक ये स्मारक इस तरह जगता हुआ उदास स्तब्ध सा क्यों बैठा है? इसे तो प्रसन्न होना चाहिए। चलूं, देखूं आखिर क्या बात है। बेटे, स्मारक बेटे।
1: हाँ माँ।
0: कहाँ खो गया था?
1: कहीं नहीं भारत माँ।
0: तो फिर तुझे आज मेरी यात्रा का पता क्यों नहीं चला?
1: माँ, भूल हो गई, माफी चाहता हूँ।
0: तू मेरा इतना सजग प्रहरी और तुझे माँ के आने की आहट तक नहीं मिली? स्मारक, कोई न कोई बात अवश्य है। बोलो क्या बात है, क्या छिपा रहे हो अपनी माँ से?
1: माँ।
0: हाँ हाँ बोलो, मुझे तेरा एक एक शब्द बहुत प्रिय लगता है। कहो क्या बात है?
1: माँ, अब मैं तेरी गोद से ऊब चुका हूँ।
0: क्या, मेरी गोद से ऊब चुका है?
1: हाँ माँ हाँ।
0: नहीं स्मारक, ऐसा नहीं हो सकता। पगले, कहीं बेटा भी माँ की गोद त्यागना चाहता है? अरे वो तो माँ की गोद हासिल करने के लिए अपने प्राणों की बाजी तक लगा देता है, और तू है कि?
1: माँ, मैं सच कह रहा हूँ माँ, सच कह रहा हूँ।
0: क्या, तू सच कह रहा है?
1: हाँ भारत माँ, अब मुझसे वो सब देखा सुना नहीं जाता।
0: पर क्या बेटी, आखिर ऐसी कौन सी बात है जो तुमसे?
1: माँ, वो तुम भी नहीं देख पाओगी।
0: मैं नहीं देख पाऊंगी?
1: हाँ माँ हाँ।
0: अरे मैं तो आदिकाल से आज तक वो सब देखती चली आ रही हूँ जो किसी ने नहीं देखा होगा। स्मारक,
1: हाँ माँ।
0: मेरी आंखों में झांक कर देख, देख इनका रंग सफेद से लाल हो गया है। इन्होंने नदियों में इतना खून देखा है जितना तुमने पानी भी नहीं देखा होगा रे।
1: माँ,
0: इन्होंने अपने पुत्रों के इतने कटे हुए सिरों को निहारा है कि तुमने उतने जीवित मनुष्यों को भी नहीं देखा होगा।
1: पर माँ,
0: अरे तू इतनी जल्दी इस माँ की गोद से ऊब गया?
1: मैं क्या माँ, कोई भी हृदयवान प्राणी वो सब देखकर विरक्त हो जाएगा।
0: पर क्या सब देखकर?
1: माँ, लोगों ने मुझे तेरी गोद में विस्तार के लिए जगह जगह स्मारक बना दिए हैं।
0: तो ये तो खुशी की बात है।
1: नहीं माँ नहीं।
0: तो
1: माँ, वो सब छोटे से मंदिर, छोटी सी मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, महल या फिर समाधि स्थल तक ही सीमित रहता तो अच्छा था।
0: मैं समझी नहीं स्मारक।
1: माँ, लोगों ने इन छोटे स्थलों का विस्तार करके तेरे आंचल में दूर दूर तक फैला दिया है,
0: ताकि लोग इन महापुरुषों के त्याग और बलिदान को याद कर

0: करके अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहें।
1: नहीं माँ, नहीं, ऐसा नहीं है, ये तुम्हारा भ्रम है।
0: भ्रम?
1: माँ, इन स्थलों के विस्तार ने लाखों लोगों की जीविका छीन ली है।
0: जीविका छीन ली है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
1: पर ऐसा ही हुआ है माँ, लोग दानों दानों के लिए तरसने लगे हैं।
0: स्मारक, तेरे मुंह से इतना झूठ अच्छा नहीं लगता रे।
1: माँ, ये झूठ नहीं, सच है, बिल्कुल सच।
0: तो फिर?
1: तुझे अभी भी मेरी बात का विश्वास नहीं है ना माँ, तो चल चलकर स्वयं अपनी आँखों से सब कुछ निहार ले।
0: अवश्य चलूंगी और सब देखूंगी, तभी मुझे विश्वास होगा। पर यदि झूठ निकला तो?
1: नहीं माँ, नहीं, अपने सपूत पर विश्वास रख।
0: तो ठीक है, कल मैं तेरे साथ चलूंगी।
1: अच्छा माँ।
0: मैं देखूं तो कि आखिर तू किस बात से उब गया है।
1: हाँ माँ, मैं तुझे कल लेने आऊंगा।
0: जरूर आना। अब चलूं, मुझे अभी अपनी यात्रा पूरी करनी है।
1: ठीक है माँ। माँ, भारत माँ।
0: कौन?
1: मैं हूँ, स्मारक।
0: हाँ बेटे, आ।
1: माँ, क्या आराम कर रही थी?
0: आराम? और मैं? अरे मुझे अब आराम कहा।
1: वो क्यों माँ?
0: जब से मेरे महान बेटों ने मेरी इस गोद से प्राण त्यागे हैं, तब से मेरा सब कुछ नष्ट हो गया है। चल, तू मुझे लेने आया है ना?
1: हाँ माँ, पर
0: तू और फिक्र मत कर, मैं तेरे साथ चलकर वो सब देखना चाहती हूँ जिसे तू सच कह रहा था।
1: तो चलिए माँ।
0: चलो।

0: स्मारक।
1: हाँ भारत माँ।
0: वो सामने सिर उठाए, तू ही खड़ा है ना?
1: हाँ माँ, मैं ही खड़ा हूँ। अभी लोगों ने इसी का विस्तार किया है।
0: वाह, कितना सुंदर बनाया है तुझे। और वो देख, वो बैलों की जोड़ी और वो हल चलाता मेरा बेटा किसान। पर तू तो कह रहा था कि लोग तुझे कोसने लगे हैं, वो बहुत दुखी है। पर यहाँ तो प्रसन्नता ही प्रसन्नता है।
1: आओ माँ, आओ इधर आओ।
0: किधर?
1: वो देखो सामने।
2: अभी आई।
3: अब क्या होगा?
2: आ गए आप?
3: हाँ आ गया।
2: पर इतने उदास क्यों हैं? क्या हुआ? वो सरकारी आदमी आखिर क्यों आए थे आपको बुलाने?
3: अरे कुछ भी तो नहीं।
2: कुछ नहीं? तो फिर वो क्यों आए थे? क्या हम भगवान हैं जो वो हमारे दर्शनों के लिए दौड़े चले आए? बोलो, जरूर कोई बात है। आपको मेरी कसम।
3: लो ये देख लो।
2: ये क्या? ये तो कागज है, पर इसमें लिखा क्या है? देखिए, यदि मैं पढ़ी होती तो सब पढ़ लेती। अब आप ही बतलाइए ना कि आखिर इसमें लिखा क्या है।
3: रति, हम लोग लुट गए हैं। रति,
2: क्या हम लोग लुट गए? ये आप क्या कह रहे हैं?
3: मैं सच कह रहा हूँ रति, सरकार ने हमारी जमीन

0: हमसे छीन ली है।
1: नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
0: पर ऐसा ही हुआ है, इस कागज में वही सब लिखा है रति।
1: पर ऐसा क्यों किया हमारे साथ? आखिर हमने क्या बिगाड़ा था उसका? कौन सा जुर्म किया था हमने?
0: रति।
1: हाँ।
0: वो महल देख रही हो ना तुम?
1: हाँ, देख रही हूँ।
0: उसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर उसका विस्तार किया गया है।
1: विस्तार, स्मारक, ये क्या होता है?
0: तुम नहीं समझोगी रति।
1: मैं नहीं समझूंगी? नहीं, मैं जरूर समझूंगी, पर आप?
0: ये महल उस महान राजा और रानी की याद की निशानी है। इस याद को चिरंतन बनाए रखने के लिए इसे स्मारक घोषित किया गया है।
1: तो इससे हमारी जमीन का क्या वास्ता?
0: तुम बहुत भोली हो रति। अरे, इसका विस्तार करके इसे हमारी जमीन तक फैला दिया गया है।
1: जमीनों तक फैला दिया है?
0: हाँ हाँ, जमीनों तक फैला दिया है।
1: पर वो किस लिए?
0: इसे सुंदर बनाने के लिए भाई।
1: इस महल को सुंदर बनाने के लिए हमारी जीविका छीन ली? अब हम अपना और अपने बच्चों का पेट कैसे भरेंगे? कहाँ से लाएंगे भोजन? बोलो, जवाब दो।
0: तुम दुखी मत हो रति।
1: दुखी ना हूँ? वाह, आप भी अच्छा ढाड़स बंधाते हैं। अरे, हमारा सब कुछ तो छीन लिया लोगों ने, और आप कहते हैं दुखी ना हूँ? आग लगे इस स्मारक में, ईंट से ईंट बच जाए इसकी। हे ऊपर वाले, यदि तू कहीं भी है तो धराशाही कर दे इस महल को, धराशाही कर दे इस महल को।

0: माँ, सुना तुमने?
1: हाँ बेटी, सुना मैंने सब कुछ सुना।
0: तो अब बतलाओ माँ, मैं करूं तो क्या करूं? कैसे सुनूं जगह जगह लोगों की ये बददुआएं? कैसे कैसे देखूं भूख से तड़फते उन्हें?
1: हाँ बेटी, तेरा कहना बिल्कुल सच है। अरे तू क्या, कोई भी नहीं देखता रह सकता इन दृश्यों को।
0: तो माँ, अब तू ही बता, मैं करूं तो क्या करूं?
1: मैं क्या बतलाऊं? पर हाँ स्मारक, तेरे हर विस्तार के साथ ऐसा नहीं होता होगा।
0: माँ, अभी भी तुझे अपने बेटे पर संदेह है?
1: नहीं नहीं मैं ये नहीं कहती।
0: माँ, तू जो भी कहना चाहती है मैं उसे समझता हूँ।
1: स्मारक,
0: माँ, कल मैं तुझे उत्तर दिशा में ले चलूंगा। वहां का दुख दर्द ऐसा है कि तुझसे देखा नहीं जाएगा। माँ,
1: तो क्या वहां भी?
0: माँ, तू तू तो सिर्फ ये पूछ के आखिर कहाँ नहीं है? माँ, वो सब सुनते सुनते तो मेरे कान भर गए हैं, मेरी आंखें इन दृश्यों को देखते देखते पथरा गई हैं। माँ,
1: ठीक है अब रहने दे, मैं कल चलूंगी तेरे साथ, आखिर देखूं उत्तर दिशा में भी क्या हो रहा है वहां।
0: तो माँ, मैं कल आऊंगा।
1: हाँ जरूर आना, मैं तेरी प्रतीक्षा करूंगी।

0: माँ, भारत माँ।
1: कौन?
0: मैं हूँ, तेरा पुत्र।
1: मेरा पुत्र?
0: हाँ, ये तेरा पुत्र, देख ना माँ।
1: अरे तू, पर मेरी आंखों को विश्वास नहीं होता।
0: माँ, विश्वास कर, मैं वही हूँ जो तू देख रही है।
1: पर तेरा तो आज से लगभग 50 वर्ष पूर्व बलिदान हो गया था।
0: तो क्या हुआ माँ, मैं तेरा वही पुत्र हूँ, और हाँ, मुझे तेरे सिवा कोई देख नहीं सकता।
1: तू जरा मेरे और पास तो आ।
0: लो माँ, आ गया।
1: पुत्र, पर तेरा ये क्या हाल? अरे, इससे भला तो तू मेरी गोद में ही था। कितना प्यारा दिखता था, कितना जोश था तेरी आवाज में। तेरे एक उद्घोष के साथ

0: हजारों लोग आजादी की आग में कूद पड़ते थे।
1: बस बस माँ बस, अब रहने दो वो सब। बड़ा दुख होता है वो सब सुनकर।
0: पुत्र, पर तू अभी तक?
1: माँ, हम तो देव पुत्र हैं, हमें महापुरुष और तेरा बेटा बनाकर एक निश्चित समय के लिए तेरी गोद में भेजा जाता है।
0: क्या?
1: हाँ माँ, और उस निश्चित समय सीमा में हम अपना कर्म करते हैं।
0: तो क्या तुम्हारा जन्म एक आम इंसान की तरह नहीं होता?
1: नहीं माँ, हमारे समय की सीमा समाप्त होते ही हम किसी न किसी बहाने से मृत्यु का वरण कर अपने परम पिता के पास चले जाते हैं।
0: तभी तो मैं सोचती हूं कि मेरे महान पुत्र पुत्रियों की असमय मृत्यु क्यों होती है, क्यों भून देते हैं लोग इन्हें गोलियों से और क्यों उड़ा देते हैं उन्हें बम विस्फोटों से।
1: माँ,
0: अच्छा अब रहने दे। और हाँ, ये बतला, आज तुझे इस माँ की याद कैसे आ गई?
1: भारत माँ, ये तू क्या कह रही है? माँ की याद? अरे माँ को तो बेटा कभी भूल ही नहीं सकता।
0: पर बेटी, तुम अपने आने का प्रयोजन कहो।
1: माँ, मैं बहुत दुखी हूँ।
0: दुखी? पर क्यों?
1: तेरे कुछ पुत्र हमें बदनाम करने पर तुले हैं।
0: क्या? बदनाम करने पर?
1: हाँ माँ, हम महापुरुषों के नाम पर स्मारक, स्तूप, समाधि स्थल और न जाने क्या क्या निर्माण कराकर अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं।
0: पर बेटी, इससे तो तुम लोगों को ख्याति मिलती है।
1: नहीं माँ, हमें नहीं चाहिए वो ख्याति। माँ, हमने अपना खून ख्याति पाने के लिए नहीं बहाया था। हमें आजादी हासिल कर अपने देश की जनता के लिए रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए था।
0: हाँ बेटी, बिल्कुल सच कहा तूने। उस समय के मेरे हर सपूत का यही सपना था।
1: तो माँ, फिर हमारे सपने को साकार करो ना। अनावश्यक हो रहे हमारे नाम के विस्तार को रोको माँ। माँ, समझाओ ना आज के अपने पुत्रों को कि वो आखिर क्यों दूसरे की

0: बिल्कुल सच।
1: पर कब? जब मेरी सारी गोद उजड़ चुकेगी, भाई अपने भाइयों की हत्या कर मेरा सारा आंचल लाशों से पाट चुका होगा।
0: नहीं मां,
1: तो फिर?
0: वो सब नहीं होगा।
1: तू कहता है वो सब नहीं होगा, पर यहां तो रात दिन केवल वही आवाजें सुनाई देती हैं। सुन, तू भी सुन वो आवाजें।

0: सुन लिया? अब तुझे विश्वास हो गया ना? तो अब बोलो, कब लोगे तुम लोग जन्म?
1: माँ, समय की प्रतीक्षा करो, हम लोग जरूर आएंगे। एक बार फिर तेरी गोद में शांति स्थापित होगी।
0: तो ठीक है, मैं उस घड़ी की प्रतीक्षा करूंगी।
1: हाँ माँ, हाँ।
0: क्या सच? मैं अभी अपने महान पुत्र से बातें कर रही थी, या वो सपना था? नहीं नहीं, वो सच ही था। वो एक बार फिर से जन्म लेगा मेरी गोद से, मुझे विश्वास है। वो माँ को इतना दुखी नहीं रहने देगा। चलो थोड़ा आराम कर लूं। सुबह स्मारक के साथ उत्तर दिशा की यात्रा करनी है।

0: चलिए भारत माँ, मैं
1: आओ स्मारक, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा में बैठी थी।
0: तो चले माँ।
1: हाँ चलो।

0: मां देखती जाइए मेरा विस्तार, वो देखिए कितना विस्तृत किया है लोगों ने मुझे। मां कभी इस भूमि पर गन्ने की फसल लहलाया करती थी और आज कटीले तारों के बीच घिरी ये भूमि अपने भाग्य को कोस रही है मां।
1: हाँ सच बेटी।
0: इधर देखिए, इधर आइए, वो मेरा दूसरा प्रतिरूप और वो उसके पास एक छोटी सी झोपड़ी।
1: पर उस झोपड़ी में क्या है?
0: यही सब दिखलाने तो मैं आपको यहाँ लाया हूँ।
1: पर क्या?
0: वो देखिए,

0: माँ, ए माँ।
1: हाँ, क्या है?
0: माँ पास आना।
1: हाँ बोल, क्या है? क्यों चिल्ला रहा था?
0: माँ मैं चिल्ला कहाँ रहा था, मैं तो बुला रहा था। देख माँ, कल शाम से तूने एक रोटी भी नहीं दी, बहुत भूख लगी है, कुछ दे देना खाने को।
1: क्या दे दूं, घर पर एक दाना भी तो नहीं है। तेरे बापू की मृत्यु के बाद थोड़ी सी जमीन ही जीविका का सहारा थी, तो वो भी लोगों ने छीनकर स्मारक में लगा दी। जो मुआवजा मिला था उससे झोपड़ा बना लिया। अब
0: तू रो मत माँ, मैं भूखा नहीं हूँ।
1: क्या, माँ के आंसू देखते ही पेट भर गया। रुक, मैं पड़ोसियों से कुछ मांग कर लाती हूँ।
0: नहीं माँ, रहने दे।
1: आज दिन में मजदूरी करूंगी, जो मिलेगा

0: पड़ोसियों को लौटा दूंगी।
1: माँ तू रहने दे, मैं पानी पीकर ही पेट भर लूंगा।
0: नहीं रे, ऐसा करने से माँ की आत्मा ठंडी नहीं होगी। माँ तो सारी उम्र भूखी रह सकती है, पर अपने बेटों को भूखा नहीं रख सकती। मैं अभी आई, तब तक तू बैठकर धूप ले।
1: ठीक है माँ, तू नहीं मानती तो ले आ।

0: स्मारक।
1: हाँ माँ।
0: मुझसे तो इस नन्हे बच्चे का दुख नहीं देखा जाता।
1: माँ एक ये क्या, कई परिवार ऐसे ही उजड़े हैं, उनका घर आंगन जमीन सब कुछ चला गया है इसी में। माँ
0: पुत्र, मेरा मन इस बच्चे से बात करने को करता है, तुम ठहरो, मैं उसके पास होकर आती हूँ।
1: ठीक है माँ।

0: बेटी।
1: कौन कौन हो तुम?
0: मैं हूं माँ।
1: माँ? पर मेरी माँ तो रोटियां लेने गई है।
0: मैं भारत माँ हूँ।
1: भारत माँ? कौन सी भारत माँ?
0: इस सारे देश की माँ। इस देश में रहने वाला हर मानव मेरा पुत्र है।
1: क्या इस देश के सारे लोग आपके बेटे हैं?
0: हाँ, मेरे बेटे हैं।
1: तब तो तुम बहुत कठोर माँ हो।
0: वो क्यों?
1: माँ का काम होता है अपने बेटों को प्यार और भोजन देना, पर तुम तो ऐसा नहीं कर रही।
0: लोग मेरी ही भूमि से अनाज पैदा करते हैं, मैं ही तो सभी को भोजन बांटती हूँ।
1: तो फिर हमें क्यों खाली पेट सोना पड़ता है? नहीं, तुम झूठ बोलती हो, तुम माँ नहीं हो सकती।
0: नहीं, मैं सच कह रही हूँ। तुम भी अनाज उगाओ तो तुम्हें भी भोजन मिलेगा।
1: पर हमारी जमीन तो छीन ली गई है। देखना, मैं बड़ा होकर सारे नियम बदल दूंगा, कोई किसी की जमीन नहीं छीन सकेगा।
0: वाह, तब तो तुम बहुत बहादुर हो। बेटी, तुम धैर्य रखो, तुम्हें तुम्हारी जमीन वापस मिलेगी।
1: सच माँ?
0: हाँ बेटी, सच।
1: क्या सच माँ, हमें हमारी जमीन वापस मिल जाएगी? हमें रोटी भी मिलेगी माँ? क्या ऐसा हो पाएगा माँ?
0: ये तो क्या बड़बड़ा रहा है?
1: माँ, अभी एक माँ आई थी।
0: माँ आई थी? तेरी तबीयत तो ठीक है ना?
1: हाँ माँ, मुझे कुछ नहीं हुआ।
0: तो फिर?
1: माँ, मैं सच कह रहा हूँ, अभी एक माँ आई थी।
0: पर कैसी थी वो?
1: ये तो मैंने नहीं देखा, पर वो अपना नाम भारत माँ बतलाती थी।
0: क्या क्या भारत माँ?
1: हाँ माँ, पर तुम ये सुनकर चौंक क्यों गई?
0: वो तो हम सबकी जननी है, हम सब उसी की संतान है।
1: माँ, मैंने उससे भोजन और जमीन मांगी थी।
0: तो क्या कहा उन्होंने?
1: उन्होंने कहा सब कुछ मिलेगा, धैर्य रखो, समय की प्रतीक्षा करो।
0: तब तो जरूर मिलेगी, कभी ना कभी कोई दैवी चमत्कार अवश्य होगा। हमें उस समय की प्रतीक्षा करनी होगी। अरे हाँ, तेरी बातों में मैं तुझे रोटी देना ही भूल गई। ले, ये रोटियां खा ले, मैं भीखू की माँ के यहां से मांग के लाई हूँ।
1: अच्छा ला माँ, बहुत जोर से भूख लगी थी।

0: मां, देखा तूने कैसे असहाय हैं ये लोग। इस परिवार के जीवन यापन के लिए सिर्फ इतनी ही जमीन थी, वो भी लोगों ने मेरे लिए छीन कर।
1: हाँ बेटे, कितना बुरा हो रहा है इन लोगों के साथ।
0: तो फिर माँ,
1: तू निराश मत हो, मैं तेरे विस्तार को रोकूंगी, तुझे हताश नहीं होने दूंगी।
0: पर माँ,
1: बस अब तू मुझ पर छोड़ दे, तेरे कारण अब और कोई परिवार नहीं उजड़ा।

0: छेड़ेंगे। मैं तुझे विश्वास दिलाती हूँ।
1: तो ठीक है माँ, मैं कुछ दिनों के लिए और ठहर जाता हूँ, पर यदि अब देश की जनता की रोटी छीनकर मेरा विस्तार हुआ तो मैं भूकंप के एक झटके के साथ अपने सारे रूपों को नष्ट कर लूंगा माँ।
0: नहीं बेटे, अब ऐसा नहीं होगा। चलो अब चले।
1: अच्छा माँ, चलो।

अभी आप सुन रहे थे नाटक स्मारक। लेखक थे सुशील त्रिपाठी और प्रस्तुति थी डॉक्टर अरविंद सोनी की। ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत सुनिए अली अकबर खां से सरोद पर बजाया राग पूरिया कल्याण।

अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत अली अकबर खां से सरोद पर बजाया राग पूरिया कल्याण। मीडियम वेव 400

44.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ और प्रसार भारती की न्यूज ऑन AIR ऐप पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। रात्रि के 11 बज रहे हैं। हिंदी में समाचार और उसके उपरांत अंग्रेजी में समाचार अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को निर्विरोध चुना गया।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
0: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है।
1: 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हम सब के लिए बहुत आनंद का। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है।
0: शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्श पर राज्य का विकास करेगी। उधर तमिलनाडु में एनडीए गठबंधन के सहयोगी एएमएम के प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेरकर से मुलाकात की और एआईएडीएम के महासचिव एडापाडी के पलानीस्वामी को सरकार बनाने के लिए अपना आधिकारिक समर्थन पत्र सौंपा। दिनाकरन ने राज्यपाल को सौंपे पत्र में स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी मन्नारगुड़ी से नवनिर्वाचित एकमात्र विधायक एस कामराज के समर्थन के साथ पलानीस्वामी के दावे का समर्थन करती है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि समाचार चैनलों ने यह खबर फैला दी थी कि उनकी पार्टी टीवीके का समर्थन कर रही है। उन्होंने राज्यपाल से मामले की गहन जांच करने की शिकायत की है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने उन्हें आगे की कार्रवाई का आश्वासन दिया है। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डेटा दिए गए हैं। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटों के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध करा दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरों पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। न्यायालय की पीठ ने हाल ही में मादक पदार्थों की लत के कारण एक महिला के 5 बेटों को खोने की घटना का संज्ञान लिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए द्वारा जांच किए जा रहे 10 से 15 लंबित मामलों की सुनवाई के लिए कम से कम एक विशेष अदालत गठित की जाए। न्यायालय ने कहा कि विशेष न्यायालय का गठन एक महीने के भीतर किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पेरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुगाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें। भारत की महिला फुटबॉल टीम एएफसी अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर

0: Media, Gujarat State Cabinet Minister Jitubhai Vaghani said that various events will be organized at Somnath as part of the Somnath Amrit Parv, showcasing India's rich cultural and heritage traditions. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 444 दशमलव 4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज और प्रसार भारती की न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारी आज की सांध्यकालीन सभा यहीं संपन्न होती है। कल हम अपनी प्रातःकालीन सभा में सुबह 5:53 पर इसी मीटर